بسم الله الرحمن الرحيم.

0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।
1: अल्लमल कुरआन,
0: उसी ने कुरान की तालीम फरमाई।
1: खलकल इंसान,
0: उसी ने इंसान को पैदा किया।
1: अल्लमहुल बयान,
0: उसी ने उसको बोलना सिखाया।
1: अश्शम्सु वल कमर बिहुस्बान,
0: सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं।
1: والنجم والشجر يسجدان,
0: और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामनो दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

101 FM。

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Wednesday, 26th of Rabiul Awwal, September the 9th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says the government is taking effective measures to promote business activities in the country. The acting president has commended the vital role of the minorities in the progress and development of Pakistan. The Deputy Prime Minister has underscored the need for effective coordination to ensure availability of essential commodities at affordable rates. The Minister for National Heritage says historic Shah Alauddin Caves in Islamabad would be open for visitors next month to promote rich Gandhara heritage.
1: तैयार तो है इतनी जल्दी में कहां जा रही हो
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है
1: इसलिए बैंक जाने की क्या जरूरत है इन्वेस्टपार्क है ना
2: इन्वेस्टपार्क
3: जी हां इन्वेस्टपार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें ना बैंक का झंझट ना कतार ना इंतजार इन्वेस्टपार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहां चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें
2: इन्वेस्टपार्क से इन्वेस्टमेंट आसान महफूज और मुनाफा
4: दिस इज FM 101.1
5: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: 101 FM।
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.

101 FM。

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए मौसर इकदामात कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने शय ज़रूरिया की अर्ज़ा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मौसर राबताकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। मारूफ उर्दू शायर अख्तर शीरानी की 78वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: खुली बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
5: दिस इज FM 101.1।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

हाल जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम अजी सामीन, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मजे में होंगे, बख़ैर वाफियत होंगे और बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे। वेल जनाब, हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, एंड यस दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त, योर वेरी ओन आरजे आरजे मुस्तफा इज इन द हाउस ऑफ FM 101 लाहौर। फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम जाने, तमाम सराहने वालों को इस हंसती मुस्कुराती चेहचेहाती लहलहाती सुबह में खुशामदीद कहते हैं, उम्मीद के साथ कि आप तमाम सुनने वालों ने आज के दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार अंदाज के साथ किया होगा, और इस दुआ के साथ कि आपको आज का सारा दिन भी बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा, बख़ैर वाफियत वाला दिन देखना और गुजारना नसीब हो। वेल, 9:15 बज जाते हैं पाकिस्तान का मायारी वक्त, और मेरा आपके साथ रहने का भी शो कॉल सिटी वाइब्स, और मुझे मुस्तफा कहते हैं, FM 101 चैनल 101 कहते हैं। वेल, तारीख की बात कर लें तो जनाब आज तारीख हो चली है सितंबर की 9, जबकि 21वीं सदी का 26वां साल यानी कि 2026 जो कि है अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा। वेल, अगर बात कर ली जाए लाहौर और उसके मज़ाफ़ात के अलावा पूरी दुनिया में आप हमें जहां कहीं से भी समात फरमा रहे हैं, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहचेहाते हुए, लहलहाते हुए, गाड़ी चलाते, खाना खिलाते, खाते बनाते और किसी भी काम को आप सर अंजाम दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो जनाब आपकी समातों का, आपके ट्यून इन करने का, आपके लॉग इन करने का बेहद बेहद शुक्रिया। मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए, और इस साथ में हमेशा ही की तरह आज भी हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, हंसने को, हंसाने को, बोलने को, बुलवाने को, महसूस करने और करवाने को, सबसे बढ़ के सीखने को, सिखाने को। बताएं जनाब कैसे हैं आपके जज्बात, एहसासात, ख्यालात और सबसे बड़के हालात? आई डू होप के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, कूल होंगे, फैंटास्टिक होंगे और बहुत ही शानदार मजेदार अंदाज के साथ आप तमाम सुनने वाले अपने अपने कामों में मगन होंगे। बच्चे हैं तो स्कूल जा चुके होंगे, बड़े हैं तो ऑफिस में होंगे, अपने दुकानों पर होंगे, जहाँ भी होंगे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मिजाज के साथ होंगे। आपके अगर मिजाज अच्छे नहीं है, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो हम इसको अच्छा बनाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, तो हम आपको डीमोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की बात की जाती है ना, हमें थोड़ी सी डीमोटिवेशन की भी ज़रूरत रहती है, ताकि हम जो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया होती है ना, इसे हम थोड़ा सा निकल भी सकें। वेल, हालात वाकया जैसे भी हो, इंसान को हमेशा अच्छे के बारे में सोचना जो लाजमी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हकीकत पसंद भी होना चाहिए। वेल, ये बातें चलती रहेंगी, हम आपके साथ गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रखेंगे, म्यूज़िक का तड़का भी जो है वो सॉन चलता रहेगा। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज पोस्ट अपडेट की जा चुकी है, सो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आप मुझ तक अपने रसाई को यकीनी बना सकते हैं, और यकीनन आप कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। सो अभी एक ट्रैक आप तमाम समातों के नाम करना चाहूँगा, आतिफ असलम की आवाज़ में कहते हैं लेट्स हैव सम फन। सो फन करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, सुबह का पहर है, सो एक ऐसा ही गाना, एक ऐसा ही ट्रैक, मिलते हैं ट्रैक के पास, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

0: Fired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: स्माइल एंड डायल 111-111-FM।
5: कीप स्माइलिंग एंड ड्राइव केयरफुली, ओके?
6: ओके।
7: We will be right back after a short break. Stay tuned.

0: बदली।
1: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफा कहते हैं। शो लाइव है सिटी वाइब्स, 9:27 हुए चाहते हैं। मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए। आई डू होप कि आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। आतिफ असलम की आवाज़ में कह रहे थे, बल्कि कह रहे हैं कि लेट्स हैव सम फन, यानी कि थोड़ा सा हम मज़ा करते हैं, फन करते हैं और मस्ती करते हैं। वेल बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, जो कि बिल्कुल भी मस्ती वाला और थोड़ा सा घूमने फिरने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो है हीट वेव जारी रहने के इम्कान मौजूद हैं। शाम के औकात में हल्की फुल्की आवाज़ चलने के भी इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो कल की निस्बत आज कुछ कम है। अभी की बात कर लीजिए, जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 33, और मिनिमम की बात कर लीजिए जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 27, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज टेम्परेचर जो रहेगा वो है 37। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब भी कल की निस्बत कुछ कम रहेगा, क्योंकि धूप आज भी अच्छी खासी लगने वाली है। 57% आज ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो रहने वाला है। इसके साथ साथ 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज शाम के औकात में हवाएं भी चलने वाली हैं। बारिश के इम्कान आज मौजूद नहीं है। जनाब ये था लाहौर का मौसम, आपके गीत नवा का, आपके इलाकों का। आप जहाँ कहीं से भी हमें सुन रहे हैं आप हमें बता सकते हैं। सबसे बढ़ के आपके अंदर का, आपके दिल का, आपके मन का मौसम कैसा है, ये आपने हमें लास्ट में बताना है। मुझे जान के अच्छा लगेगा, और वो मैं कहता हूँ ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अंतर का मौसम जो होता है ना वो ज़्यादा मायने रखता है। बाहर के मौसम आते जाते रहते हैं, बदलते हैं, इनकी शिद्दत हिद्दत सब कुछ जो है ना वो असरअंदाज तो होता है, लेकिन जब तक आपका मूड अंदर से, आपके अंदर का मौसम अच्छा है ना, तो बाहर के मौसम आपको कुछ नहीं कहते हैं। तो कई लोग होते हैं ना कि मौसम बाहर का अच्छा भी हो लेकिन अंदर से जो है ना वो एम सड़े रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो अपने अंदर के मौसम को जो है ना वो ऐसे खुद पर हावी नहीं होने देना। अच्छी अच्छी बातें करनी है, स्माइल के साथ गुफ्तगु करनी है। मुस्कुराहट का बहुत ज़्यादा फुकदान आ गया हम लोगों में, स्पेशली यंगस्टर्स की बात की जाती है, एवं तोपे तोपे रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ये मामला है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम सब की इतनी प्यारी शक्लें हैं, इतना प्यारा हम स्माइल करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। सो ये है, अगर हम यही मामला, ये काम, ये जो इंटरेक्शन है, हम दूसरों के साथ भी एक पॉजिटिव वे में लेकर चलें, तो इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है ना कि अच्छी वाइब जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। हर किसी का काम अच्छा होता है। आपको पता है कि आपके किसी अच्छे जुमले की वजह से, अच्छी स्माइल की वजह से, अच्छी बात की वजह से किसी का दिन बन सकता है, किसी का कोई काम बिगड़ा हुआ समझ सकता है। सो आजकल के मामलात ऐसे हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो गुर्बत है, महंगाई है, सो मामलात हैं, सो टेंशंस हैं, सो परेशानियां, लेकिन बात यह है कि इंसानों ने ही इंसानों का तआवुन जो है ना वो करना होता है, उनके लिए हालात को बेहतर बनाना होता है, ना कि मजीद उनके लिए कठिन बनाना होता है। सो जैसे भी हों हालात वाकयात, और कोशिश ये करनी है कि हमेशा जो पॉजिटिविटी है, जो मस्बियत है ना, उसके हवाले से हमने काम करना है। वेल 9:31 हुए चाहते हैं, आज हम बात क्या करेंगे। वेल जनाब, आज कुछ दिन मनाए जा रहे हैं, इतने ख़ास नहीं है, सो हम उन पे आज बात नहीं करेंगे। कल के हवाले से मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, बल्कि मेरी एक फ्रेंड हैं सादिया जफ़र के नाम से, ये जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने कल एक पोस्ट की थी कि कल जो था वो हैंडसम बॉयज़ का डे कोई मनाया जा रहा था। कैसे कैसे दिन मनाए जाते हैं, किसी ने मुझे भी टैग कर दिया है, जो मुझे खुशी हुई थी ना। वेल, हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। एक बुक है, बहुत बात की जाती है इस हवाले से और बहुत पढ़ी जाती है, बेस्ट सेलर्स जो बुक्स हैं उनमें शुमार किया जाता है, एटॉमिक हैबिट के नाम से इसका नाम है, जाना जाता है। सो इसमें कुछ ऐसी आदात हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है कि अगर वो आप अपनाते हैं और अपनी शख्सियत पर काम करते हैं, उनको अपना कर, उनको पढ़ के, सो आपका फोकस कैसे बेहतर हो सकता है, किस तरह से आपको अपनी मेहनत के बेहतर नतायज मिल सकते हैं। تو اس حوالے سے کچھ ٹپس ہیں, کچھ بنیادی معلومات ہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے. اور جناب, اسکول کا جو وقت ہے وہ کیوں یاد کیا جاتا ہے, کیوں اس کے بارے میں بہت زیادہ ایک نوسٹیلجیا جو ہے وہ ہم سب میں پایا جاتا ہے, چاہے ہم عمر کی کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو اسکول کے واقعات ہوتے ہیں, اسکول کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں گزرا ہوتا. میرے ایک دوست ہیں, ابھی کل ہی کی بات تھی مجھے, میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ہم بات کریں گے, آپ سے رائے لیں گے, چاہے وہ بچپن ہے, چاہے وہ آپ کا اسکول کا دور ہے. کچھ لوگوں کی جو یادیں ہوتی ہیں نا اپنے بچپن کے ساتھ, اپنے اسکول ٹائم کے ساتھ, وہ تلخ ہوتی ہیں, وہ اچھی یادیں وابستہ نہیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے ڈراماز ہوتے ہیں, کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہیں اپنا بچپن کیوں پسند نہیں ہے, اس نے کہا کہ مجھے بچپن میں بہت زیادہ بلی کیا جاتا تھا, مذاق اڑایا جاتا تھا میرے کلر کی وجہ سے, میرے بالوں کی وجہ سے. کچھ گھر والے بھی ایسی کٹنگ کرواتے تھے, مجھے شعیب لافٹر کہا جاتا, شعیب اختر کے بارے میں بچے کہتے تھے, شعیب لافٹر کا نام لیتے تھے. ایسے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں. آپ یقین کر رہے ہیں, آپ سوچیں آپ کا کوئی نام ایسا لے جو کہ آپ کا نام نہیں ہے اور اس طرح سے لے کے بگاڑ کے لیا جائے, تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. سو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں, اور ایسے بچوں کا جو بچپن ہوتا ہے بہت تلخ ہوتا ہے, ان کا ماضی اچھا نہیں ہوتا. سو یہ بات کرنے کا, بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی میں, کسی ایسے معاملے میں کا شکار ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو ان کی تضحیک کرتے ہیں, چاہے اذواء تفنن کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے. سو اس میں ہم نے یہ سوال رکھا تھا, آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کبھی خود پر ہنسے ہیں اور کس بات پر ہنسے ہیں. سو ہم نے آپ سے معاملات کیے تھے, آپ سے باتیں شیئر کی تھیں, آپ سے ڈسکس کیا تھا, لیکن اپنی بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایسی نا, میں ایک بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا, اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ میں کھڑا ہوں, اور پرانی بات ہے, کالج ٹائم کی بات ہے, بس کا ویٹ کر رہا ہوں, میرے آس پاس اور بھی مسافرین ہیں, بس کے اسٹاپ پہ کھڑے ہیں, ساتھ لڑکیاں بھی ہیں, اور بس ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. میں اتنا تھکا ہوا ہوں, بیگ ہے میں نے اٹھایا ہوا, اتنی ساری بکس ہوتی تھیں. کچھ ہی دیر کھڑے رہنے کے بعد نا مجھے اچانک سے آواز آتی ہے, بھائی اپنی زپ بند کر لیں. میں کافی پریشان ہو جاتا ہوں, اپنے آپ کو سمیٹ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, لیکن بعد میں میں جب دیکھتا ہوں نا کہ میرے جو بیگ ہے اس کی زپ کھلی ہے, اتنی زیادہ کھلی ہے کہ جو کتابیں ہیں نا وہ باہر گرنے والی تھیں. سو میں نے بیگ کو اتارا, اس کی زپ بند کی, دوبارہ سے پہنا, اور میں نے بس خود پہ ہنس دیا. سمجھ لینا کیوں ہنسا تھا. 9:34 ہوئے, چاہتے ہیں باتیں چلتی رہیں گی آپ کے ساتھ, یہ گفت و شنید طنز و مزہ بھی چلتا رہے گا. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں ایک اور ٹریک. سو تھوڑا سا خود پہ ہنس دیا, سمجھ لینا کیوں ہنسا تھا. 9:34 ہوئے, چاہتے ہیں باتیں چلتی رہیں گی آپ کے ساتھ, یہ گفت و شنید طنز و مزہ بھی چلتا رہے گا. ابھی ہم آگے بڑھتے

हाय जी, जालिम नज़रों से मुझको ना तुम देखो मत जाऊंगा, ओ जाने जाना मत जाऊंगा। खूबसूरत आवाज़ें अली ज़फ़र और अली हैदर। आई डू होप कि आपने शेयर को एंजॉय किया होगा। 9:42 हुए चाहते हैं। वेल जनाब, FM 101 का लाहौर का जो फेसबुक फैन पेज है, यहाँ पर आने के बाद आप अपनी रसाई हम तक यकीनी बना सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर आप चलें स्कूल की हम बात कर रहे थे, सवाल आपने मुझे इसका जवाब ये देना है कि आपको बचपन की स्कूल टाइम की जो कोई ऐसी मेमोरी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, अगर आपको याद है तो वो क्या है, वो आपने बतानी है। सो ये मैंने सवाल क्यों पूछा है, इसके पीछे मैंने आपको थोड़ा सा पसे मंज़र बताया है कि कई लोगों को पसंद होती हैं अपनी ऐसी याददाश्तें बचपन से मुंसलिक, स्पेशली स्कूल टाइम से मुंसलिक, और कुछ लोगों को नहीं पसंद होती हैं। सो ये बातें चल रही हैं, सो ये आप हमें भी बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, इसका नतीजा अखज़ करेंगे कि आपके साथ क्या मामला है, क्या माजरा है, और ऐसा क्या ट्रोमा या क्या ऐसा आपके साथ इशू है कि जो अभी तक आपके साथ जुड़ा है और उसमें आप स्टक हैं। वेल 9:43 हुए चाहते हैं, बातें सो ऑन चलती रहेंगी। आज के मजीद मौजूदात के वाले से भी हम बात करेंगे। FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, यहाँ पर पोस्ट अपडेट की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं 0422111001, यानी कि रबते का नंबर है, लेकिन 10 बजे के बाद आपकी जो लाइव कॉल्स हैं वो ऑन एयर की जाएंगी। सो आप नंबर जो है वो मुलायजा फरमा लें अगर आपको नहीं पता। नहीं भी तो जो हमने पोस्ट लगाई है वहाँ पर जो मालूमात हैं मौजूद हैं। अच्छा, मेरा जो BGM है वो कहीं आगे पीछे हो गया है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद ओके जी। वह जनाब, हम बात कर रहे थे एटॉमिक हैबिट्स के हवाले से, इन पे हम कुछ बुनियादी नुकात हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, दैन उनके बाद हम बात करेंगे। आजकल रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और जो साइंसदान हैं, मेडिकल साइंस जो है, जो तिब की साइंस है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो बढ़ती उम्र है, यानी कि हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है, इसको स्लो किया जा सकता है क्या नहीं, क्या इंसान आने वाले वक्त में अपनी, खुदा ना खास्ता मौत की बात नहीं की जा रही, अपनी बढ़ती उम्र की बात की जा रही है, इसको जो है वो स्लो कर सकता है, इसको आहिस्तगी के साथ जो है वो आगे बढ़ा सकता है या इस पर काबू पा सकता है या नहीं। सो इस हवाले से एक रिसर्च है, एक तहकीक है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको मज़ा आएगा जानकर, सुनने का मज़ा आएगा। वैसे इसके अलावा आजकल की बात कर लीजिए, सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, तो सोशल मीडिया पे बैन के हवाले से भी कुछ मामला चल रहे हैं। बच्चों को बैन करने के लिए जो है ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामला हैं, कुछ बिल जो हैं कुछ ममालिक में पास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाल ही में पंजाब असम्बली में भी एक बिल जो है वो पेश किया गया है कि जिसमें ये दरख्वास्त की गई है, इल्तिजा की गई है कि पाकिस्तान में भी जो 16 साल से कम उम्र बचे हैं इनके लिए सोशल मीडिया का बैन किया जाए। तो हम बैन तो नहीं करवाने वाले, ना इसकी हम मुखालफत में हैं ना ही हक में हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि आज के जो नौजवान बच्चे हैं, बल्कि बच्चे जो थे 80s में बच्चे थे या नौजवान थे तब, लेकिन आज अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी कर पाए थे, जो तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज 2026 में वो अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि वो इमेजिन करें, वो सोचें कि वो 1980 के दौर में मौजूद थे। तो 80s का जो क्रेज़ ट्रेंड है वो आजकल सोशल मीडिया पे जारी है, और इस हवाले से बहुत बात भी हो रही है, पोस्टें की जा रही हैं, और ChatGPT के ज़रिए से जो AI पिक्स है ना, जो इमेजेस हैं वो क्रिएट की जा रही है, मैंने भी की है। सो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो दिखाने का तरीका या देखने का तरीका ये है कि आप मुझे सर्च कीजिए MUSTAFAA पे, मुस्तफ़ा के नाम से मेरा फेसबुक फैन पेज है, यहाँ पर मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। सो आप देखें ना देखें, अपनी आप दिखा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको देख कि आप कैसा दिखते होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसी दिखती होंगी 1980 के दौर में। सो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने स्टेटस लगाए थे, स्टोरीज लगाई थी, पोस्ट लगाई थी, हमने भी लगा ली, और ट्रेंड की अच्छी बात ये होती है कि लोग ना एक दूसरे को देख के कुछ ऐसी अच्छी अच्छी आदतें होती हैं, कुछ ऐसे रवाज होते हैं, कुछ ऐसे तरीक़ाकार होते हैं, जो चाहे वो फैशन के हवाले से हों, चाहे कुछ ओढ़ने पहनने खाने के हवाले से हों, कुछ शेयर करने के हवाले से हों। और आपको पता है ट्रेंड सिर्फ ये नहीं है, कपड़ों का नहीं है, अपनी लुक्स का नहीं है, इमेजेस का नहीं है, कुछ खाने पीने का नहीं है, बल्कि
मार्केट ट्रेंड आजकल एक और चल रहा है। टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मारूफ जो रूसी मुसन्निफ है यानी कि एक फिलोसोफर जाने जाते हैं फेदोर दोस्तोव्स्की के नाम से, होपफुली मैंने नाम सही लिया है, आजकल इनके हवाले से जो है बहुत बात हो रही है। और टिकटॉक पे की एक नौजवान है, वो कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और नौजवानों को रागिब करते हैं, माइल करते हैं कि वो आज के इस जदीद दौर में गैजेट्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, सो इसमें किताबों को पढ़ने का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। सो वो नौजवानों को, यंगस्टर्स को, जेन ज़ी को जो है वो बहुत सारी किताबें रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक किताब उन्होंने रिकमेंड की है इस रूसी नावल निगार की, फिलोसोफर की, फेदोर दोस्तोव्स्की, बहुत मुश्किल नाम है। सो नाइट नाम मैं भूल गया हूँ, किताब का नाम है नाइट एंजल के नाम से, आप मेरी तसीफ फरमा सकते हैं। सो वो किताब आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है और इसके साथ साथ जो मुसन्निफ हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उनके एक एक जुमले को शेयर किया जा रहा है, बहुत सारे कोट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, अपनी पिक्चर्स के साथ लगाए जा रहे हैं। सो ये जो 80s का ट्रेंड है ये किस तरह से उस टॉपिक के साथ मुंसलिक है कि लोग दोस्तोव्स्की के जो जो कोटेशंस हैं, जो कोट्स हैं, जो अकवाले जरी हैं, उनको अपनी पिक्चर्स के साथ लगा के ना माइकल जैक्सन के उस दौर के जो सिंगर्स हैं, नाज़िया हसन हैं, ज़ुहैब हसन है, पाकिस्तान की बात कर ली जाए या और मुमालिक के सिंगर्स की बात कर ली जाए, तो उन गानों के साथ जो है वो स्टोरीज और रील्स अपलोड की जा रही हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पुराने पुराने एक नए अंदाज के साथ चेहरे देखने का। सो होपफुली आपको भी लगा होगा और आप हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक वायरस है शिंगल्स के नाम से, इसको जाना जाता है, इस पर आजकल बात हो रही है और कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से आपने कुछ जो अवामुन्नास के हवाले से कुछ पैगामात हैं, आगही पैगामात हैं, वो आपने समाप्त फरमाए होंगे। सो ये क्या है, ये कैसा वायरस है और इसके क्या खतरात हैं, क्या खदशात हैं और किस तरह से हम अपने आप को ऐसी बीमारियों से, ऐसे वबाई जो अमराज होते हैं, जो वायरस होते हैं, इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ खबरें होंगी, कुछ हॉट टॉपिक्स मज़ीद होंगे और उससे बढ़ के, सबसे बढ़ के आपसे बात की जाएगी। अभी आई एम रियली सॉरी, मैं देख रहा था कि टेलीफोन की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही थी, कोई साहिब थे या साहिबा थे कॉल कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन मैं नहीं ले सका था। क्यों नहीं ले सका था, मैं एक्चुअली बिजी था, हमारी जियो यहाँ पर मौजूद होती हैं, ड्यूटी ऑफिसर सुमेरा बट, सो वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, इतनी अच्छी जो तजावीज़ हैं वो मुझे शेयर करती हैं और मेरा दिल चाहता है कि ये जो बात करी है ना, मैं ये भी कह दूँ, वो भी कह दूँ, ये भी बता दूँ, वो भी सुना दूँ, लेकिन जब मैं माइक पर आता हूँ पता नहीं क्या होता है, कहाँ इसवा जाते हैं, कहाँ वो जो ख्याल आते हैं चले जाते हैं। सो चले कोई नहीं, सुमेरा आपसे माजरत करता हूँ मैं और बातें जो हैं वो सॉन चलती रहेंगी। 9:49 हुए जाते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं एक अंग्रेजी गाना। जनाब मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर हैं जस्टिन बीबर, और क्या ही फेम, क्या ही शोहरत हासिल की थी ना इस नौजवान ने, इस लड़के ने। सो जस्टिन बीबर की बात की जाती है और इनके हवाले से ना मुझे एक अच्छी चीज़ जो है वो फैसिनेट करती है, मुझसे रिलेट करती है, वो ये है कि इनका और मेरा जो स्टार है वो मिलता है, यानी कि हम दोनों पाइसिस हैं, आतिफ असलम भी पाइसिस हैं। सो जस्टिन बीबर की आवाज़ में ट्रैक सुनते हैं, कहते हैं लेट मी लव यू, इस ट्रैक इस बार आपसे मुलाकात होगी। सो आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद वहीगा में कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

किचन वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। 9:58 हुए चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा सिटी वाइब्स में ठीक 11 बजे तक के लिए। रिमशा मौजूद थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी और खुश रहो लड़की। अभी आप तमाम सुनने वालों से भी मजीद बातें होंगी 04221100101 पर 10 बजे के बाद। अभी एक न्यूज़ पे का वक्फा हम शामिल करेंगे, कुछ खबरें हैं वो सुन लेते हैं और जान लेते हैं अपने मुल्क के मामला तो हालात तो वाक़ियात बिल्कुल जानने चाहिए, खबरें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अच्छी बात होती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे मामला का हमें पता चलता है, आइडिया होता है, अपने आप को हम मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। सो न्यूज़ पे का वक्फा हम शामिल करना चाहेंगे, दैन उसके बाद बात करेंगे अपने मज़ीद मौजूदात के हवाले से। और सबसे बढ़ के आपसे बात करेंगे, आपसे सवाल मैंने ये किया है कि आपको अपने बचपन में यानी कि आपके स्कूल टाइम की जब आप स्कूल जाते थे आपको सबसे जो अच्छी या बुरी याद है वो कौन सी है, वो आपने मुझे बतानी है।

0: रजना पी नसीरुद्दीन शाह साहब का ये लिखा हुआ कलाम और खुद इन्होंने गाया था, खुद इसको कंपोज किया था, क्या ही बेहतरीन। मैं कहता हूँ कि जो मजहबी या सूफी शख्सियात होती हैं ना, अगर आज के दौर में भी कोई हैं या जिनको जैसा होना चाहिए वो इनके जैसा होना चाहिए, क्या ही बेहतरीन एक एस्थेटिक सेंस रखने वाले, हिस्से लताफत रखने वाले इंसान थे। सो ये इनका कलाम है और मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी था, सो सुबह के इस पैर मैंने ये चलाने की जो है ना जसारत कर ली। वेल अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, दोबारा आ गई हो रिमशा?
1: मैं साजिदा बात कर रही।
0: अच्छा साजिदा बात कर रही है, साजिदा क्या हाल है?
1: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, आप बताएं कैसी हैं?
1: कॉल सुन रही थी, हमीद भाई की भी सुनी है, बद्दी जट की भी सुनी है, जबरदस्त शो कर रहे हैं आप।
0: अरे क्या बात।
1: हाँ जी, और आप तो बचपन में ले गए हैं, यकीन करो बचपन की यादें, वो सारा वो ना मेमोरी, वो एकदम से ना बचपन में सारा कुछ याद आ रहा है।
0: अच्छा मैं स्कूल वाला जो बचपन है ना, मैं उसकी बात करूँ, कोई ऐसी बताएं? हाँ, कोई याद बताएं।
1: वही तो कह रही हूँ, स्कूल का सारा ना याद आ गया। अच्छा। क्या करते थे, क्या नहीं करते थे।
0: ठीक है।
1: तो मैं ना अक्सर छुट्टी कर लेती थी, मैं टीचर को कहती थी मेरी नाना फोत हो गई है, तो एक दिन ना मुझे टीचर ने पकड़ लिया साइदाबाद से, ना पहले आपकी आपने पिछले महीने कहा था मेरी नाना फोत हो गई, आज भी कह रही मेरी नाना फोत हो गई।
0: अच्छा
1: मैं बहुत लाइक थी पढ़ाई में ना, तो हाँ जी, और स्कूल का जबरदस्त रहा, आज भी मैं याद करती हूँ, मेरे दोस्त हैं या जो भी है, वो स्कूल का बचपन बहुत ज्यादा याद आता है, जो भी हम खेलते थे ना ब्रेक टाइम पे, तो खाना पीना सारा, हमारा एक ग्रुप होता था लड़कियों का, 6 लड़कियों का, तो वो आज भी याद आता है मुझे।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है। चलो साजिदा और कुछ कहने?
1: वालेकुम
0: अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सांस ऐसे फूला हुआ।
1: कोई वाले तारीख को, छोटे तारीख को, अनिला जी को और रिक्शा को, रिक्शा का सुनती तो आपकी बहुत ज्यादा, आपको शादी की मुबारक हो और आपकी आपको खुश देखना हमें खुशी होती है। और मैं उस्मान भाई को कहना चाहूंगी, छोटे तारीख को, अनिला जी को, शमीम अपी को, रिजवाना को।
0: ओके ओके ओके।
1: हाँ जी, और बंकी वाले भाई को सब।
0: ओके वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। ओके
1: एक गाना लगा देंगे?
0: दो बताएं, मैं दोनों नहीं लगाऊंगा। जी जी बताएं बताएं।
1: नहीं नहीं एक लगा दे, तेरा नाम चन चन सजना, ये लगा दे, ये मेरे ग्रुप के, तेरा नाम चन सजना।
0: अच्छा ये किसका है?
1: ये पाकिस्तानी मूवी का है, ये इधर ही रेडियो पे सुना है, तो आप लगा दीजिए।
0: अच्छा चले, मैं ये चंद ये वो तो नहीं है, बल्कि चले ठीक है, मैं इन्हीं सिंगर का एक और गाना चलाता हूँ, आप वो सुने, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। सर कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सलीम टेलर, इछरे बाजार से।
0: अरे सलीम साहब, आपके कमेंट्स में मैं देख रहा था। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: ठीक, शुक्र अल्लाह का यार। बहुत आप जो है ना हमें उदास कर देते हैं।
0: अच्छा,
1: खत्म होता है ना आपका।
0: अच्छा चले, कोई मसला नहीं है सर, हम आ जाते हैं ना, असल बात ये है।
1: ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आप आते हैं रौनक लग जाती है।
0: आप भी सलामत रहें, खुश रहें, और ऐसे ही आप भी रौनक लगाते रहें। सर क्या कहना चाहेंगे?
1: आपने बचपन में हम भला क्या करते थे, वो तख्ती होती थी हमारे स्कूल में।
0: अच्छा,
1: तो वो जब हम वो गाची वगैरह लगा के ना तो सुखाते थे ना, ऐसे ऐसे करके बाजू को, वो किसी के गोडे पे लगनी।
0: अच्छा, वो जो गाची होती थी ना, वो गाची लगाते, पता माए लगाती थी, और मुझे याद है कि मेरे साथ भी ये काम हो चुका होगा, जब पित निकलती थी ना उस पे लगाते थे।
1: अच्छा, मैंने स्कूल से ना कभी छुट्टी नहीं की थी, लेकिन बसंत जब आती थी ना,
0: हाय हाय हाय,
1: उस टाइम बेईमान हो जाते थे कि हम ना यार बहाना लगा लो, पेट में दर्द हो रही है, स्कूल का टाइम खत्म हो गया ना,
0: सही।
1: तो फिर वो दर्द सही हो जाती थी।
0: सही हो जाती थी, साथ ही सही हो जाती, ठीक हो गया। और
1: बड़ा शमसी ग्रुप की तरफ से आपको सलूट पेश करते हैं।
0: और सबको
1: बहुत ही जट आया, बहुत ही जट, बहुत मजा आया। और रिमशा आई, रिमशा के लिए ढेर सारी दुआएं। और लाहौर में तो कॉल मिल रही है, जहाँ पे इन्होंने जाना है वहाँ पे सिग्नल का बड़ा मसला।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही गायब हो जाती है फिर।
1: तो जहाँ तक आपकी हमारी बात जा रही है, फिर सलामती की दुआ, पाक आर्मी के लिए दुआ, पाकिस्तान को अल्लाह पाक इतनी तरक्की दे के हर बंदा जाना वो खुशहाली में जाए।
0: आमीन, इलाही आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई
0: जिंदाबाद। चलें ठीक है सर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वह जनाब, ये ट्रैक है, शामिल करना चाहूँगा और आप तमाम कॉलर्स, तमाम सुनने वालों के नाम करना चाहूँगा। और जनाब गाना है शेराज उपल की आवाज़ में। शेराज उपल, आपको ये लगता होगा कि ये बंदा आजकल काम नहीं कर रहा, ये इतना काम कर रहा है पाकिस्तान में, जो जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आतिफ असलम की जो सुबाइना के नाम से एल्बम है उसमें बहुत जो मोस्ट वायरल गाना है ना हूँ इश्क में, उसका कंपोज़र ही है। और बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामास हैं, उनकी जो म्यूज़िक कंपोजिशन है शेराज उपल कर रहे हैं। सो एक ऐसा ही ट्रैक, ऐसा ही गाना जो कि हमने बचपन में बहुत सुना, मैंने बहुत सुना, इसकी वीडियो बहुत अच्छी है, मैं वीडियो देखता हूँ, हम गाना सुने। और इन द मीनवाइल आपकी जो कॉल होगी ना, वो आप याद रखिए, ऑफर होगी वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? अगर आप बोर्डर करना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो गाने के बाद आप शामिल हो जाइएगा। शेराज उपल की आवाज़ में कहते हैं सैया वे, ये ट्रैक डेडिकेट करना चाहूँगा आप तमाम समातों के नाम। और मिलते हैं इस ट्रैक के, उस बार आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं शो कॉल्ड सिटी वाइब्स, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं 10:32 हुए चाहते हैं तकरीबन आधे घंटे तक के लिए मेरा आपके साथ ये साथ बाकी है। वेल, आपसे मजीद बात कर लेते हैं। 04241100101 रबते का नंबर है, देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। ओके

0: आपको वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। विल सरमद कदीर की आवाज़ को शामिल करते हैं इश्क बाय सरमद कदीर, और साथ साथ आपसे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है?
1: बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अरे क्या बात है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ क्या कहना चाहोगे?
1: बिल्कुल आपकी शो भी माशाल्लाह जबरदस्त है, हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अरे आप भी जबरदस्त हो,
1: जब आप लोग शो करने के लिए आ जाते हो।
0: ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे?
1: कहना चाहता हूँ वक्त की कदर करो, मरते वक्त आदमी जमीन और आसमान की खजानी भी पेश करे तो भी जिंदगी के एक मिनट भी नहीं मिल सकते।
0: हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही है। ठीक हो गया?
1: ठीक है,
0: ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।
1: आपको हमेशा खुश रखे,
0: आपको भी खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: ये विंडो वाली सीट मेरी है
1: भाई जी, विंडो वाली सीट के रोले है। वेल 10:37 हुए चाहते हैं और बात कर लेते हैं मजीद कुछ कूलर्स के साथ, और साथ हम अपने मौसुआत को भी आगे लेके बढ़ेंगे, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जी, अच्छा भाई क्या
1: हाल? लगा शुक्र है सर, आप बताएं कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: मैं अद्रीस बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
1: अद्रीस बात कर रहे हैं सर, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं?
2: शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: चलें जी, क्या कहना चाहेंगे?
2: क्या कहना चाहूँगा कि वो जो टाई था ना स्कूल का, उस पे जो ये दो सर के जो पेपर दे दे रहा कि ये फ्लास स्कूल में दे आओ,
1: ठीक है,
2: बतटोड़े मेरे वाला काफी से बहुत शौक
1: था। अच्छा, सही हो गया, ठीक
2: है, ऐसे ही करता था बस के कभी किसी स्कूल जा रहे, कभी किसी स्कूल जा रहे, दिन लगता था ज्यादा।
1: चले ठीक हो गया, ठीक हो गया,
2: इसलिए बात इससे कर दिया था।
1: हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी।
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम, सब सुनने वालों को मेरा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वह जनाब, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से और आजकल के कुछ ट्रेंड्स और कुछ खदशात और खतरात के हवाले से। आजकल बात हो रही है एक नई बीमारी, नए वायरस के हवाले से, नई एक डिज़ीज़ है, शिंगल्स के नाम से ये जानी जाती है, और इस पे हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे। कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे अमराज आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अगर आप अपने आप को उनके हवाले से मुतला रखते हैं, अपने आप को आगाह रखते हैं, और किसी भी सिम्टम्स की मौजूदगी के साथ ही आप उसका इलाज कर लेते हैं, एहतियात कर लेते हैं, परहेज़ करते हैं, तो बहुत सारे मामला से, बहुत सारी आप ऐसे पेचीदगियों से बच सकते हैं जो कि किसी भी बीमारी, वायरस या बैक्टीरिया को लेकर जो पैदा होती है उससे आप बच सकते हैं। शिंगल्स बेसिकली क्या है और इससे कितनी तकलीफ़ होती है, ये कैसी बीमारी है, और इस हवाले से बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, चैमगोइयाँ हो रही हैं, और एक पैनिक की सिचुएशन भी जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रिएट की जा रही है कि ये बीमारी जो है आया कि वायरस है, किस तरह से पैर है, और कल को इसका क्या मुस्तकबिल, खुदा ना खास्ता कहीं कोविड वाला तो नहीं होगा। सो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो तिबी माहिरीन हैं वो कहती हैं कि जो शिंगल्स के नाम से ये जाने वाली बीमारी जो है, ये तकलीफ दे बीमारी है, जो जिस्म में पहले से मौजूद चिकन पॉक्स के वायरस के दोबारा फाल होने से पैदा होती है। आपको बचपन में कभी लाकड़ा काकड़ा हुआ है? चिकन पॉक्स के नाम से ये बीमारी जानी जाती थी, जिसमें हमें कुछ दाने निकलते थे, बच्चों को ये मामलात होते थे, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चैमगोइयाँ मौजूद होती थी, कुछ ऐसे तोहमात होती थी, और मुझे याद है कि हमारे घर में भी, मेरे साथ भी ये माशरे मामला हुआ था, और हमारे घर में कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसा इशू होता है ना, वो कहीं ना कहीं से आता है, कोई ना कोई लेकर आता है, और मेरा जो छोटा भाई है ना, उसको कोई बीमारी लगती है, कोई इशू होता है, तो वो उसके ना जो साइकिल है वो चलता है, मेरे से आगे फिर ये मामला चलते रहते हैं। सो वेल, हम इस पर चिकन पॉक्स पर बात नहीं करें, बल्कि तिबी माहिरीन ये कह रहे हैं कि शिंगल्स जो है वो जिस्म में पहले से मौजूद चिकन पॉक्स के वायरस के दोबारा फाल होने से पैदा होती है, और इसके नतीजे में शदीद दर्द, जलन, और जिस्म के किसी

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
2: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने अशियाई ज़रूरिया की मुनासिब नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए मौसर राबिताकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर दाखला ने पुलिस अहलकारों को थानों में आने वाले शहरियों के साथ ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने की हिदायत की है। पंजाब की वज़ीर आला ने सूबे भर में तहसील की सतह पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को मुख्तलिफ इलाकों में अवामी सतह पर शदीद मुसल्ला मुजाहमत का सामना है। खबरें तफसील से।
3: This is FM.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजर रहा तो मैं हाजिर हूं विद द सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। आपका मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, मैसेजेस, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो आज इनकी बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से FM 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है। जो लोग अपनी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 8111001001। और अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, अपनी को दिल की बात कहना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं दिलों को दिलों से मिलाने के लिए, आपकी दिल की बात जानने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज अस @4471।

मुझे उम्मीद करती हूँ सब अपने दिन का आगाज बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। और अगर आप घर से निकलने से पहले ना, अगर आप काम पे जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, जहाँ भी आप जा रहे हैं ना, तो अगर आप घर में ही अपने छोटे छोटे काम जो है ना मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे खुद से अपना बेड बना लेना, छोटी छोटी अपनी चीज़ें जो हैं वो जगह पे रख लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में जब चीज़ें रखते हैं ना, वो बाद में आपको याद नहीं रहता कहाँ पर गई हैं। सो दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ यू नो एकम्प्लिशमेंट, कि आपको वाकई में फ़ील होता है कि आपने ना कुछ अचीव कर लिया है अगर आप अपने घर के छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके निकलते हैं। मजीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी। अभी आपकी स्मार्टों की नज़र करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। तो जी, मैं आपका साथ निभाने वाली हूं आज शब 1 बजे तक। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दो बहुत प्यारी सी इंटर्नीज, ईमान ज़ाहरा और लाइबा आसिफ। आप दोनों को वेलकम कहती हूँ।
1: मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान ज़ाहरा और आज हम मौजूद हैं FM 101 के स्टूडियो में और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज लेडीज़ लाउंज तो हर लड़की का फेवरेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। और मैं हूँ लाइबा आसिफ और मैं हूँ इंटर्नी ईमान ज़ाहरा के साथ।
0: हम इन दोनों ने यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम किया है FM 101 लाहौर में और दोनों का ताल्लुक जो है मीडिया स्टडीज से है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ, एक तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ टिप्स और जो के जो हर ख्वातीन जो है ना ऑल द टाइम इसी में रहती है कि वो जो है ना कुछ अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपने आप को निखारने से वारने के लिए कुछ ना कुछ करती रहे और कम पैसों में कुछ हो जाए तो
1: होम रेमेडीज DIY।
0: एग्जैक्टली और ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो होम रेमेडीज होती हैं, जो चीज़ें हम अपने किचन से लेके इस्तेमाल करते हैं ना, नेचुरल होती हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स
2: केमिकल्स नहीं होते इनमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, अब ईमान और लाइबा हमारे साथ शेयर करने वाली हैं कुछ स्किन टिप्स, ठीक है ना। जैसे कुछ बहुत राइस मास्क जो है आजकल बहुत वायरल है, कोरियन ग्लास स्किन
2: और मैंने इसे खुद भी ट्राई किया तो ये काफी इफेक्टिव भी होता है।
0: सही है। तो जी, हमारे साथ कुछ फेस मास्क जो है ना शेयर करें।
1: जी, जैसे कि अक्सर जैसे आपने कहा कि कोरिया का बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस चल रहा है हमारी सारी औरतों पे
0: और कोरियन प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली
1: बिल्कुल उसी से एक है कोरियन मास्क, जिसमें वो करते हैं कि राइस फ्लोर लेते हैं, चावलों को लेके उन्हें अच्छी तरह साफ करके उसे पहले ड्राई करने, उसको फिर ग्राइंड करके उनके बिल्कुल ब्रीक पाउडर सा करके उन्हें उसके अंदर एलोवेरा डालें आप, उसके अंदर और आप हनी डालें, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के लगाएं, उससे आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मिलेगी। वो जो हाइलुरोनिक एसिड और वो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव
2: होती है ना, सन टैनिंग वो भी काफी कम होती है, उससे झुर्रियां कम होती हैं,
0: फाइन लाइंस आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, क्योंकि ये एलोवेरा, अलसी, ये दो और दूसरा भिंडी, ये दो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि जेल जो है हमें कुदरती जेल फराहम करते हैं, तो उससे आप अपनी स्किन पे लगाएं, अपने बालों पे लगाएं और जो ये बहुत बहुत उसके लिए अच्छा है। और जो सन ब्लॉक है वो तो बहुत बहुत जरूरी है,
2: बहुत ही जरूरी है। ग्रीटिंग ब्लॉक मैं कहती हूँ किसी भी ब्यूटी प्रोडक्शन का होना चाहिए
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप कोई भी होम रेमेडी कर रहे हो, तब तक काम नहीं करती जब तक आप अच्छा सन ब्लॉक यूज ना कर रहे हो, क्योंकि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती, और जो क्योंकि खवातीन की स्किन वैसे भी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है तो उनके लिए तो बिल्कुल, स्पेशली जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग या वर्किंग लेडीज है तो उनके अक्सर हाथों पे और वैसे आपको वो नुमाया फर्क नजर आता है,
2: जो टैनिंग बहुत ज्यादा
0: हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो गर्मियों में क्योंकि स्किन ऑयली बहुत हो जाती है तो उसके लिए एक फेस मास्क मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपको हमेशा बहुत सस्ती बाजार में मिल जाती है, तो आजकल के मौसम में जो स्पेशली जिन लोगों की गर्मियों में ऑयली स्किन रहती है और उसकी वजह से ना ओपन पोर्स हो जाते हैं,
2: पित निकल आती है, गर्मी दाने निकल आते हैं, उसके लिए भी ये मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत इफेक्टिव होती है, बल्कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ मुल्तानी मिट्टी में, वो होती है ना गाची,
0: हाँ बिल्कुल,
2: वो डाल के ना उसे ठंडक भी मिलती है गाची से, और मुल्तानी मिट्टी से आपको ग्लो भी आता है और जो दाने वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाते हैं।
0: तो जी, हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें ना अभी से ही फीडबैक मिल गया है कि रियली वर्क्स। जी आप क्या कहना चाहोगे?
1: जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी कि जिस तरह इन्होंने बताया कि इनको इस तरह के मसले होते हैं, इसी तरह जो हमारे घर में खवातीन हैं जो चूल्हे पे काम करती है, जिन्हें सन टैन के अलावा अलहदा से इतनी ज्यादा हीट चूल्हे से मिल रही होती है, उनके लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। मेरी जो मदर है वो, उनको हर गर्मियों में ये इशू होता है, उनकी स्किन जो बर्न करने लग पड़ती है, स्किन पे इतना ज्यादा इचिंग होने लग पड़ती है किचन में काम करने की वजह से, उनके लिए भी मुल्तानी मिट्टी के अंदर दूध डाल के उसके अंदर थोड़ा सा यही एलोवेरा डाल के जब लगाएंगी उससे उनकी स्किन को एक कामनेस मिलेगी, एक पुरसकून सा फील होगा,
0: फ्रेशनेस आता है,
1: इफेक्ट मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं एक दो बातें और शेयर करना चाहूंगी जो خواتین جیسے ابھی ہماری جو لائبہ نے اور ایمان نے ابھی جیسے کہا کہ جو کچن میں کام کرنے والی خواتین ہیں نا, وہ بھی کچن میں جانے سے پہلے سن بلاک لگا لیں, نہیں تو جو ایک چاول جو ہیں چاولوں کو کسی اسپرے بوٹل میں ڈال کے چاول اور پانی اس میں ایڈ کر کے رکھیں, اور کچن میں جب آپ جاتے ہیں فریج سے وہ بوٹل نکالیں اسپرے بوٹل اور اسے اپنے چہرے پہ اسپرے کر لیں, تو اس سے بھی بہت اچھا ایک افیکٹ آتا ہے. تو آپ نے ایک بوٹل لینی ہے, اس میں چاول ڈالنے ہیں, تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے, اگر آپ چاہیں تو تھوڑے سے ایلو ویرا جیل کے ڈراپس بھی ڈال سکتے ہیں اور لیمن کے بھی ڈال سکتے ہیں. اٹ گیوز یو اے ویری ویری سودنگ افیکٹ.

0: जी, तो अब ईमान और लाइबा हमारे साथ शेयर करेंगी, क्योंकि आजकल के मौसम में हेयर फॉल जो है ना बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए अब आप दोनों ने हमें कुछ टिप बताना है।
1: अच्छा, जैसे आपने भी हेयर फॉल कहा, गर्मियों में ना डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा होता है।
0: एग्जैक्टली, और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा
0: होती है। बिल्कुल,
1: इसके लिए ना जो डैंड्रफ है स्पेशली, उसके लिए मेरी जो दादो बताती है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पुराने टोटकों का पता होता है, तो वो बताती है कि आपने दही लेके उसके अंदर, यही थोड़ा सा दही लेके उसके अंदर जो आप ऑयल यूज करते हैं सरसों का जो भी वो वाला ऑयल डालना है, उसको एक बार आपने लगाना है। उसके बाद आपके जो डैंड्रफ है उस पर इतना इफेक्टिव है वो, कि आपको वो डैंड्रफ ओवरकम भी होगा और आपके बालों में एक नेचुरल शाइन भी वो ऐड करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: और मैं भी ये कहना चाहूंगी कि सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उनको यूज करने से पहले एक दफा अपनी हेयर पोरोसिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा तेल होते हैं जो हमारे बालों पर सूट नहीं करते। जैसे कि हमारे बागों पे, मेरे बागों पे सरसों का तेल यूज सूट नहीं करता। हम बचपन से ये तेल लगाते थे लेकिन कभी सूट नहीं किया, तो मेरी अम्मा साहब वो कहते कि तेल लगाने से तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद हमने लगाया ही नहीं,
0: नहीं।
2: तो जब इस हेयर प्रोसेस का पता चला,
0: तेल भी अच्छा होता है,
2: लेकिन वो कुछ बागों के लिए हैवी होता है ना, हैवी मटेरियल होते हैं बीच में, तो जब से हमें पता चला कि हेयर प्रोसेस भी कोई चीज होती है, तो हमने फिर अपने बागों के हिसाब से तेल फाइंड किया, तेल को ढूंढा कि कौन सा तेल हमें,
0: कौन से प्रोडक्ट्स हमारे बालों के लिए अच्छे हैं।
2: तो हमारे बालों के लिए वो होता है ना शिकाकाई रेठा आमला का, वो बहुत इफेक्टिव होता है, और उसे फौरन पता चलता है, कोई फर्क महसूस होता है, हेयर फॉल उससे बहुत कम होता है।
0: बिल्कुल, पाउडर इसीलिए बाजार से मिल जाता है, वो भी अब मिक्स करके आप बालों में लगा सकते हैं। तो सामीन, अभी टाइम हुआ है एक ब्रेक का, वी बी राइट बैक।
3: We will be right back after a short break. Stay tuned.
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: जी वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद हैं ईमान, ज़हरा और लाइबा आसिफ एफएम 101 के स्टूडियो में. आज हमारे साथ शेयर की बहुत अच्छी ब्यूटी टिप्स. जी तो अब मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके घर को, आपके कमरे को एक ऐसी लुक दे सकते हैं जो कि लगे ये वाकई आपने इंटीरियर डिज़ाइनर से डेकोरेट करवाया हुआ है. एक रिच लुक आप कैसे अपने घर को या अपने कमरे को कैसे दे सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा हमेशा जो है ना बहुत महंगी चीज़ें ही इस्तेमाल करनी हैं या सोफ़ों और पर्दों के लिए बहुत महंगा महंगा कपड़ा ही लेना है. अगर आप उसे अच्छे तरीके से स्टाइल करें तो भी आप उसको बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं. तो जैसे कि कर्टन्स हैं, कर्टन्स आपके घर की विंडो का साइज़ जो भी है. आजकल ट्रेंड में क्या है कि जो कर्टन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रूफ, बिल्कुल वो सीलिंग से स्टार्ट हो रहे हैं. चाहे आपकी खिड़की छोटी है या बड़ी है, जो भी है, लेकिन जो कर्टन्स हैं
1: वो वॉल को कवर कर
0: रहे हैं. तो इसलिए अगर आपके आपके घर में या आपके लाउंज में एटलीस्ट आप अपने ड्रॉइंग रूम में टीवी लॉन से स्टार्ट करें ताकि इकट्ठा पूरा जो है, ठीक है. तो जो कर्टन्स हैं उनको बिल्कुल एक नई लुक देने के लिए आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपने बिल्कुल जो सीलिंग से जो है कर्टन्स आपके स्टार्ट हों, उसमें कोई भी ज्यादा फूल बूटों वाले प्रिंट्स ना हो, चेक्स ना हो.
2: आजकल तो एस्थेटिक वो बहुत ज्यादा चल रही है ना चीजें.
1: जितना सिंपल जितना प्लेन होगा वो उतना ज्यादा रिच लुक देगा, वो उतना ज्यादा क्लीन
0: लुक देगा. और वो जो होते हैं ना जो डार्क कलर्स हैं जैसे, वो भी आउट ऑफ फैशन है. तो आजकल काफी सटल कलर्स चल रहे हैं, आइवरी स्किन टोन्स और इस तरह के शेड्स, डल गोल्ड. अब पहले कहते थे जब ना वो जब दूल्हा दुल्हन का कमरा है ना तो उसी कलर्स जाएंगे. तो आजकल ऐसा नहीं है, सटल कलर्स, डल गोल्ड कलर्स, सिल्वर कलर्स जो डल टोन में है, जो ग्रे की लुक दे देते हैं, ग्रे सिल्वर, वो आजकल जो है बहुत फैशन में है और आपके कमरे को ऐसी लुक देते हैं कि आपने वाकई इंटीरियर डिजाइनर से करवाया हुआ है.
1: बिल्कुल.
0: और जो इनडोर प्लांटेशन का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा हो गया है.
1: मेरी मम्मा खुद बहुत ज़्यादा उनको शौक है प्लांटिंग का. वो जब कभी जाएंगे ना, हमारे एरिया के पास ही नर्सरी है. अच्छा, वो जब वहाँ से गुजरेंगे, अगर हमने किसी और काम के लिए भी जाना, वो कहेंगे अगर मैंने इधर से कुछ नहीं खरीदा ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इनके साथ ज्यादती कर दी है.
0: अच्छा अच्छा, वाह जी वाह. तो ऐसा भी होता है. तो ये तो पौधों से सबकी वैसे मोहब्बत है कि आपको ना ऐसा लगता है होनी भी चाहिए. क्योंकि जितना आप नेचर के करीब रहते हैं ना, जितना आप ये जो जैसे लोग देखो छुट्टियों में कहीं पे यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में क्यों जाते हैं, मतलब कि क्यों आप देखो
2: सुकून.
0: एग्जैक्टली कि आप जितना आप नेचर के करीब रहते हैं, जो अल्लाह की नेचुरल बनाई हुई चीज़ें जो हैं उसके करीब रहते हैं, तो आपको एक ज़हनी सुकून मिलता है. तो इसी तरह जो फूल पौधों के साथ, प्लांट्स के साथ आप जितना भी टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको बहुत, आप कभी अगर आप स्ट्रेस में हो और उसमें आप करके देखो
2: काफी रिलैक्स फील होता है और काफी सुकून मिलता है.
0: आप प्लांटेशन करके देखो तो उसमें ये होता है कि आपको फील होता है ना कि आप किसी की जैसे किसी को एक जिंदा रहने में मदद कर रहे हो, उसको पानी दे रहे हो,
1: उसकी प्रॉपर केयर कर रहे हो. मेरी मम्मा कहती है मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, इनका मैंने इनके भी पानी का ख्याल रखना है. वो गर्मी में अगर ज्यादा धूप है तो मम्मा कहेंगी इस पौधे को इतनी धूप नहीं चाहिए, इसको साइड पे कर लो, इसको ये कर लो,
0: इसको धूप में रख दो, इसको कर लो. बिल्कुल बिल्कुल. और जो इसके साथ ही मैं शेयर करना चाहूंगी कि मनी प्लांट जो है ना सबको अपने घर में जरूर रखना चाहिए. वो एक ना एक जो एक पॉजिटिव वाइब भी देता है और वो ऐसा पौधा है जो इंडोर आराम से चल भी जाता है.
1: तो आप उसे चाहे अपनी बेल होती है,
0: एग्जैक्टली आप चाहे उसे अपनी स्टडी टेबल पर रखें, अपने किचन में, लाउंज में, कोने पे, कहीं भी रख दें, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होती. और आपको इसलिए लगता है ना कि जैसे कि आपने कहा आपकी मामा कहती है मेरे बच्चे, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, जब आप उन्हें बड़ा होते देखते हैं ना तो आपको इतनी खुशी होती है.
2: हमने इधर था ना, गर्मियाँ थी तो आम की गुठलियाँ जो होती हैं वो हमने लगा दी थी. तो अब वो जब ग्रो कर रही थी तो वो एक अलग ही खुशी मिलती है.
0: मैंने भी अपने घर में जो पौधे लगाए हुए ना, तो सबको कहती थी ये देखो ये मैंने लगाया था, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत खुशी देती हैं. और उनके साथ आप जितना आप नेचर के साथ, इन चीज़ों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपको हमेशा बहुत अच्छा लगता है. तो जी अब चलते हैं एक ट्रैक की तरफ और फिर मज़ीद गपशप हमारी चलती रहेगी लाइबा और ईमान के साथ.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajih Hasim. Program hai Ladies Lounge. Aapka aur mera saath rehne wala hai theek 1 baje tak. जी आज के प्रोग्राम की जो पोस्ट है ना हमारे ऑफिशियल एफएम मालूमान के पेज पे अपलोड कर दी गई है सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर आप क्या सुनना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं आपके दिल में क्या है सब कह दीजिए नो डाउट हमारा भी टॉपिक होने वाला है जैसे हमेशा हम बात करते हैं इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल में जो हो वो आप हमें नहीं कह सकते आपके दिल में कुछ भी है आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ये है आपका अपना FM 101 आज है 9 सितंबर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन बासलाहियत फ़नकारों की जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए मुल्क का नाम रोशन किया सबसे पहले ज़िक्र करना चाहूँगी उस्ताद मंसूर अली ख़ान का उस सिंध के अजीम क्लासिकी और सिंधी गुलूकार थे उनका जो ताल्लुक है ना वो था शिकारपुर से और वो ग्वालियर घराने से उनका ताल्लुक था और उस्ताद मंसूर अली ख़ान ने अपने मुनफरद आवाज़ और गायकी के ज़रिए सिंधी मौसीकी में एक नुमाया मकाम हासिल किया उन्हें 1978 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया और दिलचस्प बात यह है कि उनका इंतकाल भी 9 सितंबर 1980 में हुआ और 9 सितंबर को पैदा होने वाली एक और अहम शख्सियत है रशीद नाज वो 9 सितंबर 1948 को पेशावर में पैदा हुए और उन्होंने पश्तो टेलीविज़न ड्रामों में अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और 9 सितंबर को वसीम अब्बास भी पैदा हुए और 1960 में पैदा हुए वो लाहौर में पाकिस्तान के मारूफ टेलीविज़न फ़िल्म और थिएटर अदाकार और हदायतकार रह चुके हैं स्क्रीन राइटर भी हैं रात आशियाना फैमिली फ्रंट लंडा बाजार और दिन जैसे ड्रामों में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया वो मारूफ गुलूकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी के साहबजादे थे फ़नकार सिर्फ किरदार अदा नहीं करता बल्कि अपने फ़न के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाता है उस्ताद मंसूर अली ख़ान की आवाज़ हो रशीद नास की यादगार अदाकारी हो या वसीम अब्बास का तवील फ़नी सफ़र ये सब पाकिस्तान की जो सकाफ़त है ना उसको इन सब ने अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया है

देखिए जैसे कि सूफीज़म है, सूफियाना कलाम है, हमारे बहुत से जो हैं शायर हैं वो इस चीज़ को आगे लेके गए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया है कि सूफियाना कलाम क्या होता है। तो हमारे इसी तरह हमारे जितने भी ये अदाकार हैं, फ़नकार हैं, मौसीकार हैं, उन्होंने हमेशा जो है अपने रूट्स से ना हमेशा अटैच रहे हैं और उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को आगे लेके चले हैं।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajiha Asim. It's 11:54 in the studio at the moment. जी हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत अच्छी सी बहुत प्यारी सी इंटर्नी लाइबा आसिफ जो कि अपनी आवाज़ में हमें कुछ गुनगुना के सुनाएंगी.

0: चैन चुराए।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है आवाज़। हमारे साथ तो इस वक्त स्टूडियो में स्टार मौजूद है। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत बहुत प्यारी आवाज़। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जो हमारे जो लिसनर्स मौजूद हैं, इनको भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। एजाज अली ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और नईम टेलर ने कहा है, नाइस आर जे, थैंक यू। और रमज़ान गुजर ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं, आदाब अर्ज़ करते हैं मैम वजीहा, कैसी सेहत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज अली ने कहा है, वेलकम, खुश आमदीद। इफ्तिखार अहमद ने मैसेज किया है, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? योर प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड स्टाइल, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। शुक्रिया शुक्रिया, क्या ही बात है आपकी। और कहते हैं, ऑलवेज गिव यू, मे अल्लाह ऑलवेज गिव यू एवरी हैप्पीनेस, एवरी सक्सेस। और बहावल नगर से वो हमें सुन रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ कहते हैं, जिन लोगों ने आप की कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह ना करें, मुस्करा कर यूँ गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें, नई मंजिलें आपकी मुंतज़र हैं। क्या ही बात है, बिल्कुल सही किया। उनको वैल्यू करें जो आपको वैल्यू करते हैं, उनको टाइम दें जो आपको टाइम दे देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को, पहले ऐसे होता था ना, आपको लगता था बहुत ज़्यादा करेंगे उनके लिए तो शायद, जैसे हमें हमारी माएँ समझाती थी, क्यों बताओ आप दोनों, हमारी माएँ समझाती थी कि जी आप करते जाओ। जैसे मुझे मेरी अम्मी कहती थी, कुछ नहीं होता, बस आपने करते ही जाना है। वो उस दिन ना भाई कभी होगा कि वो उनको समझ आ जाएगी। ऐसा व्हाट डू आई रियलाइज इट, दे कैन यूज टू All that, कि आप नहीं करना है
2: क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी बर्दाश्त किया होता है अपनी ह्यूमिलेशन।
1: एग्जैक्टली
3: मुझे ऐसा लगता है दौर बदल जाते हैं, लेकिन हर दौर में जो स्टेप पे अम्मा आती है, वो जब अम्मा बन जाती है फिर नहीं बदलती।
1: बदलती
3: वो अम्मा का एक ऐसा वो करेक्टर है कि वो 2016 की भी अम्मा की वही सोच है, 2026 की अम्मा की भी वही सोच
1: है। क्योंकि देखिये वो अपनी माओ का माइंड सेट लेके चल रहे होते हैं, बस दिस इज द न्यू जनरेशन, हमने वो बैरियर तोड़ना है। ठीक है ना, ठीक है ना। और तारिक मिनहास ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं, मैं भी 9 सितंबर 1966 को पैदा हुआ हूँ। तारिक महमूद मिनहास, प्रोग्राम बहुत प्यारा है। और गुजरांवाला से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तारिक मिनहास को कहते हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, उनकी भी आज बर्थडे है। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ ज़िंदगी में दिखाए। और साथ ही हमारे साथ हैं कवलनास, कहती हैं कि कैसी हैं आप आरजे वजी आसिम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिक मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं सुपर सुपर सुपर, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, कहा है जाहिद खान ने। साइम तबस्सुम ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम वजी आसिम साहिबा? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक राज़ी हो आपसे। और मैं पेरिस फ्रांस से आपको आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आपको, आपके सब सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को प्यार भरा सलाम दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने हमें पेरिस से ज्वाइन किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मैसेजेस शामिल करूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यूज़ ब्रेक, आई विल बी राइट बैक।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बैंक और मालियाती इदारों को किसानों, SMEs और हाउसिंग के शोबे को कर्ज़े फ्राहम करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने मुल्क में हॉकी के खेल को दोबारा बहाल करने का आज़म ज़ाहिर किया है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को मुख्तलिफ इलाकों में अवामी सतह पर शदीद मुसल्ला मुज़ाहमत का सामना है। खबरें तफसील से।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajih Asim. Program hai Ladies Lounge. It's 12:04 p.m. in the studios at the moment. Hamare saath studio mein maujood hai Iman Zahra aur Laiba Asif.
1: Ji. बिल्कुल हम इस टाइम मौजूद हैं और जो हम अभी बात कर रहे थे वही कि लड़कियों की कि वो कैसे अपने घर वालों से जान छुड़ाने के लिए उनसे फ्रीडम हासिल करने के लिए किसी और की उसी किस्म की क्या कहते हैं गुलामी चले नहीं लेकिन उसके
0: लड़कियां ऐसा भी तो होता है ना कि इसीलिए शादी के लिए हाँ कह देती हैं क्योंकि उनके पास नो कहने का ऑप्शन ही नहीं होता
2: और ये होता ना कि मतलब वो पूछते हैं बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि हमने अपनी बेटी से पूछा कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं लेकिन जबकि उसके पास चॉइस नहीं होती अगर वो नो कहेगी तो उसको फिर
0: हाँ बिल्कुल किया जाता है। बहुत ज्यादा सवाल जवाब किए जाते हैं और जैसे आजकल ना ये भी बहुत ज्यादा हो गया है कि अब सबको पता है कि जी हाथ बस नहीं उठाना और बाकी सब कुछ करना है क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कि फिजिकल प्रूफ आपको दे देती है। ठीक है, तो इसलिए आजकल हमें सोशल मीडिया पे जितनी न्यूज़ भी हैं और जितने आजकल काफ़ी ड्रामे भी जो हैं अब उसमें भी यही दिखाया जा रहा है कि उसमें फिजिकल जो है ना कि जो मारपीट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा एक रिलेशन में उनकी शादी को 30-40 साल भी हो गए हैं, बहू बच्चे भी हो गए हैं, बहू बेटे और वागे बेटियाँ भी मैरिड हो गई हैं, फिर भी उनकी जो शादी जो है ना वो उनमें कोई आपस में उनमें
2: अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहते हैं बच्चा होगा तो सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा,
0: ही हो जाएगा। Exactly,
2: लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसने नहीं बदलना वो नहीं बदलता।
0: नहीं बदलता बिल्कुल। और ये होता है कि जो आपकी माएं आपको ट्रेन करती रहती हैं कि नहीं वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, आप अपने आप को झुटला रहे होते हैं। तो ये होता है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ इसलिए सब कहते हैं कि ठीक हो जाता है क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको उसके मुताबिक रहना आ जाता है, हो जाते हैं। और एक नेचुरल जो है ना यहाँ पे एक नेचुरल सी एक नॉर्म है कि जी लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, लड़कों को नहीं बताया जाता है,
2: एटिकेट्स नहीं सिखाए जाते उनको, ये नहीं सिखाया जाता कि अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है, उसकी इज्जत कैसे करनी है।
0: देखिए बात यह है कि जो एक जरूरी बातें हैं ना जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी हैं उनको डिस्कस करने में सबको शर्म आती है। ठीक है,
2: ऐसा ही है,
0: वो आपने डिस्कस नहीं करनी है आपको, और चाहे कल को काम खराब हो जाए, आपका बेटा या बेटी कुछ और कर ले, इससे बेहतर है कि आप ओपनली खुद उनसे बात करें।
1: लेकिन वो इतना कंफर्ट जोन रखते ही नहीं अपने रिलेशन के अंदर के बच्चा बात कर सके, वो एक झिझक, वो एक डर जो माँ बाप, बल्कि वो एक इंसान को होना चाहिए कि नहीं मैं अगर कोई बात करूंगा मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करूं, उनकी राय में लिए ज्यादा है।
0: और जब आप पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके कुछ करते हैं ना तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से
2: कॉन्फिडेंस जो होता है ना कॉन्फिडेंस में बूस्ट होता है बच्चों में।
0: तो जी अभी जितनी भी माए खवातीन और जो हमें इस वक्त घर में सुन रही है उन्होंने देखे आजकल कि बच्चियों का जो है ना फीडबैक भी सुन लिया है कि बच्चों को वाकई चाहिए होता है कि उनकी बात कोई सुने, कोई उनको इतना कंफर्ट जोन दे। अब आप चीख चीख के उनसे पूछेंगे बताओ क्या हुआ है, क्या मसला, तो वो कभी भी नहीं आपको बताएंगे,
1: बिल्कुल भी नहीं बताएंगे।
0: तो आप उनको इतना कंफर्ट जोन दें कि वो जो है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई गलत काम हो भी गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जैसे एक पेपर है ना, आप नया जो है ना बिल्कुल नवा नकोट आप पेपर लेना, आपको सीधा हाथ में पकड़े ना वो कभी भी नहीं हाथ में खड़ा होगा, वो कभी यहाँ गिरेगा कभी वहाँ गिरेगा, जो प्लेन बिल्कुल एक साफ नया पेपर होता है, और उसी पेपर को अगर आप हाथ से चिकना चूर वो तोड़ मरोड़ के तो फाड़ना नहीं है, उसे आप अगर हाथ में अपने वो पूरा मुट्ठी के अंदर आप कर लें और फिर उसको खोलें और आप उसे खड़ा करें, वो खड़ा हो जाएगा
2: क्योंकि वो सख्त हो गया।
0: वो देखे वो यही, तो इस बात से आपको समझ आया है ना कि इंसान ट्रायल और एरर से ही जो है मजबूत इंसान बनता है। اور یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے حساب سے مولڈ ہونا ہے, آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے, تو اس لیے پھر لڑکیوں کو بعد میں جا کے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اور جتنا وہ سوچ کے آتی ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی ٹرپ پہ جانا ہے, شادی کے بعد جانا, کہیں جانا ہے اس کے بعد جانا, تو وہ پھر بعد میں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سب کا روٹین, سب کی چیزیں, تو وہ اس لیے کچھ شوق جو ہے نا, کچھ مائیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہیں پہ اپنے شوق جتنے ہو سکے پورے کر لیں. بالکل بالکل بالکل. تو جی ابھی ہم لیں گے ساتھ ساتھ کالز بھی, لیکن ابھی پلے کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست سا ٹریک. مزید گپ شپ آپ کے ساتھ جاری رہے گی, اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے, اور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 4471.

0: वेलकम बैक, प्रोग्राम है लेडीज लाउंज और आज हमारे स्टूडियो में बहुत रौनक है क्योंकि हमारे साथ हैं ईमान और लाइबा जी। ईमान और लाइबा, अब आपको क्या लगता है कि घर में जो है ना क्या रीजंस हैं कि आप अपनी अम्मी या अब्बू के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, या आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो या कोई भी दिल में दिमाग में कुछ चल रहा है या आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आप उनसे क्या वजह है ताकि हमारी जो सुनने वाली ऑडियंस हैं उनको पता चल सके कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको क्या मतलब कि अम्मियाँ कहती ना सारा कुछ तो करी रहा ऐसी और की करा मैं तो यू नो तो अपना अब आपने फीडबैक बताना है ताकि उन्हें पता चले कि क्या कहाँ वो लैक कर रहे हैं। ठीक है,
1: वो यही बात है ना, अंडरस्टैंडिंग की सबसे पहले वही बात आती है कि जो भी अगर हम सोचते हैं, बेटियां सोचती हैं कि हम अगर बताएंगे तो हमारा साथ देंगे, हमें सुनेंगे, हमें समझेंगे, लेकिन जैसे ही हम बताते हैं एकदम से टर्निंग पॉइंट आता है। वो पहले बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी हमारे से शेयर कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन जैसे
0: ही हम पूरा खुलवा नहीं लेते
1: तब तक वो सुनते हैं और फिर
2: सही बात सामने ना आए
1: और फिर जैसे ही वो पता चलता है कि हमारे क्या आइडियाज हैं, हमारी क्या आगे क्या
0: करना चाहते हैं, हाँ।
1: तो वो एकदम से वो एक गुस्से का वो उभार वो होता है, तो वो एकदम से वो बेटी जो होती है वो डर जाती है।
0: उनके जो असल जो उनका जो होता है ना, जो असल उनका रिएक्शन होता है वो सामने आ जाता है,
1: वो सामने आ जाता है। तो बेटी ने वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता कि आगे से ये रिएक्शन आएगा, क्योंकि वो पहले तो बहुत ज्यादा स्वीट और वो
0: फिर आपको लगता है कि जो करना है घर से निकल के ही करना है और आपको शादी के अलावा फिर कोई एस्केप नजर नहीं आता।
1: और फिर ये भी होता है ना कि जो बेटी होती है वो सबसे उसका पहला हीरो उसका बाप होता है
0: exactly.
1: और जब वो उसको उसको बाप से वो प्यार नहीं मिलता तो वो किसी और मर्द में ढूंढती है वो प्यार
0: ढूंढती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जब उसको वो कहती है कि शायद मेरे बाप ने नहीं दिया तो शायद मेरा अगला पार्टनर जो होगा वो मुझे भी प्यार देगा। लेकिन ये फिर होता है कि जब उससे वो भी नहीं मिलता तो फिर वो बिल्कुल टूट जाती है
0: और यही बात है कि आजकल इसी चीज को ना बस सबसे ज्यादा ओवरलुक किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि बस ना बस जी पैसा दे दिया है, खाने पकाने के लिए पैसे दे दिए हैं, रोटी खा लो, कपड़े पहन लो, जूते पहन लो। और यही बात आजकल जो बहुत वायरल हो रही है कि ये सिर्फ तीन चार चीज़ें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती
1: नहीं जरूरी।
0: और बहुत सी होती हैं जब लड़कियां कभी कभार डाइवोर्स या सेपरेशन की तरफ भी आती हैं तो ऐसा होता है कि ना वो कहता जाता है मारता तो नहीं है ना, बस ये एक रीज़न होता है कि बस मारता तो नहीं है ना, बाकी सब
1: खाने पीने को सब कुछ दे रहा है, रोटी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर चीज़ की कमी क्या है,
0: क्या कमी
2: आ रही है। वो बेसिक नीड्स को ही कहते हैं कि बस यही है सब कुछ।
1: बेसिक नीड्स उसे उसके घर में भी मिल रही होती हैं, माँ बाप के घर में भी मिल रही होती हैं, तो वो क्यों दूसरे उनके घर जाए और फिर उसको एक एक चीज गिनवाई जाए।
0: हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल, वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू, बड़ी मेरा आप दोनों को वेलकम कहना चाहता हूं। आप दोनों के कंबाइन शो सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तीनों तीनों आज हमारे साथ दो इंटर्नीज मौजूद हैं।
3: वेलकम कहना चाहता
0: हूं। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू
3: सो मच। बात कानों के हवाले से बात कर, हम लोगों के मुंह में भी पानी आ गई।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप शो के हवाले से?
3: और मैं ये क्या शो भी माशाल्लाह जबरदस्त है, तो यही कहना चाहता हूँ, बेवकूफ रहो जिन ताल्लुकात कायम रहेगा। जिस दिन गलत तुम्हारा कहना शुरू किया तो उस दिन ताल्लुकात भी खत्म और रिश्ता भी खत्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और ये आपको क्या लगता है कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करना चाहिए?
3: बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के लिए इंसान को एक्सरसाइज कर लेना चाहिए और खाने वगैरह अच्छी तरह डीसी करने का लेना चाहिए। ज्यादा जो है पकाने वाला चीजें नहीं खाओ, ऑयल वाला चीजें नहीं खाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: क्योंकि जब आप ज्यादा ऑयल वाला चीजें खाएगा तो आपकी बॉडी जो वो मोटापन का शिकार हो जाए, आपकी बॉडी मोटा हुआ है, फिर उसमें आप खोल के वगैरह प्राप्त नहीं कर सकते, फिर आप एक सुस्ती के शिकार हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है सही बात है। चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और आपने अपना फीडबैक दिया। अल्लाह हाफिज। जी तो साथ अब मज़ीद कुछ कमेंट्स शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। एहसन खान ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नाइस शो, आपका बहुत शुक्रिया। कंवल नाज ने हमें ज्वाइन किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। और नसीर हुसरो ने हमें मैसेज किया है बलूचिस्तान से, रमज़ान गुजर हैं हमारे साथ, और रिहान खान बखर हमारे साथ मौजूद हैं, हमदुल्ला मलाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। साइम तबसम ने हमें बहुत प्यारे से फूल भेजे हैं, हार्ट्स भेजे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा चौधरी कहते हैं रेडियो फैमिली चैनल, थैंक यू वेरी वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, वेलकम टू द शो, कौन बात कर रहे हैं?
4: जी इजाज़ अहमद बात कर रहा हूँ।
0: जी इजाज़ अहमद, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: जी ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे?
4: हमारे मेहमान आए हुए, इनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
4: हमारा बात ये है वजीहा आती, देखो ना ये मेहनत करके दोनों कितनी गर्मी में मासूम से चेहरे लेकर आपके सामने बैठे हैं।
2: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल,
4: हमें चाहिए इनकी बात से गौर करनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो ये देखो ना, बेटी को हक दिलाने के लिए हमारे नबी पाक ने भी फरमाया है कि अगर वो हक पे है तो उनका साथ दो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: अगर वो हक पे नहीं है तो उनको प्यार से वो कहते हैं घर में समझाने की कोशिश करने की, बेटा ये गलत है ये सही है।
0: बिल्कुल,
4: तो बेटियों को ये करना चाहिए। अगर वालिदैन देखो ना, एक दिन से लेकर 18 20 या 25 साल तक उनकी परवरिश करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो उनको ये 25 साल का जो पीछे रिकॉर्ड होता है उनको सलामत रखें, क्योंकि अगर वो ठीक होगा तो उनके बाप की वालिदैन की इज्जत होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: अगर बात कर रही थी कि मुझे नाम तो नहीं इनके सीधा आ रहे हैं, मुझे जेन में नहीं, क्या नाम है?
0: नाम बताओ आप।
2: मेरा नाम गायबा है।
5: और मेरा नाम ईमान।
0: ईमान है हमारी बहुत प्यारी सी इंटर्नीज है, और आपने अब इनका नाम नहीं भूलना, ठीक है ना?
4: नहीं नाम मैंने सुने, लेकिन मुझे वो क्या कहते हैं कॉल में नहीं भी नाम।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं। जी जी,
4: मैं आपका नाम नहीं अभी तक सही तरह याद है।
0: वाह जी, आपने तो छक्का मार दिया अब तो है।
4: नहीं नहीं छक्का नहीं मारा, आपको पता है कि मैं कौन हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: बात ये है कि दुश्मन जो है ना, हर तरफ औरत ही है, कि औरत की औरत ही दुश्मन है।
0: अच्छा।
4: बात हो रही थी 26 की और 16 की माँ की।
0: जी जी जी जी।
4: 16 की माँ भी वही है, 26 की माँ भी वही है।
0: अच्छा अच्छा।
4: वो एक सोच की बात है लाइबा, और ये कोई भी ऐसा काम नहीं, अगर नए घर में जाती हैं कुछ भी होता है कि नया कैदा और होता, पुराना कैदा और होता, कैदा वही होता।
0: सही हो गया सही हो गया। चले जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बाकी कॉलर्स को भी चांस देना चाहिए।
4: थोड़ी सी रिक्वेस्ट है।
0: जी जी जी जी।
4: मेरी जब शादी है, मैं अपनी बीवी का बस्ता उठा कर लेता था जाते स्कूल में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: मुझे ये पता ही नहीं था, जब मुझे पता चला इसके साथ हो रही है, मैं इसकी खामियां निकालने लगे, फिर मैंने अल्लाह ताला से कि यार जो भी है मेरे नसीब में यही है।
0: यही है मतलब, आप उनकी गलतियां निकालते थे।
4: काफी दफा हमारे घर में झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ठीक है, जब काम पे जाता हूँ अल्लाह का शुक्र है सभी ठीक चल रहा है। वो मेरी बातें समझ गई, मैं उसकी समझ गया।
0: समझ गया, सही है सही है।
2: अंडरस्टैंडिंग है ना, आपने उन्हें अंडरस्टैंड
0: किया। बिल्कुल बिल्कुल।
4: मैं तो ये मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बस्ता उठा के लेके जाता हूँ।
0: चले जी, थैंक यू वेरी वेरी मच।
4: भाई सुन रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको सलाम, आपकी पूरी टीम को सलूट।
0: अल्लाह हाफिज़। जी हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, क्या हाल है वजीहा जी?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? वेलकम टू द शो।
6: आपने मुझे पहचाना है?
0: हाँ लाइबा साजदा।
6: नहीं मैं
0: साजदा।
6: हाँ जी।
0: हाँ चलो जी, शुक्र है सही पहचान लिया। हाँ। आज मैंने ठीक है ना, तो पिछली दफा ना मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे। बोलो बोलो।
6: मैं लाइबा को और ईमान का दोनों को सलाम कहना चाहूंगी।
2: वालेकुम अस्सलाम।
6: और जबरदस्त बातें हो रही हैं आज, पता चल रहा है लेडीज वो है शो। अच्छा।
0: नहीं तो देखिए, हमेशा ना मैं ही बस बोल रही होती हूँ ना, मैं ही समझा रही होती हूँ, आज आपको फौरन ना फीडबैक भी मिल रहा है। ठीक है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि बच्चों के साथ कैसे आपने रहना है, कैसे उनकी बात को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं, लेकिन आज आपको ना साथ साथ फीडबैक भी मिल रहा है। ठीक है ना,
6: जैसे आप बातें कर रही है ना शादी के बारे में, बेटी को ये करते हैं वो करते, तो ये भी होना, यानी ना ससुराल वालों को चाहिए अगर बच्ची जाती है या लड़की जाती है उसका होता दूसरा जन्म, प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से डील करना चाहिए। और अगर फर्ज करो बस जेज नहीं लेके गीत ताने बहुत ही सुनने
0: पड़ते हैं। वही मैं यही बात करी थी कि हमें ना थोड़ा सा सेटअप हमें ना ये चीजें चेंज करनी चाहिए। हमें कहीं किसी को तो स्टेप लेना है ना, किसी को तो खड़ा होना है ना।
6: अगर उसने अगर बच्ची लड़की ने 10 काम सही किए हैं, एक गलत कर दिया ना, तो वो
0: दस भी गए। ठीक है,
1: ऐसा ही होता है, कोई फायदा ही नहीं है।
2: गिनती दोबारा से शुरू होती है।
6: और बात बात से ना छोटी छोटी बात में फिर लड़ाई झगड़े होना शुरू
2: हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपका भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया कि आप क्या सोचती हैं। बहुत अच्छा लगा, औरत ही औरत की दोस्त है और हमें औरतों को मिलकर ही नया माशरा दोबारा से बनाना है।
6: नहीं, ये कॉलर कह रहे थे ना औरत औरत की दुश्मन, औरत की दोस्त है, दुश्मन नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, दोस्त है।
6: और हर मर्द के पीछे भी औरत का हाथ है।
0: चलिए, थैंक यू थैंक यू।

0: We will be right back after a short break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajiha Asim. Program hai Ladies Lounge. हम आपका साथ निभाते हैं जब आप बढ़ रहे होते हैं अपनी एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ. जो लोग इस वक्त रास्ते में हमें सुन रहे हैं ना, तो उन्हें कहना चाहूँगी कि इर्द गिर्द जो है ना, आपके इर्द गिर्द जो साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, उनका भी बहुत ख़ास ख्याल रखें. और किसी को जाते जाते इस एक मुस्कुराहट की नज़र से ही आप देख लेना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है. जी, और साथ ही ना मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि जो कभी कभार होता है ना कि एक माँ बेटी या बहन कभी कभार ये सोचती है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, आज वो अपनी अम्मी से, अब्बू से या अपने हस्बैंड से बात करेगी उस बारे में. और फिर वो सिर्फ उन्हें यही कह देते हैं कि तुम बस बात का पतंगर बना देती हो और तुम बस बात को एग्जैजरेट करती हो, तुम बहस करती रहती हो. हाँ हाँ हाँ. और उनको अंडरस्टैंड करने के बजाय उन्हें बस ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, और कभी भी वो मेन प्रॉब्लम को फोकस नहीं करते कि किस वजह से वो ये कह रही है. बस उसका जो जब रिएक्शन आता है, और उसका रिएक्शन भी बहुत बर्दाश्त करने के बाद आता है, तो उसके ऊपर फिर बात शुरू हो जाती है कि नहीं, तुमने ये रिएक्शन क्यों दिया है.
1: उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाला जाता,
2: क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन निकालना नहीं होता. फिर उन्हें एक बात मिल जाती है कि इसने ये लव्स बोला था, इसने इस तरह रिएक्ट किया था, वो उस बात को जो प्रॉब्लम है उसे छोड़ कर रिएक्शन पे बहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
0: ठीक है. और पिछली दफ़ा मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे कि ना आपने कॉल जो है ना छोटी लिया करें ताकि सबकी जो है ना कॉल मिल सके. रजा चौधरी ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं हमने धोखे का मंजर भी देखा है, आँखों का समंदर भी देखा है. लोग कहते हैं संभाल कर चलना वो नादान, क्या जाने हमने अपनों के हाथ में खंजर भी देखा है. और शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से सलाम कहा है रजा चौधरी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और कहते हैं नाइस, माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजा चौधरी, हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत अच्छे कॉलर हैं. और कहते हैं दिलकश खुशामदीद खराज तहसीन पेश किया है उन्होंने आज हमें, आपका बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से?
3: ਆਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪੀ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ.
0: ਜੀ ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ. ਆਪਕੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਥੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਅਤਾ ਪਤਾ ਬਤਾ ਦੇ, ਸਭ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ.
3: ਆਪੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੀ ਜੀ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਪੁੱਲ ਉਤਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ.
0: ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ
3: ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ.
0: ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ
3: ਜੀ. ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਿਆਉਣਾ.
0: ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਉਸੇ ਘਰ ਕੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ.
3: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी जी.
0: यही बात कहना चाहती हूँ कि जो औरत होती है ना, चाहे उसका छोटा घर हो बड़ा घर हो, उसके लिए वो महल होता है.
2: बिल्कुल,
0: उसके लिए वो एक पैलेस से कम नहीं होता. और उसको उसमें जो है ना उसे दबा के रखना और कहना ये ना करो वो ना करो,
1: इज्जत मिलती है ना, इज्जत मिलती है, तो वो छोटे से घर को भी वो महल
0: बना देती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
3: आपकी जी ऐसा ही, मेरे तीन बेटे हैं, चलो उनकी शादी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी बेटियां ही होगी. लेकिन ये बात है कि मैंने अपनी घरवाली को बिल्कुल आज तक जो है ना किसी काम से नहीं रोका टोका किसी भी चीज से,
0: और
3: अल्लाह के हुक्म से मेरी बेगम ने आज तक मुझे किसी चीज की बिल्कुल
1: आपको भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम, सदा सलामत रहे आप जी. अल्लाह पाक करे तंदुरुस्ती से,
0: अल्लाह हाफिज़.
3: कैमरे रजा चौधरी साहब ने सलाम, मेरी आपिया साजिदा साहिबा है,
0: खुशी
3: दुआवां
0: से सबको सलाम. चलिए जी, ठीक है ठीक है जी. असल में मैं चाहती हूँ कि सबको मौका मिल सके. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
4: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो. कैसे आप?
4: अल्लाह का फजल करम है.
0: अच्छा, खान साहब बात कर रहे हैं आप, है ना?
4: ये तो बड़े तेज लोग हो भाई.
0: देखिए आज मैं सबको पहचान रही हूँ, ठीक है ना? क्या कहना चाहेंगे आप?
4: बात ये है, मैं तो लाहौर से क्वार्ट अपने घर आया हूँ एक महीने के लिए,
0: थोड़े काम है। अब जहाँ से भी आए कोई बात नहीं, हमें तो बस आपकी राय चाहिए।
4: नहीं तो ट्रांसमिशन जो नहीं आ रही है, मुझे बताया टॉपिक क्या है।
0: ओ हो,
2: आप हमारा शो ही नहीं सुन रहे।
4: तो भाई वो तो मुझे टाइमिंग का तो पता है ना,
0: टाइमिंग का तो पता है ना, इसलिए देखो अपने टाइम पे फोन कर लिया है। बिल्कुल, आज का तो शो पता है बहुत जबरदस्त है। हमारे साथ आज हैं लाइबा और ईमान, और आज हम बात कर रहे हैं कि ना कैसे जो लड़कियां जो है ना, वो शादी से पहले बस ये सोचती हैं कि उन्हें ना कभी कभार अपने माँ बाप के घर में वो फ्रीडम नहीं मिल रही होती, या वो उनको लगता है कि यहाँ से बस निकलने के लिए वो शादी कर लें।
4: नहीं, बात ये नहीं है। देखें, ये बच्चियां जो अपने माँ बाप का घर छोड़ के शोहर के घर जाती हैं ना, ठीक है ना, तो शोहर की जो बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं, खासकर बहनों की मैं बात करता हूँ, ये जब बहनें जाती हैं ना रिश्ता मांगने के लिए भाई का, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, उनकी इतनी है, सुनो बात बड़ी गौर से सुनो, अच्छे कान खोल के सुनो, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, हमारी ये है, हमारी वो है, आपको किसी की शिकायत ही नहीं मिलेगी। वो लोग जनाब अली, ये उनको मीठा मीठी बातों में फिसला कर रिश्ता हो जाता है। यस, जब रिश्ता हो जाता है दुल्हन चली जाती है तो सवालदारों के घर, तो फिर नंद पता ही क्या कहती है, पता है नंद क्या कहती है?
2: क्या कहती है?
4: नंद कहती है, अरे दुल्हन तेरा तीसरा दिन है, ये झाड़ू लो और सफाई करो, अरे किचन में आओ, ये बर्तन धो।
0: सही हो गया, सही हो गया।
4: फिर नंद का नाम पता है क्या रखा गया है?
2: दाइन।
0: अल्लाह माफ करे।
4: ना, कान खोल के सुनो, नंद को कहते हैं गन।
0: चले जी, देखे जो है ना यहाँ पे, देखे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपनी फुफियों के साथ, अपनी वो नंदों के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है। चले जी, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, सही हो गया, सही, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ना, बल्कि ऐसा भी है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी फुफियों से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और बहुत
1: कोई एक जैसा नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पर्सनैलिटीज होती है, जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी वो फुफी बन के भी अच्छी रहेगी।
0: हाँ एग्जैक्टली, और जैसे होता है ना, कभी कभार आप एक घड़ी खरीदने का सोच रहे होते हैं, कोई सूट आपको बहुत पसंद होता है, आप वो खरीदने का, वो आपको तब तक, या कभी एक गाड़ी आपको होता है, जैसे हमने गाड़ी बस इसके ऐसे फीचर्स हैं, इसमें ये है, या ये लैपटॉप है मुझे ये चाहिए, इसमें ये है, या ऐसा मोबाइल चाहिए। अब जब तक कोई चीज़ आपके पास नहीं होती ना, आपको बहुत अच्छी लगती है, और जब आपके पास होती है तो वो आके आपके पास कहीं अलमारी में कहीं पड़ी होती है। और जैसे मुझे एक परफ्यूम बहुत पसंद था, तो वो मैंने ले लिया, तो मैंने उसे हार्डली एक दो दफ़ा लगाया, फिर वो कहीं पड़ा है, ऐसा संभाल के रखा।
1: वो है ना कि जब चांद मिल जाए तो उस पे लगा दाग नजर आना शुरू
0: हो जाता है। तो यही हिसाब जो है ना बेचारी बीवियों के साथ भी होता है, कि जब आपको मिल जाती है ना तो फिर आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते, जैसे हम कोई सूट खरीद लें या कोई वो ले लें, तो फिर हमें उसकी, हमें अब गाड़ी जो गाड़ी है ना, शुरू एक महीना आप उसे धोएंगे, बहुत ख्याल रखेंगे, दो तीन महीने बाद उसका शौक भी, हाँ तो दो तीन महीने बाद वो शौक भी उतर जाता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है आपके?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। क्या कहना चाहोगी, पहले आप बता दें अपना नाम।
5: आप मुझे पहचाने ना?
0: हाँ, साथ सबको पहचाने। हाँ, ये
5: कवर से पहले तो क्या नाम है, ईमान बहना को और लाइबा बहना को मेरा सलाम, और उम्मीद है
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: कवल बोल रही है,
5: जाने ना मैं आपके शो में कितनी कॉलें करती
0: हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असल में सबकी जो है ना इतनी आवाज मिलती जुलती आते हैं, तो आप कवल बात कर रही हो ना?
5: नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो आपको कह रही थी हेलो अस्सलाम वालेकुम,
0: साजदानी अच्छा आज बता दो, नेक्स्ट टाइम नहीं भूलती।
5: देख यार मुझे भूल गई है, लाहौर से रिमचा
0: आज मैं लिख लेती हूँ तुम्हारा नाम, ठीक है ना? हाँ रिमचा, क्या कहना चाहिए?
1: वो जो पहले साजदा आई थी ना, उनकी भी बहुत स्वीट सी आवाज थी, और आपकी बहुत स्वीट सी आवाज है, मैच हो रही है।
0: हाँ तो रिमचा क्या कहना चाहती
5: है? रिमचा मैं आपका शो सुनती थी, आज मैं तो आपको नहीं भूली, लेकिन सब मुझे भूल गए, क्योंकि मैं आप काम करती हूँ इस वजह से।
0: अच्छा अच्छा, देखो गलत बात है ना, इतनी कम कॉल नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना।
5: जब इंसान की शादी हो जाती है फिर कम ही कॉल।
0: अच्छा शादी हो रही है,
2: ये तो टॉपिक से रिलेटेड आ गई कॉल।
0: चलिए जी, शादी मुबारक। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका?
5: अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा सही है, तो क्या कहना चाहेंगी शो के हवाले से?
5: कि अभी जो कॉलर आई थी उन्होंने बोला था ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हाँ ऐसा होता है, और औरत की दुश्मन भी होती है, दोस्त भी होती है, बहन भी होती है, और सब कुछ होती है। लेकिन मैंने देखा है मेरे घर के बिल्कुल सामने ना एक हमसाई रहती है हमारे, मैं उनको उनकी
0: स्टोरी
5: आपको बताती
0: हूँ। नहीं, इतनी छोटी करके बताना बस, ठीक है? शो का इतना टाइम नहीं, बाकी कॉलर्स नाराज हो जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, आपस में लड़ाई करती है एक दूसरे से?
5: बिल्कुल बिल्कुल, सामने खड़े तो उनके मतलब हस्बैंड ने दूसरी बात की है, तो आपस में उनकी बनती नहीं है, इतना डरती है। और लेकिन वो दूसरी जो है उनका रवैया और उनका लहजा बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनको कबूल नहीं करते। लेकिन ये उसको काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, वो काफी कुछ, क्योंकि इंसान इस्लाम में जैसे चार शादियाँ वो होती है, लेकिन और
0: करती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
5: होती है, उससे नाराज होता है, फिर वो करे तो, लेकिन वो उनको कबूल नहीं करते। लेकिन ये उसको काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, वो काफी कुछ, क्योंकि इंसान इस्लाम में जैसे चार शादियाँ वो होती है, लेकिन और बर्दाश्त नहीं।

0: Ji, thank you, thank you very much, thank you. ये थी रिमशा और साथ साथ मैं जल्दी से कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ जो मैं फेसबुक पे मौसूल हुए हैं. रमज़ान गुजर ने कहा है रिम से और रिमशा ठीक है. और रिहाना हान ने हमें मैसेज किया है, कहती हैं ब्यूटीफुल शो. रियाज भट्टी ने कहा है और रिहाना खान बकर से हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अभी जो हमें रियाज भट्टी ने हमें बहुत से खूबसूरत से मैसेजेस किए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमें साथ ही मदीना मनवरा से मैसेज किया है फ़िरोज़ आलम ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमें ज्वाइन किया. और साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना उतार चढ़ाव आता रहता है और आप बहुत सी गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इतना मौका देते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीख सकें. क्या कहोगे आप? कि अक्सर लोग होते हैं ना, आपको कभी कभार ऐसा होता है, आपको बहुत ज़्यादा सुनाते रहते हैं कि तुमने ये किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था या वैसे नहीं होना चाहिए था. जब आप किसी को इतनी स्पेस भी दे दो ना कि कोई बात नहीं, आप जो मर्ज़ी करो, तो भी इंसान जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है कि कोई बात नहीं कि मैं अगर कोई मुझसे गलत. जब आप इतना आपको प्रेशर हो कि आपसे कुछ भी काम गलत ना हो, तो फिर आप थोड़ा सा आप
1: घबरा जाते
0: हाँ, और आपने जो करना होता है वो भी नहीं आप कर पाते.
1: और फिर जिससे रोका जाता है फिर गलती में वही होता है,
2: क्योंकि इंसान पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है ना कि अगर मुझे कोई कहे तुम ये कर रही हो, तुमने इसी तरह करना है, तो मुझे ये होगा कि मैंने बिल्कुल गलत नहीं करना. वो और अनइंटेंशनली मुझसे अगर कोई गलती हो भी जाएगी और मुझे चाहे वो गलती इतनी बड़ी ना हो, लेकिन मेरे लिए वो एक अजाब बन जाएगा कि ये मेरे से कैसे हो गया.
1: फिर लोगों को भी थोड़ा सा वो देना चाहिए ना, स्पेस देनी चाहिए और मार्जिन देना चाहिए इंसान होने का कि आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान है,
0: बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते
1: हैं. और फिर जो गलती कर रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, या उसको खुद भी गिल्ट फील होता है.
2: और अगर आप इंसान को मार्जिन दें, अगर आपके अच्छा चलो तुमसे होगी नेक्स्ट टाइम ना, इंसान मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अच्छा अब मुझसे ये हो गया, अब मैंने अगली बार शिकायत का मौका नहीं देना, और वो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हो जाता है.
0: हो जाता है बिल्कुल. अच्छा, फिरोज आलम जान ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं माशाल्लाह सदा सलामत रहें, हमेशा की तरह सुपर शो, नंबर वन आरजे, नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 101 लाहौर, फ्रॉम मदीना मनवरा सऊदी अरेबिया. और एहसन खान कहते हैं वेलकम, नाइस शो, और हमें हमेशा जो है ना ये ज्वाइन करते हैं सऊदी अरेबिया से. फ़िरोज़ आलम जान ने कहा है फ्रॉम मदीना मुनव्वरा, और शो इज़ ऑलवेज़ गुड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और रज़ा चौधरी ने कहा है अस्सलाम वालेकुम. इफ्तिखार अहमद ने कहा है जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की आप भी उनकी, ये मैंने पहले भी शामिल किया था. ऐसा होता है कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो आपको फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना. तो अभी आपकी इस बातों की नज़र करने जा रही हूँ, एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट, प्यारी सी दोस्त रियाज़, में कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। और हमारे साथ जी, वेलकम टू द शो एहसन खान।
1: बहुत शुक्रिया जी, आपने पहचान लिया।
0: जी बिल्कुल। और आज हमारे साथ इमान और लाइबा भी स्टूडियो में मौजूद हैं,
1: तो इनको अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: और बहुत बहुत वेलकम, क्योंकि मुझे नहीं मौका मिला इनको वेलकम करने का जब से आ रही है ना इंटरनेशनल प्रोग्राम में।
0: आगे आप देखेंगे, ये फ्यूचर आरजेज हैं हमारे।
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: माशाल्लाह जी, अपने पेशा और अपने काम के साथ मेहनत कर रही होंगी और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आवाज भी अच्छी है और माशाल्लाह बातें भी बहुत अच्छी करती हैं।
2: तो टॉपिक है,
1: तो जो टॉपिक है ना, वो ये है बड़ा हसास सा टॉपिक, हर बंदा बात कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि एक औरत जहाँ से जा रही है दूसरी, एक लड़की जा रही है, तो वो जब दूसरे घर में जाती है तो उसे मुकम्मल आज़ादी मिल जाए। हो सकता है उसे कुछ यानी कि बेहतरी फील हो अपने घर की निस्बत उस जगह पे,
0: और
1: हो सकता है कि उससे भी ज्यादा पाबंदियां आप पर लग सकती हैं, क्योंकि ये अगले बंदे पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में तो वो बिल्कुल ठीक समझी जाती हैं, लेकिन दूसरी फैमिली में वो चीजें ठीक नहीं समझी जाती।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हर घर का एक अपना और हर फैमिली का एक अपना रूल होता है कि वो किस बाउंड्री में रह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमें पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनके रवैये कैसे हैं, या उनका उठन बैठन कैसा है।
0: क्योंकि जो चीज आपको नॉर्मल लग रही है ना, वो जरूरी नहीं है कि अगले को भी नॉर्मल लगे, है ना। वो अगले के हिसाब से सही होना हो,
1: फैमिली है वो उस चीज को नहीं ठीक समझ रही होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: जो हमारी बहने लड़कियां हैं, इनके जो ख्वाब होते हैं इनके ऊपर जरूर इंसान को सोचना चाहिए, जो मर्द हजरात हैं घर के।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत दफा ना माएं बेचारियां बच्चियों को यही समझाती रहती हैं कि नहीं अब्बू नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मानेंगे। क्यों बच्चियों, ऐसा होता है कि नहीं होता?
2: बिल्कुल।
1: ये तालीम जो है ना, तालीम इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। बिल्कुल। पर ये जरूरी नहीं है कि जो जिस जगह पे जा रही है वहाँ का माहौल कैसा है या क्या चीजें, जो हमारी बेटी जा रही है जिस जगह पे बहन जा रही है वो कॉन्फिडेंस कितनी है और उसके अंदर तरबियत कितनी है।
0: बिल्कुल।
1: माहौल वगैरह ये मैटर नहीं करता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमें सर्दी में, हमें सर्दी लग रही होती है और हम कहते हैं जी हम बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं, लेकिन जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है हम उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चले जी एहसन खान, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। बाकी कॉलर्स को भी मौका देते हैं, प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया,
1: लेकिन रजा भाई को तो मौका नहीं मिलता।
0: मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना सबको, सबकी कॉल्स ले सकूं।
1: ओके जी, मुझे बर्दाश्त करने का
0: नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: अच्छा बेटा, बात ये है, ये जो बच्ची है ईमान नाम है ना?
2: जी जी
0: जी जी।
3: हाँ,
0: ईमान और लाइबा।
3: अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे,
2: आमीन।
3: हमारी दुआएं इनके साथ है, मैंने इसलिए कॉल कर दी।
0: अच्छा अच्छा, चले जी, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: ओके, थैंक यू वेरी मच,
0: अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक अब जबरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आप सबके लिए, कई मत जाइएगा, संतरी FM 101।

0: जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
1: फरीश गुर्जी लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा जी, वेलकम टू द शो फरी जी, कैसी हैं आप?
1: बड़ा वेट कराया, ट्रेन में खड़ी हूँ, पसीने पसीनी हो गई।
0: ओह जी, बहुत बहुत माजरत। देखिए मैंने ना गाने के बीच में ही आपकी कॉल ले ली है, मैंने कहा शो का टाइम कम रह गया है तो जल्दी से ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक है।
1: ये दो इंटरन आई हुई है हमारे स्टूडियो में।
0: जी जी बिल्कुल,
1: लाइबा जी आर जे मुस्तफा की सिस्टर है।
0: जी जी
1: इनका भी पता है, तो इन दोनों के ना अम्मी को बहुत सारा सलाम, मेरी तरफ से अपनी अम्मी को ना बहुत सारा सलाम कहना।
2: जी जी हो गया, वालेकुम अस्सलाम।
1: आज ना आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, ये माएं को, हर एक माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को ना आने वाले टाइम पे ना अवेयरनेस देनी चाहिए कि आगे वाले घर में ना कैसे पेश आना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो दूसरा, आज मैं ना खाने में ना मुर्ग चने बना रही हूँ।
0: क्या बात है, मुर्ग चने तो लाहौर के जो है ना फेमस है। हाँ फरी जी, आज तो मेरे मुँह में भी पानी आ गया है, मुर्ग चने।
1: नहीं,
0: नहीं, आप स्टूडियो में आ जाए। हाँ नहीं नहीं नहीं, चले जी अगली दफा जो है ना हम टाइम सेटिंग रखेंगे, ठीक है ना।
1: फ्राई किया है, 1 किलो चिकन जो है ना प्रेशर कुकर में फ्राई करके ना तो ज्यादा बोल में निकाल लिया है,
0: ठीक है।
1: चने डाल दिए हैं, 1 किलो चने मैंने डाले हैं ज्यादा सारे, बांटती भी हूँ।
2: वाह वाह वाह, क्या ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल
1: देने पड़ते हैं ना, इसीलिए इसके अंदर पेस्ट डाल दी है, प्याज की पेस्ट, लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्ची की, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है ना, प्याज कम आती है, इसलिए सारा कुछ मसाला डाल के ना तो मैं इनको चढ़ा देती हूँ। नमक जैसा डाल दी है, थोड़ा सा कोरमा मसाला डालना है, चाइनीज नमक डाल के ना तो ये पक रहे हैं।
0: अच्छा,
2: मुझे तो खुशबू भी आ रही है आंटी की,
1: आवाज भी आ रही होगी, तो वो जब ये गल जाएंगे तो इसके अंदर जो फ्राई की हुई चिकन है ना वो डाल के उसे थोड़ा सा धनिया डाल देना है, तो उसको डिश सॉस डाल दे प्यालों में, साथ दही का रहता है, लस्सी है,
2: वाह वाह
1: भी है साथ में।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: हमारे घर में आ जाए, बड़े कॉलर खड़े हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: सब्जी ग्रुप वालों के लिए शमीम आपी आ नहीं रही है, अल्लाह खैर करे ये जल्दी से आ जाए, काल पे किसी शो में नहीं आ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी ये थी फरी जो हमेशा बहुत जबरदस्त रेसिपीज हमारे साथ शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। चले जी, देखिए आपकी कॉल मिल गई,
2: कांग्रेचुलेशंस।
3: आपको भी लगभग आपको सामने रखे, और आपके अपना लाहौर के हैं लिस्टनर है रमजान गुजर साहब, उनको मेरा सूफी सलाम। और ये जो लिस्टनर है ये माशाल्लाह रोशन चिराग हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बहुत
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे रोशन चिराग हैं, आप हैं तो हम हैं।
3: जी जी जी, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं, एक तमन्ना है आपके लिए।
0: शुक्रिया बहुत बहुत।
3: आप जो प्रोग्राम करती हैं हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनती हैं, और आप किसी की भी जिंदगी में अपना खुशी के रंग को अपना भर देती हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम होता है आप।
0: अच्छा जी, यू मेड माय डे, थैंक यू वेरी मच।
3: और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे, इतना कामयाब करे कि जितने भी लिस्टनर हैं सबकी दुआएं इकट्ठी हो गए।
0: आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने शो पसंद किया और आपने कॉल की, क्योंकि देखिए हमें भी आप लोगों का फीडबैक जो है ना वो चाहिए होता है कि आप लोगों को क्या सुनना है, क्या अच्छा लग रहा है। तो और आपको क्या लगता है कि लड़कियों को शादी के बाद जो है वैसा ही माहौल मिलता है या उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है?
3: नहीं नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है,
0: पड़ता है ना
3: करना पड़ता है। ये मैं अक्सर उनकी सबके हक में दुआ करता हूँ, ये बगाना तो होता है, एक घर से दूसरे घर जाती है, इनका हाथ ही रखना चाहिए अपने दोस्त वगैरह घर पे छोड़कर।
0: चलिए जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ओके जी, अल्लाह
3: हाफिज़।
0: जी तो जल्दी से एक गाना प्ले कर लेती हूँ, साथ साथ मैं आपकी कॉल्स भी बीच में ले लूँगी क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है। अ ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे, हियर यू गो।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि कम आमदनी वाले और मुतवस्त तबके के अफराद के लिए सस्ते घरों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। नायब वजीर आजम और मिस्र के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम की जानिब से शदीद मुसल्ला मुजाहमत का सामना है।
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ても知ろ。
1: You're listening to FM 101 Abale Bale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकों और मालियाती इदारों से कहा है कि किसानों, SMEs और हाउसिंग के शोबे को कर्जों की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पंजाब की वजीर आला ने सूबे भर में तहसील की सतह पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस के तौसी मंजूर। सिंध के वजीर आला ने मलेशिया के सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाने की दावत दी है। और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम की जानिब से शदीद मुसल्ला मुजाहमत का सामना है।

0: Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: Panorama.
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Daman Zaman. The headlines: the Prime Minister says banks and financial institutions should play the role in extending loans to farmers, small and medium enterprises, and the housing sector. The Deputy Prime Minister and the Egyptian Foreign Minister during a telephonic conversation have discussed the regional developments. The Minister for Board of Investment says Pakistan's foreign exchange reserves have reached $18 billion. The security forces have killed 11 terrorists during intelligence-based operations in Balochistan.
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जा दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
3: बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
4: इन्वेस्ट पार्क?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
6: दिस इज FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
8: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101. There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Prime Minister says federal government will continue to extend full cooperation to government of Azad Jammu and Kashmir for welfare of its people. Deputy Prime Minister and Egyptian Foreign Minister during a telephonic conversation have discussed regional developments. New Zealand has expressed keen interest in exploring opportunities for cooperation with Pakistan in various sectors. Eight Muslim countries, including Pakistan, have welcomed United Kingdom's decision to ban import of goods from illegal Israeli settlements in occupied Palestinian territory. Kashmir delegates at 63rd session of United Nations Human Rights Council have urged to intensify monitoring grave human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir.
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें जेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
3: दिस इज FM 101
2: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट पन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान

मिथक सा गया और चुप हो गया, मिथक सा गया और चुप हो गया, मिथक सा गया और चुप हो गया।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

मशीन। रात का शो मूड हो गया सेट, म्यूजिक ट्रैपी नो रिग्रेट, आरजे डॉक्स ऑन द फ्लोर, ये है सीन। 10 से 12 बन गई मशीन।

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: machine.
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:26 और आज है जी 9 सितंबर 2026। कैसे नए एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। वैसे मेरी रूटीन है, मैं ऑफ एयर कॉल्स बड़ी कम लेता हूँ ना, बहुत ही कम होता है। इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग तो मैंने 5 से 6 दफ़ा ली होगी अभी तक, और आज भी मैंने एक ऑफ एयर कॉल ली। बार बार फ़ोन बज रहा था और मुझे यकीन करें बड़ा अच्छा लगा, आगे से मेरी बात हुई। हयाम नाम है एंड हयाम हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। मैंने कहा मौजूद तो जो भी हो, बहरहाल वो तो बातें आपके लिए हैं, तो हयाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हयाम।
1: वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हयाम?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ आप कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा सा फीलिंग ओके फाइन।
1: मतलब 100 में से 50% बेहतर हुई है तबीयत कुछ।
0: अच्छा चल।
1: सर पता है आपको, एक तो मतलब सितंबर मेरा बर्थडे मंथ है, ठीक है ना, और हर साल मतलब बर्थडे मंथ मुझे गिफ्ट मिलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ इस बार जो मेरी आपसे बात हो रही है ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट तरीन गिफ्ट है।
0: मैं लिटरली खुद को इस काबिल नहीं समझता जितनी आपने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। थैंक यू वेरी मच
1: सर। आपको पता नहीं है सर, 4 साल मैंने लगातार आपको मतलब खामोशी से सुना है मैंने, ठीक है ना, और आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया। मतलब आज मेरी जिद थी, मैंने कहा आज मतलब जो कुछ भी हो, ठीक है, मैंने आपसे बात करनी करनी है, ठीक है, चाहे मुझे लाइव स्ट्रीमिंग रोकनी पड़े, मैं मुसलसल आपको कॉल ट्राई करूंगा, मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन मैंने आपसे बात आज करनी ही करनी है। आज एक दिल ने जिद पकड़ ली थी।
0: बड़ी मेहरबानी है, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते। और आप करते क्या हो?
1: सर मैं बेसिकली मद्रास से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में BSIT कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर की है, अभी थर्ड स्टार्ट है मेरा।
0: दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कौन सा सब्जेक्ट आजकल चल रहा है फिर फेवरेट आपका?
1: सर कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, फिर फिजिक्स हमने कंपल्सरी रखी हुई है, एक तो फिजिक्स मुझे अच्छी लगती थी, मैट्रिक भी फिजिक्स में किया, ठीक है, फिर आगे इंटर भी है फिजिक्स, तो मतलब अगर पर्सनली मुझे पूछे तो 2 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट है, कंप्यूटर एंड फिजिक्स बस।
0: अच्छा, मैंने भी BSIT किया हुआ ना।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैथ से इतना दूर भागते हैं, ठीक है, जितना हमारी जिंदगी में ना हम परेशानी से दूर भागते हैं।
0: लेकिन मैथ्स के बगैर कंप्यूटिंग पूरी नहीं होती।
1: लेकिन सर वही बात है, जिस तरह लाइफ में ना परेशानियों का आना जाना आपको लाइफ से मिलाता है, मैं कहता हूँ इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त भी अलग ही ब्लेसिंग होती है, क्योंकि बुरे वक्त में आपको पता चल जाता है कि कौन आपका पराया कौन सक है। और मैं हमेशा इस बात पे अपने दोस्तों में जब बैठते हैं, ठीक, कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, तो एक दो सिंपल से हमारे रूल है, 4 दोस्त हम जब बैठते हैं तो हम कहते हैं कि मोबाइल फोन टोटली साइलेंट हो, हमने अपनी बातें करनी है, हमने कोई किसी की दूसरे की बात नहीं करनी, अपनी कन्वर्सेशन करेंगे हम।
0: क्या बात उसमें
1: मोबाइल बेशक बचता रहे, हमने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, चाहे वो घंटा कन्वर्सेशन हो 2 घंटे हो, मोबाइल को हमने हाथ लगाना ही नहीं है। और लास्ट टाइम ना भी कल ही हम बात कर रहे थे कि खुशी के बारे में बात करके, खुशी एक्चुअल है क्या, सब ने अपना नैरेटिव पेश किया कि खुशी पैसों से है, खुशी ये है वो है व्हाटएवर सब कुछ किया, ठीक है, तो हम ये रेस्टोरेंट पे बैठे थे, ठीक है, तो हमारी टेबल की बैक साइड पे एक फैमिली थी, वहां से एक अंकल आए, ठीक है, हमारे पास उन्होंने काम किया, कहते हैं बेटा आप मतलब आप बुरा ना माने तो आपके साथ बैठ जाऊँ, मैंने कहा जी जरूर, तो मेरे साथ बैठे, कहते हैं बेटा मैं आपको मुसलसल आधे घंटे से सुन रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप खुशी के बारे में सब कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो सब ने अपना नैरेटिव अच्छा पेश किया खुशी के बारे में, नो डाउट कि मतलब खुशी क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ मेरा नैरेटिव भी सुन लेंगे आप, मैंने कहा क्यों नहीं अंकल आप बोलें क्या नैरेटिव आपका, तो उन्होंने बोला कि खुशी एक्चुअल ये है कि जो इस वक्त में हम गुजर रहे हैं, जो हमारा वक्त चल रहा है, इसको बेहतरीन बनाना ही खुशी है बस।
0: ओके ओके,
1: जो गुजर गया जो आने वाला उसकी टेंशन याद नहीं रखना, जो गुजर है वक्त उसको हमने बेहतर से बनाना वही हमारी खुशी है। फिर हमने अंकल हमारे साथ बैठे, ठीक है, हमने अंकल कुछ चाय पिलाई, ठीक है, साथ हैं, वो कहना कि मुझे अच्छा लगे कि आजकल की यूथ नस्ल मतलब मोबाइल से हट के मतलब ये अलग से टॉपिक से बात कर रहे हैं, तो हमने उन्हें बताया कि हमने कहा अंकल हम यही करते हैं, ठीक है, हमारी कन्वर्सेशन में बस यही स्टार्ट होता है, और सम टाइम यकीन करें हम कन्वर्सेशन में आपको इतना डिस्कस करते हैं, मतलब मैं ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना, और मेरी हर बात आप से शुरू होती है और आप पे खत्म होती है।
0: अच्छा, खुशी, क्या खूबसूरत आपने बात की है, और उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा कि गुजरते हुए लम्हात में ही वो है जो है, बाकी उसके अलावा तो मतलब तलाश कर रहे हैं ना हम, या बना रहे हैं और सोच रहे हैं।
1: और, और मेरा पर्सनली मानना ये है ना कि मतलब मेरी जिंदगी का एक रूल है, ठीक है ना, मैंने अपने माइंडसेट में वो रूल सेट माइंडसेट किया हुआ है कि इंसान को ना मतलब कि आपके साथ आपकी जिंदगी में चलने वाला, ठीक है, हम सफर तो हो सकता, हम ख्याल तो हो सकता लेकिन हम सफर नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ आपके दोस्ती रिलेशनशिप में है उसके साथ आपकी वाइफ मैच हो सकती है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग मैच हो सकती है, लेकिन आप उसे पार्टनर बना लो ये नहीं हो सकता। हर चीज हर रिश्ते की एक बाउंड्रीज होती है, ठीक है ना, और खुद को हमेशा अहमियत दें। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमसे प्यार नहीं करेगा।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
1: और अभी भी ना जिनको ना मतलब अभी यूनिवर्सिटी आप हुई थी, ढाई बजे आप हुई थी, ठीक है, तो मतलब इतना सुबह से मतलब एक तो आपको पता है यूनिवर्सिटी रूटीन इतनी मतलब टफ होती है, ठीक है, वापस आके, ठीक है, तो मतलब आके मैं मतलब फ्रेश वगैरह हूँ, ठीक है, हो गया था फिर खाना शाना। आपको पता है हॉस्टल लाइफ में जब चार लड़के साथ होते हैं तो वो खुद ही ड्यूटी डिवाइड कर लेते हैं, कुछ लॉन्ड्री में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारी मेरे हिस्से में कुकिंग आई है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब मैं आठ बहनों का इकलौता भाई हूँ।
0: अच्छा,
1: तो ये तो बस ठीक है, मेरी इसमें कुकिंग आई और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह पाक ने ऐसा जायका दिया है मेरे हाथ में कि मतलब के जो भी खाते, ठीक है ना, मतलब तारीफ करते हैं। उन्होंने मुझे कहा हयाम तुम और कुछ भी ना करो, डस्टिंग हम कर लेंगे, ठीक है, लॉन्ड्री हम कर लेंगे, ठीक है ना, तुमने बस हमें पका के देना है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं पका दूंगा। और ये कहते हैं ना कि मतलब कि मैं वो कहते हैं कि मतलब इंसान का एक होता है कि फायदा होता है, तो मैंने अपनी इसी फायदे से बहुत फायदा उठाया उनका, ठीक है ना। मैं उन्होंने कहता हूँ ठीक है मैं आपको चिकन मंचूरियन बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, आप मेरा काम करो। वो फिर बेचारे आके मजबूरी होती है, उनको मेरा काम करना पड़ता है और मुझे उनको खिलाना पड़ता है।
0: क्या बात है, फिर इसका मतलब है इस्लामाबाद अगर चक्कर लगे तो फिर आपसे रापता किया जाए कुछ खाने के लिए।
1: जरूर सर। और लास्ट टाइम आपके शो में वो जीशान भाई भी आए थे, ठीक है ना, पर्सनली जीशान भाई को मैंने बहुत संतुष्टि का उन्होंने इस्लामाबाद तो हमें कहते थे हमारी इस्लामाबाद से। और जो लास्ट टाइम आपकी मिसी जीशान भाई के साथ मैच हुई थी ना, यकीन करें मैं कहता हूँ वो सारे तमाम शो आपकी जिसमें चार साल भी मैंने सुने हैं वो एक तरफ और वो एक शो एक तरफ था।
0: थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: और डॉक्टर मुझे यकीन करें मतलब बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मैं बहुत सारी बातें जो मुझे आपसे करनी है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने अगर मुझे कभी मतलब दोबारा अगेन ऐसा सीन इत्तेफाक हुआ, ठीक है, तो बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है। आज मैं दिल की जिद पकड़ ली थी कि मैंने आपसे बात करनी है, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी, ठीक है, मैंने बिल्कुल नहीं सुन रहा था, मैंने सुनूंगा मैं आपको।
0: थैंक यू वेरी मच, मैंने भी इसीलिए तसल्ली से ना टॉपिक अनाउंस किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा मैं आपसे बात करता हूँ।
1: सर बस आई एम टोटली कंफ्यूज, आई एम सो पर्सन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं जो मुझसे अल्फाज अदा हो रहे हैं, ठीक है, वो सही वे में जा रहे हैं, रॉन्ग वे में जा रहे हैं, बस आंखें मेरी, ठीक है ना।
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। आई एम फीलिंग रियली गुड एंड ऑनर्ड, मुझे अच्छा लगता है जब आप हैं, आप जैसे सुनने वाले मुझे जब फ़ोन करते हैं एंड दे टेल मी के इतने अरसे से सुन रहे हैं और पहली मरतबा जब कॉल करते हैं, और मेरे लिए एजाज की बात होती है। थैंक यू वेरी मच।
1: आपके दो लाइन हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, अरे कोई तुच्छा हो तो नाम भी तुच्छा रखे।
0: ओके, क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: और तमाम सुनने वालों को ढेरों सलाम, और तमाम सुनने वालों के नाम बस एक शॉर्ट सा पैगाम यही है कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम करें कि बजाय आप किसी को फॉलो करो लोग आपको अप्रोच करें,
0: लोग आपको अप्रोच करें। क्या बात है, क्या बात है, छागे आप, छागे जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला।
1: चलिए सर, अब सर आप अपनी आवाज मीटिंग है, एक पोएट्री मुझे डेडिकेट करना तो बनता ही, आज मैंने चार साल बाद खामोशी तोड़ी है,
0: बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता।
1: और आपने कोई, और मैं उन लिस्ट में नहीं उठेगा जो जाते जाते ट्रैक की फरमाइश करूंगा, मुझे ट्रैक नहीं सुनना, ठीक है, ट्रैक हम सुनते हैं, मुझे आपको सुनना है, मुझे आपकी अपनी आवाज में पोएट्री चाहिए, ठीक है ना।
0: डन डन जी, डन डन डन डन डन, ऐसे करते हैं, ठीक है। लव यू मोर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बल्कि आप ऐसा करो ना, आप यहीं पे मेरे साथ ही रुको ना लाइन पे, मैं आपके लिए कुछ यहीं पे पढ़ता हूँ। और क्या यार, वो जज्बों की तिजारत थी ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी ये दिल कुछ और समझा था, मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था।
1: वल्ला
0: वो मेरे पास बैठा देर तक, गजलें मेरी सुनता, उसे खुद से मोहब्बत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पे सर रख के कहीं पे खो गया था वो, ये एक वक्ती अनायत थी, ये दिल कुछ और समझा था।
1: बहुत
0: ये दिल कुछ और समझा था, ऐसे ही होता है। थैंक यू वेरी मच।
1: अच्छा सर, ना दिल और दिमाग की जंग हमेशा जारी रहती है, ठीक है, जब तक आपकी सांस आखिरी सांस तक आप रहते हो, दिल और दिमाग में अगर जंग जारी रहती है।
0: ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच हयाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और सर शुक्रिया आपको मुझे अदा करने के लिए कि आपने कॉल पिक कर लिए, ठीक है, वरना मैं मतलब आज दिल की स्थिति और उम्मीद है, उम्मीद वास्तव यही है कि आप इंशाल्लाह ठीक है ना, अभी अपनी खामोशी मैंने तोड़ दी है, ठीक है ना, अब इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और कल भी इंशाल्लाह बात होगी।
0: इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।
1: आज करना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, हयाम थे हमारे साथ इस्लामाबाद से, 4 साल से कहते हैं मुझे सुन रहे हैं और पहली मरतबा इन्होंने कॉल की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच हयाम। और इस तरह के और भी जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारी मोहब्बत है जी, थैंक यू, आई एम ऑलवेज ऑनर्ड। और मेरी लाइफ में जो मैसेज आए हैं, जमीयत की शहजादी ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने पसंद किया शो को, फिजा राजपूत हैं, सलाम करती हैं, आई एम फाइन, आप बताएं। जासर जरगार हैं, हमें सुनते हैं कश्मीर से, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जासर, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं। और सागर खत्री साहब हैं, हमारे हमसाया मुल्क से हमें सुनते हैं, और पाजी क्या हाल हैं, और आप ठीक हैं पाजी, वहाँ पे मौसम कैसा है, सब ठीक ठाक जी पाजी, मेरी तरफ तो सब ठीक है, आप बताएं, आपकी तरफ सब ठीक है, सब खैर खैरियत है, और क्या बात है, मेरे लिए चाय लेके आए हैं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आई वुड लव के आप और मैं बैठ के चाय पीते, तो क्या ही बात थी, मज़ा आ जाता, चाहती यकीन करें। अहमद भट्ट आए हैं, सलाम किया उस्ताद मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। अहमद तुम किधर गायब हो भाई, तुमने शक्ल ही नहीं दिखाई बड़ी देर से। और थैंक यू वेरी मच एवरी वन। आयशा कहती हैं प्लीज़ प्ले खसारा, खसारा होता है, इसको प्ले थोड़ी करना होता है, इसे जान छुड़ाई जाए तो बेहतर होता है, हो गया जान छुड़ाए। अलीम है मीरपुर से, नाइस शो, 4471 के मैसेजेस शामिल किए। और जिन तक मेरी आवाज़ पहुंचती है पहली मरतबा, अगर वो सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, 0421100101, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, 0422110101। एंड अगर आपकी कॉल नहीं मिलती, आप मैसेज करके मुझे बताएं दैट यू आर लिसनिंग एंड यू आर विद मी। आपने SMS करना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना मैसेज और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। इसके अलावा मेरी पोस्ट है FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, एंड यस मेरी लाइव स्ट्रीम ऑन है जी, सर्च करें RJ DOX, वहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगी। गुलाब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। आयशा सुल्तान आई है, अस्सलाम वालेकुम मेंटोर सर, कैसे हैं, आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक हम जो उठाए वो थिंकिंग के, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई शख्स आता है किसी भी तरह से, एज ए फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड नहीं आ रहा, लाइफ पार्टनर की शक्ल में आ रहा है, आपका बंदा बंदी है, व्हाटएवर जो भी है, क्या उसको चेंज करना चाहिए, हमें उसको बदलना चाहिए, या जो है जैसे है कि बुनियाद पे उसके साथ चलना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि ये वो सवाल है जो उम्र के हर हिस्से में कहीं ना कहीं आपको इससे टकराव होता है। जिस तरह अक्सर ये होता है कि आप कोशिश करते हैं अपने दोस्त अहबाब को मैनिपुलेट करते हैं, समटाइम मैनिपुलेट ना करें, इमोशनल करते हैं, जो रिश्ते में आपके साथ होता है उसे आप चाहते हैं आप अपने मुताबिक उसको बदल लें, आप बदलने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि मैं जो कहता हूं इस तरह हो जाए टोटली, और माँ बाप भी जो है ना ये जुल्म अक्सर और बेशतर करते हैं अपने बच्चों पे, वो जो कहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं ना बच्चा वही करे वही बने, मैं अगर सोचूं कि डॉक्टर बने तो डॉक्टर बने, मैं कहूं इंजीनियर बने तो इंजीनियर बने, मैं कहूं पायलट बने तो पायलट बने, और इतना ज़्यादा फिर प्रेशर डालते हैं वो और ही किस्म का पायलट बन जाता है, तो ये ठीक नहीं है। सागर खत्री कह रहे हैं पाजी बाल ठीक लग रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, आपने पकड़ लिया बात को। आपने देख लिया मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी चेक कर रहा था इफ आई एम लुकिंग गुड बिकॉज आई एम ग्रोइंग माय हेयर। मैं कहा पाजी जरा बाल बदा लिए, थोड़ा जो चेंज कर दे रहना चाहिए ना जी, चेंज बहुत ज़रूरी है। एंड सैयद मोहम्मद अली ज़िया है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्स भाई, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर डूइंग वेल, यस आई एम फाइन, नाइस टाइट शर्ट, यार शर्ट टाइट हो गई है, पहन लिया मैंने, माफ़ी दे दें, बदल लूँगा, अगली दफ़ा नहीं पहनता, कबल ना दें। सलाम किया, आई एम फाइन, सलाम किया। जिशान सुन रहे हैं, जिशान जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जासिर जरगार इंडियन साइड कश्मीर श्रीनगर से, सलाम वालेकुम सलाम सर। ओके, मौजूए गुफ्तगू नहीं है ये, मेरा सवाल है। मैं अक्सर ये दोहराता हूँ, मैं आपसे जो बात करता हूँ वो एक सवाल होता है, मेरे अंदर चल रहा होता है, मतलब मैं को हाजी तो नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग। मैं सोच रहा होता क्या मुझे किसी शख्स को अपने लिए बदल लेना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, क्या किसी की लाइफ में मुझे तब्दीली पैदा करनी चाहिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या नहीं, या किसी के लिए मुझे अपना आप बदलना चाहिए या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। मैं सोच रहा होता क्या मुझे किसी शख्स को अपने लिए बदल लेना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, क्या किसी की लाइफ में मुझे तब्दीली पैदा करनी चाहिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या नहीं, या किसी के

0: पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को हमने बचते देखा कम। तारीकी के हाथ पे बैत करने वालों का सूरज की बस एक किरण से घुट जाता है दम। आंखों में ये पलने वाले ख्वाब न बुझने पाए, दिल के चांद चिराग की देखो रोशनी ना हो मध्यम। हंस पड़ता है बहुत ज्यादा गम में भी इंसान, बहुत खुशी से भी तो आंखें हो जाती हैं नम। क्या बात है, क्या बात है। ओके, एआर एलीट एंटरप्राइजेस, सलाम वालेकुम अस्सलाम। आई एम मेहरमा। ओके, व्हाट अ डिफरेंट नेम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। ब्लैक में नहीं है इसलिए एनर्जी लो है आज। एनर्जी मेरी लो है? अच्छा, नहीं, एनर्जी बिल्कुल लो नहीं आज। मौजू कुछ ऐसा है, मौजू तो नहीं, खैर सवाल ऐसा है कि किसी के लिए ख़ुद को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, किसी को अपने लिए बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। एनर्जी लो नहीं है, मतलब बुध वाले दिन मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा थॉटफुल रहे ना हम, किसी न किसी सवाल को जो मेरे अंदर उठता है वो आपके सामने रखता रहूं और उसके मुताबिक चले, ताकि थोड़ी थोड़ी सी ज़रा चेंज आए ना। और थर्सडे वाले दिन मेरा होता है ज़रा और एनर्जी के साथ प्रोग्राम करना, थोड़ा सा लाइवली। फिदा राजपूत, चले लाइव स्ट्रीम के बाद ही मुझे सेंड कर। नहीं, मतलब इन्हें भी टेर टेर नहीं ना करी दे यार, इट्स रियली हार्ड यू नो समटाइम्स। मैं ज़रा साथ पोस्ट का मैसेज शामिल करता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से सलाम किया। ओके फाइन, मरीना बिलाल ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। एम रजा चौधरी साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। नज़ीर घोसो सोबतपुर से, क्या बात है जी, मुंडा है जी, हमारा फयाज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। रेड लाइन ग्राफिक्स सर, आई हैव ऑलवेज बिन वेटिंग फॉर दैट डे टू लिसन यू काइंड एंड थॉटफुल टॉक, बिलीव मी इट्स वर्थ लिसनिंग। सारा फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच सारा। क्या ही कहूँ, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। जफर मिर्जा साहब हैं, इस्लाम कवेत से सुन रहे हैं। जफर साहब कैसे हैं, कवेत में सुना है, कैसे मामला चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? और अल्हम्दुलिल्लाह मलखेल हैं जी, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज। एंड ओके, रेहाना खान बखर से बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज जी, सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर योर नाइट थेरेपी शो, थैंक यू वेरी मच। रेड नाइन, क्या नाम था आपका, लेट मी, सारा, थैंक यू वेरी मच। उज़्मा जाज हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट आर द डॉग्स, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन, थैंक यू वेरी मच, सेम गोज फॉर यू, सो मेनी विशेस एंड द प्रेयर्स, थैंक यू वेरी मच। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं या अहम हैं, अगर आप ना कदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। एतगाल ठीक है। सही कह रही हैं आप, कहाँ से सीखा आपने ये, वैसे बताएं मुझे। सो हम बात करें बदलने के हवाले से, यू नो, बदलना क्यों पड़ता है आपको, अगर हम बात करें, या किसी को आप बदलना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? समटाइम ये थॉट मेरे अंदर भी आता है कि यार मुझे किसी शख्स को अपने मुताबिक बना लेना चाहिए, और यू फोर्स सो मैनी थिंग्स ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन, वो कोई भी हो, वो आपका दोस्त है, बहन भाई है, आपसे छोटा है, या आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बंदा या बंदी है, आप उसे बदलना चाहते हैं क्योंकि आपने ना माइंड में कुछ चीजें सेट की होती हैं। और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो हम बदलते हैं ना सिलेक्ट कर लेने के बाद, बदलने की ख्वाहिश का इजहार जो करते हैं, इसमें मुझे अपने अंदर से एक चीज की समझ आती है कि शायद मैंने जिसको चुना या जिसको अपने ज़िंदगी में पाया, उसकी वज़ाकता देखने के बाद, अगर मैंने चॉइस की खुद से, अगर मैंने उसकी सिलेक्शन की, उसको अपने लिए इख्तियार किया खुद से और चुन लिया उसको मैंने, क्या गाना याद आ गया मैडम नूर जहाँ का, चुन लिया मैंने तुम्हें, रहने दिया सारा जहाँ। तो इसमें फिर यही है, देर इज़ वेरी वेरी क्लियर थाट इन माई माइंड कि फिर मैंने उसे उसकी वदाकता देखकर चुना। और जो कहा जाता है ना कि मैंने उसकी रूह को देखा, मैंने उसके दिल को देखा, और ये देखा और वो देखा, इतना कुछ कह देने के बाद फिर वक्त आता है कि बंदा कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किधर फंस गया था या फंस गई थी, ऐ की होया, मतलब हम रिलेशनशिप में थे ही क्यों, उसने मुझे ऐसे कर दिया, मैंने तो बड़ा अरसा बर्दाश्त किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, या ऐसे हुआ वैसे हुआ नहीं हुआ, फिर भी ये तुम में कमी है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने शक्ल सूरत देखी और उस वक्त वो एक ख़ास सिचुएशन या कैफियत थी जिसमें वो शख्स मुझे पसंद आया, और उसका वो खाका, वो नक्शा मेरे जहन में कहीं रहा उसके चले जाने के बाद भी, और मैं उसे सोचता रहा या उसके बारे में बहुत सारे ख्याल आता है, उसकी कोई बात, कोई किस्सा, कुछ भी। फिर जब मैंने उसको इख्तियार कर लिया, उससे मेरा ताल्लुक और रिश्ता बन गया, तो फिर बाद में मैंने उसको जानना शुरू किया। जानने के बाद मुझे एहसास हुआ नहीं नहीं इसमें तो ये भी कमी है, इसमें वो भी कमी है, और अब मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, कहीं ना कहीं शायद कि मेरी अना का मसला तो नहीं बन गया, या फिर मैं चाहता हूं कि वो मेरे मुताबिक वैसा बन जाए जैसा मैं चाहता हूं। तो फिर ये जो सारी बातें, रूहों का कनेक्शन, मैंने दिल को देखा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, ये सारी बातें मुझे महज अल्फाजी लगना शुरू हो जाती है, एक्चुअली ऐसे नहीं होता। इसका सेकंड थॉट फिर ये आता है कि जिसको आप एक्चुअली पसंद करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कहने की कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम ये कपड़े पहनो और ये ना पहनो, ऐसे करो और ऐसे ना करो। वो आपका दोस्त है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बंदा है, बंदी है, कोई भी है, आपको कहना नहीं पड़ता, फिर उसकी हालत आपको अच्छी लगती है। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो जुमले जो मेरे उस्ताद मोहतरम के हैं, मुझे याद आते हैं, वन लाइनर थे वो, हमें वो नकल किया करते थे अपने मुर्शिद से। उनके मुर्शिद कहा करते थे कि इश्क की मेराज ये है कि आशिक से माशूक हो जाना। महज तो ये प्यार मोहब्बत और इश्क का किस्सा है, उस पर कहा गया जुमला, लेकिन इसमें और बहुत सारी तौजीहात, बहुत सारी तशरीहात और तफसीरें सामने नज़र आती हैं कि हर वो ताल्लुक, हर वो रिश्ता जिसमें आप एक्चुअली उस बंदे को चाहें जो जैसा है वैसी हालत में, तो आप उसमें तब्दीली नहीं चाहते, आप उसके लिए बदलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज मोर साइकोलॉजिकल एंड यू नो साइकोलॉजी ऑफ लव कह लें और वॉट एवर यू कॉल इट, और साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। आपका क्या ओपिनियन है, ये तो मेरा खैर ख्याल है। तारिक मिन्हास साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। गोना टेक द कॉल 0422111 0102110001 आप इस पर कॉल कर सकते हैं और SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, आपने SMS टाइप करना है, 101 लिखना है पहले, फिर अपना पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पे। और मेरा बहुत ज़्यादा सलाम अकीदत है अपने तमाम तर फौजी भाइयों के लिए, जो भी जहाँ पर इस वक्त वतन अजीज़ की हिफाजत पर मामूर है, अपनी ड्यूटी अंजाम देता है। यकीन करें आपकी वजह से हमारा सर फख्र से बुलंद रहता है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और खुदा करे कि इसी तरह से आप सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी गुजारें, अपने घर पहुंचे, आपके घर वालों की आंखें आपकी मौजूदगी से ठंडी रहे। कासिम कहते हैं, मुझे बताएं जया अंजुम की अब कैसी तबीयत है, वो कैसे हैं, मौला बीमार करबला के सदके जल्दी उन्हें ठीक करे, आमीन, ही इज फाइन नाउ, बस आप दुआ करते रहें उनके लिए। सच अ लवली फ्रेंड ऑफ माइंड, सच अ लवली आर्जे, और बहुत अच्छा इंसान है, दुआ करें बस। आबिद अली मर्दान से सलाम, वालेकुम अस्सलाम डॉक साहेब, क्या बात है, और बिल्कुल ठीक है। आपने लिखा कैपिटल है इस्लामाबाद और लाहौर इज बिग सिटी ऑफ पंजाब, और आगे फिर आपने मशवरे दिए, यार आपका दिमाग बड़ा चलता है वैसे, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज सजेशंस। सलमान अली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और सलाम डॉक्टर, कैसे हैं आप, वालेकुम अस्सलाम, मैं सना हूँ पिशावर से, कैसी हैं सना मड़ा, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो तुम। और कहती हैं खामोश लिसनर हूँ, फर्स्ट टाइम मैसेज किया, ये मेरा बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए, लव यू सर, थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया। और आपने पहली मरतबा पैगाम भेजा मुझे, आई एम सो हैप्पी और थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। अगला पैगाम है जी, SMS है, अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। चंदा रे चंदा, अच्छा हाफिज बहावल नगर से, थैंक यू वेरी मच जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ। बशीर अवान है, मानसेरा से सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच जी। मेहर फातिमा सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैंने जल सॉन्ग सुन लिया था आपने, वो तो प्ले कर दे, आपको डेडिकेट किया था मैंने, वो तो कर दिया मैंने, प्ले किया तो था मैंने, आपने सुना नहीं था। आर्मी पर्सन है अब्दुल कयूम सफियान साहब, अकील मुल्तान से और खुशाब से नूर जहां का कोई गाना लगाते हैं, जरूर लगाएंगे। और सलाम किया जी, सलाम अलैकुम, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। वालेकुम अस्सलाम, माई नाम नहीं बुरा लिखा, चले ठीक है, पैगाम तो आया। मैं फिर से सना आई हूँ, ओके। वक्त तजुर्बा तो देता है पर मासूमियत छीन लेता है, ये तो है, मासूमियत आती छिनती तजर्बे से है और मासूमियत ही तजर्बे का बाइस बनती है। अगर आप चलाक शियार हो ना तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती तजर्बों की। निदा फ्रॉम लाहौर, आई लव योर वॉइस निदा, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव योर मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर जमान कलंदरी, बेशक कुछ लोग उम्र गुजारने के बाद भी बदलना चाहते, क्या फिर बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, उम्र के किसी भी हिस्से में आप बदल सकते हैं खुद को। और तायरा मसूद कहती है, मेरे भाई की कुछ देर पहले बेटी पैदा हुई है, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके भाई के लिए, उनकी बेटी के लिए जी। बेस्ट विशेस, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे, नसीब अच्छा करे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? कैसे हैं शाह फैसल साहब, आप खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या पोजीशन है?
0: मेरी पोजीशन, मेरी बात पोजीशन गुजारा ही है जी।
1: अकेले प्रोग्राम क्या करें, हमें भी अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा ठीक है सर, ओके सर, अकेले कर लिए।
1: अकेले जब आप प्रोग्राम करते तो मोहब्बत झलकती है आपकी आवाज।
0: अच्छा फिर मैं और बहुत सारी अंदर की बातें निकालना शुरू कर देता हूँ ना अपनी, इसलिए।
1: अभी आपने जो दायरा खींचा ना,
0: हाँ जी,
1: किसी भी हाल में उस बंदे को कबूल करे, भले वो जो भी हो,
0: ठीक ठाक, बिल्कुल आप सही कह रहे।
1: तो अंधी मोहब्बत हो गई या लाजवाब मोहब्बत हो गई,
0: बिल्कुल सही।
1: बाकी पाकिस्तान में तो कम्प्रोमाइज ही चल रहा है,
0: पाकिस्तान में कम्प्रोमाइज चल रहा है, मोहब्बत पे या रिश्तों पे?
1: रिश्तों पे या अपने सोच के मुताबिक, तो आपको ना दोस्त मिलता है ना जीवन साथी मिलता है।
0: बिल्कुल ठीक है जी,
1: बड़े किस्मत से मिलेगा ऐसा।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
1: मगर अपने सोच के मुताबिक मिले तो खुश नसीब बंदा होता है,
0: खुश नसीब बंदा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर मिल जाए, अगर मिल जाए तो क्या ये मुमकिन है आप उसकी सोच के मुताबिक हैं?
1: ये भी मुमकिन है,
0: मतलब अगला सवाल ये पैदा होता है ना, मैं जो सोचता हूँ कि मैं ढूंढता हूँ ना, बड़ी मेहनत करता हूँ कि मुझे मेरी सोच का, मेरा आइडियल जो मैं सोचता हूँ उस तरह का कोई बंदा या बंदी मिल जाए ना, कोई शख्स मिल जाए जिसकी तलाश में हूँ। मैंने वक्त गुजारा, एक लंबा अरसा गुजारने के बाद मुझे एक शख्स मिला जो मेरी सोच के मुताबिक, अब क्या मैं उसकी सोच के मुताबिक हूँ? क्योंकि मुझे लगता है इस जगह पर हम सारे खुदगर्ज़ होते हैं, हम चाहते हैं हमें तो हमारे मुताबिक मिले लेकिन हम किसी के मुताबिक ना हो।
1: हाँ, हम किसी के सोच के मुताबिक ना चलें,
0: है ना?
1: हाँ बिल्कुल, ये तो है,
0: कुछ इस तरह के मामलात भी होते हैं,
1: इसलिए तो हम सारे डिप्रेशन के मरीज बन गए। ज्यादातर कंप्रोमाइज ही चल रहे।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके, बड़े दिनों के बाद कॉल आई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। वक्त हो चुका है 11:17 और अहमद बाट यहाँ पे नाजिल हो चुके हैं, क्या बात है यार, बड़ी गल है भाई। अभी करते हैं तुम्हारा इलाज, तुम्हें करते हैं ऑन एयर। आबिद अली मर्दान से डॉग साहब पश्तो सॉन्ग प्ले करें ना। अच्छा ठीक है सर। और बड़ा सारा सीएम साहिबा को सलाम पेश कीजिएगा जी। बिल्कुल ठीक है, ज़रूर। मेरी स्ट्रीम ब्लॉक हो गई थी, मैंने पता नहीं किस वजह से बाहर हो गई ना जी, मैं दोबारा स्टार्ट किए। अच्छा हाजरा हैं जया, अंजुम की तबीयत ख़राब थी, अब कैसे हैं? बहुत सारी दुआएं उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ परफेक्टली फाइन नाउ एंड ही इज़ ग्रोइंग बेटर डे बाई डे। आप बस दुआ करें उनके लिए ना, और अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। निदा आपका मैसेज पढ़ा, आपने कहा आई लव योर वॉइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नज़र गुजर है मुजफ्फरगढ़ से, इस्लाम की वालेकुम। सलाम सर कैसे हैं आप? गाना चला दें दिल साडा तोड़े आई वे हुन टुकड़े तोड़ के क्यों रोना है। अच्छा ठीक है जी। आई एम बिलाल लियाजी फ्रॉम जेहलम कैंट। रोज रोज का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। ओके सर डन करें। अहमद मलिक हाय, हेलो सर कैसे हैं, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। माइंड थेरेपिस्ट ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। इदरीस चित्राली आए हैं, इस्लाम सर, वालेकुम अस्सलाम। नाउ आई एम गोना प्ले अनदर ट्रैक, मुस्तफा जाहिद का एक और गाना प्ले करते हैं। अब मैंने लगता है मेरी स्ट्रीम फिर ब्लॉक हो जानी है, बट आई रियली वॉन्टेड टू प्ले दिस ट्रैक, जरूरत। अरे यार बहुत मज़ेदार गाना है ये भी।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:27 और आज है जी 9 सितंबर 2026 का सन, और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और हमारे जो अभी नए नए आरजेस अंडर ट्रेनिंग इस वक्त चल रहे हैं, उनमें एक अहमद भट्ट भी हैं, और आज उनको आप सुनेंगे बड़ा तसल्ली से 2 घंटे आरजे रहमान अनवर के साथ। अभी वो वक्त से पहले तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे बैठे हैं। बड़ा हसमुख सा आरजे है हमारा, बड़ा अच्छा सा आरजे, सोना सा मुंडा है। क्या हाल है अहमद?
1: अल्हम्दुलिल्लाह फिट सर, आप बताएं।
0: सलाम करते हैं पहले, सलाम आरजे।
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: अस्सलाम वालेकुम बोलें
1: दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ वालेकुम अस्सलाम। कोई नहीं, खैर है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता बंदा। सुनाए क्या चल रहा है? ऑल वेल
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। शुक्र अल्लाह
0: का। आपने सवाल सुना होगा
1: सर, मैं उस टाइम रास्ते में था।
0: अभी यहाँ पे बैठ के भी मैंने दोहराया था, आपने क्यों नहीं सुना? किसके साथ मसरूफ थे आप इतने जो आपने नहीं सुना?
1: सर एक्साइटेड था आपके शो के लिए थोड़ा।
0: मेरा सवाल ये है कि किसी के लिए खुद को बदलना चाहिए या किसी को अपने लिए बदलना चाहिए?
1: नहीं सर,
0: तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है। इस्लाम गुज्जर, इसका ओपिनियन क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन?
1: सर ओपिनियन ये है कि आप जिस चीज़ को देखते हो ना, जो जैसे है, अगर आपको वैसे पसंद आई है ना, तो तब्दीली के बाद वो चीज़ वैसी नहीं रहेगी और ना वो मज़ा रहेगा,
0: है ना। अरे ये ओपिनियन आपका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। मसलन क्या पर्सनैलिटी वाकई तब्दील हो भी सकती है या नहीं किसी की?
1: सर,
0: मतलब जिसे हम अक्सर कहते हैं कि फितरत को बदला नहीं जा सकता, आदतें बदली जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: नेचर क्या बदली जा सकती है? अगर आप मुझे कहें नहीं आप इस तरह से मत गुफ्तगू किया करें, आप अपने गुफ्तगू का अंदाज बदल लें, मैं कोशिश कर लूंगा। अगर इतना ही मैं बड़ा वड्डा ही आशिक होऊंगा ना, मैं कहूंगा हाँ हाँ हाँ मैं करता हूँ, होगा नहीं।
1: बिल्कुल
0: थॉटफुल है, एक क्वेश्चन है, सवाल है, आपका क्या ख्याल है? और किसी को क्या चेंज करना जो होता है वो क्यों जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता ये फिर कंट्रोलिंग किस्म के थॉट नहीं बन जाते कि आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये आपके मुताबिक वो चले हर तरह से जिस तरह आप चाहें।
1: सर मेरे ओपिनियन में कंट्रोलिंग कोई हल नहीं है किसी चीज़ का। जो चीज़ जैसे है आपके पास आई है, मेरी नज़र में वो बेस्ट उसी हालत में है।
0: और फिर एक और इसमें नुकता ये है कि जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, इसका मतलब है देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट।
1: बिल्कुल,
0: कि यार मैं 2 जमा 2 5 कहता हूँ, ये 2 जमा 2 4 क्यों कहता है, ये भी 2 जमा 2 5 कहे,
1: लेकिन सर सामने वाले,
0: तो आप ये क्यों नहीं करते कि 2 जमा 2 4 आप ही कहना शुरू कर दें? आप अगले से ही क्यों तकाजा करते हैं?
1: सर हम अगले को बदल सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनको पसंद आएंगे कि नहीं, ये भी एक जो है ना एक डिफरेंट चीज़ है।
0: ये क्वेश्चन मैं अभी आपसे सवाल पे सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप भी और सुनने वाले भी जो है उन पे मुख्तलिफ जाविये हैं इसके बारे में ना, आपके सामने रख रहा हूँ। किसी को बेहतर करना, बेटर करना और कंट्रोल करने में फर्क होता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आप अगर किसी पे बार बार किसी शय को मुसल्लत करें, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो हर चीज़ में हर चीज़ में, तो क्या ये कंट्रोल करना नहीं होगा? क्या ये बेहतरी करना है? ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है चीज? और फिर ये कहना मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें तब्दील करना चाहता हूँ।
1: सर ये तो नार्सिसिस्ट वाली लाइन है ना कि मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें बदलना चाहता हूँ।
0: हाँ नार्सिसिस्ट इसी तरह की बात करता है। और एक्सेप्ट करना हो ना, फर्ज करें अगर मैं हूं, मेरी एक आदत किसी को हर्ट कर दिया एक दफा दो दफा तीन दफा, तो मेरी भी और अगले की भी तो एक लिमिट ही है ना, एक हद ही है।
1: बिल्कुल,
0: तो जब एक चीज तकलीफ दे रही है तो उसको वाकई बदलने की जरूरत नहीं होती क्या?
1: सर वो तकलीफ तो दे रही है लेकिन
0: तो बदलने की जरूरत नहीं है, होती है ना?
1: होती तो है लेकिन
0: होती है। फिर यहाँ पे सवाल फिर वो बदलने वाला वैलिड हो जाता। मैं दोनों एंगल से बातें कर रहा हूँ ना कि अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या किसी को उसके तमाम तर फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता, खूबियों और खामियों के साथ?
1: सर करना चाहिए,
0: करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए किसी?
1: बिल्कुल,
0: और वो भी अगर फर्ज करें ऐसा बंदा हो या बंदी हो जिसमें मुसलसल तब्दीलियां आती रहें तो फिर बंदा फंस लग जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फिर तब भी आप फंस नहीं जाते।
1: सर हम चाहते हैं कि हम
0: ये सवाल है, बड़े फलसफाना से सवाल है
1: जी,
0: कि आप मुसलसल तब्दीली आई जा रही है किसी में ना कॉन्टिन्यूसली
1: जी,
0: फिर क्या करेंगे, क्या होगा। एक इंसान कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और आप कहते हैं तू जो है जैसा है मैंने तो जिस हालत में देखा था एक्सेप्ट किया।
1: बिल्कुल,
0: अगले दिन आधा वो होर दा होर ही होया। फिर आप कहते हैं अब मैं इसको भी एक्सेप्ट करूंगा। अच्छा पहले दिन जो देखा था वो और था।
1: हाँ,
0: वो तजर्बात चीजें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो फिर मतलब ये गुत्थी है, मुझे कभी कभी लगता है गुंजल है बड़े। कभी हम छोड़ते हैं किसी को, कोई हमें छोड़ देता है, हम किसी को छोड़ते हैं ना
1: जी,
0: तो कहते हैं यार नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो बदल गया था या नहीं नहीं वो मेरे से मैच नहीं करता था। इन द सेम टाइम ये क्यों नहीं सोचा जाता कि मैं उससे मैच नहीं करता था।
1: बिल्कुल, हम बाकी को तो बदलना चाहते हैं, अपने सामने वाले इंसान को, लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते,
0: खुद नहीं बदलना चाहते। अल्लाह आपका भला करे। हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम
2: वालेकुम।
0: आपकी आवाज बड़ी काम आ रही है जी। कौन है हमारे साथ? सिद्रा कुरैशी मंदरा से। कैसी है सिद्रा? मैं भी अच्छा हूँ। बताएं कुछ कहना चाहेंगी? कभी किसी के लिए खुद को बदला है? क्यों?
2: अब्बू के लिए।
0: अब्बू के लिए क्या वजह थी?
2: बस कुछ खामियां थी, वो चेंज की।
0: अच्छा, आपको पता था ये खामियां?
2: जी।
0: ओके, तो आपको अच्छा लगा खुद को बदलना?
2: बहुत ज्यादा।
0: Okay.
2: उनकी खुशी में,
0: उनकी खुशी में आपकी खुशी थी, फिर तो ये बड़ी खुशी की बात है। और कुछ कहना चाहेंगी?
2: और क्या कहूं?
0: जो दिल करता कह दे, कह दे खसमानू खाओ।
2: नहीं।
0: फिर बोले कुछ? एनीथिंग?
2: आपके अगर जो टॉपिक है मैं इसके रिलेटेड यही कहूँगी कि देखिए अगर आपका हम सफर अगर मुफलिस है तो आपको खुद बदलना चाहिए। उनको
0: अगर आपको लगता हो ना आपका हम सफर मुखलिस है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको करने की हाजत नहीं होती, खुद से खुद होने लगता है। आपका दिल करता कि उसको ये अच्छा लग रहा है मैं यही करूँ, उसको ये बुरा लग रहा है मैं ये ना करूँ, है ना
2: भैया? लेकिन ये कि हर रिश्ते को खुद देखना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे गलत हूँ ना, तो मैंने अपनों के लिए खुद को चेंज करना है।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
2: समझदार है ना, अल्लाह ने इंसान को कल दिया है तो।
0: बिल्कुल सही कह रही है सिद्रा।
2: हाँ, मैं जिस अपनी बात कर रही हूँ कि मैं गुस्से की बहुत तेज थी।
0: अच्छा जी।
2: मेरे बुआ मुझे कहते थे बेटा कि तू गुस्सा ना किया करना, तो मैं गुस्सा करना छोड़ दिया, मैं लोगों के साथ बहस करना छोड़ दी।
0: ओके।
2: और मतलब मुझे कहते थे कि मेरी बेटी कभी घर से ना निकले, घर से बाहर ना जाए, बस मेरी बेटी घर पे रहे।
0: ओके।
2: मैं साथ खुद को चेंज करना शुरू हो गई ना।
0: ओके।
2: ये होता है कि आप अपनों के लिए खुद को चेंज करना पड़ता है।
0: अपनों के लिए खुद को चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच हिद्रा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की।
2: बहुत शुक्रिया भैया,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जी जी, सुने जी
2: जी,
0: इश्तियाक चाचा को आपकी तरफ से सलाम,
2: और वो मेरे लिए दुआएं करें।
0: वो आपके लिए दुआएं करें।
2: उन्होंने सलाम किया था, मैंने उनको जवाब
0: नहीं
2: दिया था।
0: अच्छा, चले
2: अभी तक मुझे
0: चले चले। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज। बात तो वहीं पे आई ना, मोहब्बत
1: है ना, इंसान बदल जाता है,
0: बदल देती है आपको। अभी मैं मैसेज पढ़ता हूँ लाइव के भी। इस्लाम ने आपको सलाम दिया जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: चंदा माही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सर, कैसे हैं? होप आप ठीक होंगे। बिल्कुल सर जी, हम भी आपके चाहने वालों में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी नाइस शो, अच्छा सॉन्ग प्ले किया आपने, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, थैंक यू वेरी मच। मुश्ताक नियाजी मियाँ वाली से कहते हैं गुड शो। निदा अंसारी फ्रॉम लाहौर, आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगी, आई थिंक जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और जो मैंने बाद में इतनी सारी सिचुएशंस रखी हैं उनके बारे में आप क्या फरमाएंगी। अब्दुल्लूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से दिए डॉक्स, आदाब तस्लीम जी, कैसे हैं। नेचर नेवर चेंज, रिश्ता निभाने के लिए हमें दूसरे को दूसरे की खामियों और खूबियों के साथ कबूल करना पड़ता है, रिश्ता निभाने के लिए। अच्छा, निभाने का वर्ड जो है ना वो मजबूरी का इजहार करता है, और मजबूरी का मतलब ये है किसी भी स्टेज पे पहुंचकर, उम्र के किसी एक हिस्से में पहुंच के, या किसी खास सिचुएशन में इंसान फट भी जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फट पड़ने का मुराद ये है कि आपकी एक लिमिट है बर्दाश्त की, वो जब पूरी होती है तो फिर आप कहते हैं यार मैं माफ कर दे, तू सियाना है, तुम बहुत सियाने हो, बोल मेरे को नहीं हैंडल होता, तो जाके ना अपने यार तक बंदा लभ ले, अच्छा बेहतरीन, ऐसे भी हो जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है जी? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी,
3: कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छा हूँ, ऊंचा बोले, ऊंचा।
3: मैंने पूछा है, अच्छा वो तो समझ में आ गया आपको।
0: हाँ जी, मुझे आ गया।
3: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से, और मुझे ना अभी फीवर है बहुत तेज।
0: अल्लाह आपको सेहत दे बिस्मा।
3: आमीन। और फीवर तो था, सर में दर्द हो रही थी, बट आपका टॉपिक सुन के पेट में भी दर्द निकल आया।
0: आप फिर ऐसा करें डॉक्टर के पास जाएं, और नहीं जा सकती तो फिर ऐसा करें कोई दवाई शवाई खा लें, पेट का दर्द ठीक
3: हो। आवाज़ खराब हो गई है?
0: मेरी आवाज़ खराब होगी मेरी तरह खराब, मैं भी बड़ा खराब हो गया।
3: ये भी ठीक आ रही आपको?
0: जी जी, आपकी भी खराब है।
3: अच्छा, पता नहीं आपकी क्यों हो रहा है ऐसे।
0: हम दोनों की खराब हो गई है, हम दोनों ही खराब हो गए।
3: क्या खराब हो रहा है?
0: कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी,
3: हाँ जी, मैं बात करना चाह रही थी कि मतलब जो हमारे
0: किससे
3: में होता है ना, क्या
0: आप किससे बात कर रहे
3: हैं? बात करना चाह रही हूँ, आप डॉग्स है ना?
0: हाँ, हूँ, आवाज निकली है बात, अच्छा आगे।
3: हाँ जी,
0: हाँ बताएं।
3: तो ना मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंसान के इख्तियार में जो होता है ना उसको वो करना चाहिए बस। जैसे हमारे इख्तियार में हम खुद को बदल सकते हैं, अपनी अंदर की दुनिया को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो वो हमें बदलना चाहिए खुद को।
0: बिल्कुल ठीक है, खुद को बदलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
3: मतलब सामने वाले को बदलना बहुत मुश्किल है।
0: और ये पैगाम आपने किसके लिए दिया है?
3: क्या
0: ये पैगाम आपने किसी के लिए दिया है?
3: ये पैगाम,
0: हेलो, हाँ मैं चांद पे, किधर? अच्छा मार्स पे आवाज नहीं आती, मैं भूल ही गया था। अच्छा अच्छा,
3: आपकी नहीं आ रही मुझे, मैं दोबारा कॉल करूँ?
0: हाँ दोबारा करें प्लीज। बिस्मा लगता चांद पे चली गई है, वहां से आवाज नहीं आ रही। हेलो,
4: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अंसारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके?
4: नवाज़िश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।
0: ओके ठीक है, आगे बताएं।
4: मेरे तो वह गुमान में भी नहीं था कि क्या मेरा इतना भी नगमा रेडियो पे चल जाएगा।
0: नगमा चल गया आपका, मेरा काम ये कब चला आपका?
4: बहुत बड़ा मेरा, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह आपको खुश रखे। कभी जिंदगी में कोई हो मेरे लायक काम तो मैं आपका एहसान है मेरे पर आपका।
0: अच्छा, मैं सोचता हूँ यार, मैंने ना अपनी चेक लिस्ट बनाई है, उसमें से कोई चीज आपको बताता हूँ जी, विश लिस्ट में से।
4: अच्छा, वो दो मैसेज भेजे कम से कम, वो तो पढ़ लेते सर।
0: मैंने आपसे कहा था आप कॉल्स करें, मैसेजेस भेजें, मैं अपनी मर्जी नाल कॉल लेंदा जे ते मैसेज पढ़ना।
4: चले आपकी मर्जी है वो, अगर आप
0: तो आपके कोई पाबंदी नहीं। मैं एक्चुअली ना काफी मसरूफ रहा हूँ, और
4: अगर आप कहते एक लतीफा सुना के मैं आपको और हटा दूं,
0: मुझे हंसाए, बस हंसाना है, फसाना नहीं है, ठीक है? फसाने की इजाजत है, फसाने की नहीं है।
4: नहीं नहीं, वो तो अल्लाह नहीं करे आपको, मैं सर आप जरा सुन ले, हो सकता है आप खुद फंस जाए। तो वो एक साहब बहुत बीमार थे आप।
0: अच्छा जी, बहुत बीमार साहब,
4: ठीक है, बहुत बीमार थे
0: जी, ठीक।
4: तो एक डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, और ऐसा इलाज किया कि बिल्कुल सही हो गए वो।
0: वाह, ये तो बड़ा खतरनाक इलाज है।
4: तो वो डॉक्टर साहब ने उनको आके कहा कि भाई आप बीमार थे, आपका मैंने इलाज किया, आप सही हो गए, आज आपका आखिरी दिन है, हमारी तरफ से आपको इजाजत है, आप घर जा सकते हैं तो वो मरीज जो है हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हो गया कि साईं आपने मेरा इलाज किया, आपका बहुत बड़ा एहसान है, कभी जिंदगी में मुझे खिदमत का मौका देंगे तो मैं आपका ये एहसान बराबर कर दूंगा।
0: बोले
4: नहीं नहीं बाबा, ये फर्ज था हमारे ऊपर, हमने पूरा कर दिया। नहीं नहीं साईं आपका एहसान है मेरे ऊपर, आप मुझे कभी खिदमत का मौका देना। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आप क्या काम करते हो और कहाँ होते हो आप? तो फिर मरीज ने कहा कि भाई मैं गोरखंड हूँ और कब्रिस्तान में होता हूँ।
0: मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। कोई नहीं, मैं भी आपको इतला पहुंचा दूंगा।
4: अच्छा सर, वो मैसेज पढ़ लीजिएगा। और मैंने एक अर्ज की थी हाथ जोड़ के कि मेरी बहन तक ये काम मेरा पहुंचा दीजिएगा।
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मेरा उनसे रहता होता है, जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
4: नहीं, अगर किसी और दूसरे प्रोग्राम में मैं उनको मुतला कर दूंगा, आप रास्ता कायम कर लें।
0: जी जी बिल्कुल, उनसे मैं कर लूंगा। जी
4: चले, मेहरबानी, बहुत
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।
4: अगर मैसेज पढ़ना चाहें तो पढ़ लें।
0: जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे जरा भेजिएगा। सईदा रीबा शाह, नाइस शो, मैं भी आगे, मेरा वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच रीबा फॉर ज्वाइनिंग। और आपका वेलकम करने में थोड़ी सी ताखीर हुई, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी जी। और आगे हम कॉल,
4: आपका वेलकम।
0: अच्छा अच्छा, मेरी लाइव पे से आवाज आ रही, मैं कहूँ कॉल तो बंद हो गई है, फिर आवाज कहाँ से आई जा रही है मुसलसल। अगली कॉल लेते हैं। भट साहब,
1: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, क्या हाल है, सब सब कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
5: सारा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद दरियन के लेट से।
1: ओके,
0: कैसी हैं मैडम आप?
5: मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, क्या हाल है, सब सब कैसे हैं
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
5: सारा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद दरियन के लेट से।
1: ओके,
0: कैसी हैं मैडम आप?

0: शुक्रिया।
1: यंग जनरेशन आपसे इतना प्यार करती है, मैं स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कॉल थी आपकी मैंने सुनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको सेंस बोलना अंदाज से दिया, क्या कमाल कर दिया, अच्छा लगता है बहुत।
0: बहुत शुक्रिया,
1: आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हर नई ख्वाहिश खुदा ताला की बहुत अच्छे तरीके से पूरी करे।
0: आमीन,
1: खुश होती, बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ सुनती हूँ, तो दिल से दुआ निकलती है कि खुदा आप सबके लिए बेहतर करे, बहुत बेहतर। जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आप जैसे अगर 50% भी लोग हो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की क्या ही बात है।
0: अल्लाह करे मैं उन लोगों में शुमार हूँ जिनका आप जिक्र कर रही हैं।
1: नहीं वो ये बात नहीं है, है।
0: अक्सर बता मैं क्या जिक्र करता हूँ, आज आपने बात छेड़ी है वो बड़े अरसे से मैंने नहीं दोहराई, तो आज आपने जिक्र किया तो मैं दोहराता जाऊँ कि मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने अंदर के सवाल आपके सामने रखूँ और उन सवालों पे बात करूँ। मैं नसीहती और वसीयती मौजूआत से गुरेज करता हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मेरी ज़ात के बारे में। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाहैसियत इंसान मैं कोई हाजी तो हूँ नहीं और यकीनन मैं नहीं हूँ। तो बेशुमार खामियां हैं मेरे में। हाँ यहाँ पे आता हूँ तो बात मैं करता हूँ जो मेरे अंदर सवाल है और जिसकी तलाश में आप लोगों से मैं गुजारिशात करता रहता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ, अपने तजर्बात आपके सामने रखता हूँ और चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा जब मैंने समझा वो आपकी समातों तक पहुँचे, जो आपने सीखा वो मेरे तक पहुँचाए, फिर उन्हें इकट्ठा करके दोबारा आप तक पहुँचाऊँ।
1: इस तरह का कोई सिलसिला आपके दिल से निकली हुई बात पूछ रहे हैं
0: है ना, इसलिए मैं ऐसे मौजूदात से भी गुरेज करता हूँ जिसमें ज्यादा दिल की बातें आ जाएं, फिर आप सारे बहुत तेज हैं, फिर आप सारे मेरी बातें पकड़ लेते हैं।
1: अच्छा लगता है सबको, सबको बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात करते हैं, दिल को छूने वाली, दिल में बैठ जाने वाली, दिमाग को पता है वो फिर चलना शुरू हो जाए दिमाग, तो सब आगे क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे।
0: अब मैं आपसे उन सवालों में से एक सवाल रखता हूँ।
1: जी जी।
0: एक सवाल जात के बारे में ही है ना, और ये मैं अक्सर अपने आप से भी सवाल करता हूँ कि मुझे तो मेरी ज़िंदगी में शख्स मेरे मुताबिक चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता नहीं हूँ कि किसी को मुझ में क्या चाहिए, ये क्यों नहीं सोचता मैं। हेलो,
1: आप खुद पता जो हम चाहते हैं ना, जो मैं भी आपका टॉपिक चल रहा था कि बदलना।
0: हाँ, बदलने से ये भी उसी से रिलेटेड है।
1: हाँ, मतलब, हम किसी को नहीं बदल सकते, जो हम हैं बेशक हम सोचें जितना मर्जी कुछ तो बदल देंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसके उसको हम कभी भी नहीं बदल सकते।
0: वेरी ट्रू।
1: हम जो चाहते हैं ना, हमारी ये ख्वाहिश नहीं पूरी होती कि वो बदल जाए।
0: वेरी
1: ट्रू। कभी भी नहीं।
0: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत अच्छी आपने बात की मैडम। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगता है आप फोन करती हैं जी।
1: शो आपका आज एक दिन होता है?
0: नहीं, मेरा जी बुध और जुमेरात की शब होता है 10 से 12।
1: चलिए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो कल फिर बात होगी आपसे, तो
0: अल्लाह ताला आपको गुड आपको
1: बहुत दुआओं में मुझे याद रखना है आपने।
0: बहुत सारी दुआएं हैं मैडम आपके लिए।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मर्जी साथ साथ को पैगाम शामिल कर लें।
2: बिल्कुल सर।
0: गिला तो ये है तुम आते नहीं कभी, लेकिन जब आते भी हो तो फौरन ही जाने लगते हो।
2: क्या?
0: अच्छा जी, ठीक है, ये भी गल ठीक है। ये वैसे मुनफरद बात है मेरे लिए। और ये कौन साहब आए हैं? अच्छा, अलीशा नूर, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच अलीशा, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज एंड मेरे सवाल का भी तो जवाब दें ना। ओके, सईदा रीबा शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑनलाइन स्टोर मेरी जनाब से डॉक्टर शफक इस्लामाबाद वाली निदा 25 नंबर वाली, एड्रेस ही ना लिख देना किसी का, आपका ऑनलाइन स्टोर है, सारों के एड्रेस लिख कर बात करें। बहुत सारे लोगों का आपने सलाम दिया। गुलाम दस्तगीर,

0: Vishwa from Faisalabad, and your young biggest fan. Thank you very much, Alishwa. Thank you very much for your message. Hamid Chand hai. बहुत शुक्रिया. अकबर खान साहब सुन रहे हैं कराची से, बड़े पुराने बड़े अच्छे लिसनर हैं. थैंक यू वेरी मच. साइम तबस्सुम है. सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब भाईजान, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोलते हैं. बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं. आपने तमाम सुनने वालों को सलाम दिया. पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान पाइंदाबाद. और इसके अलावा जी ग़ुलाम दस्तगीर, आपकी आवाज़ बहुत बहुत बहुत औसम है. थैंक यू वेरी मच इफ़ यू लाइक इट. थैंक यू. एंड हामिद चांद, आपका मैसेज पढ़ा. मेरे दिलों में उतरने के लिए फूलों की नहीं, अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है. दिल एक बाग की तरह है, इसमें मोहब्बत भी उगती है, नफ़रत भी, डर भी, रजा भी और नाराज़गी भी उगती है. यह हम पर मुनहसर है कि हम कैसे बीज बोते हैं. वेरी वेल सर जी, मैं ठीक हूँ. अरीबा आप बताओ, आपकी आवाज़ में ज़्यादा तासीर है, उदास दिल को भी खुश हो जाता. अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी. आई एम फाइन, हाउ आर यू अलीशा? आई एम फाइन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. गाना भी एक लगाना मैंने, खुद को किसी के लिए बदलना चाहिए. हम जो हैं जैसे हैं, सेम टू सेम, हमें मोहब्बत करने वाला ऐसे ही कबूल करे. ए भी गर्ल ठीक है, नहीं तो जाओ खसमानो खाओ. आप ये कहना चाह रही हैं. अच्छा, अलीशा नूर फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम इस्लामाबाद आप सुन रही हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी. और वक्त हो चुका है 11:51, और वक्त के दामन में, हम जब तकारीर करते थे कहते थे वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, इसलिए अपनी बात को मुख्तसर करते. ये भी लिखी गाल लूँ किसी, हैरत की बात है. बंदा जेन्युइनली याद बोले ना, तुम बिल्कुल, हम भी लिखा हुआ बोलते थे वक्त के दामन में गुंजाइश कम है. अच्छा यार, कैसी कैसी बातें याद आती हैं इंसान को कभी कभी बात करते हुए. अब राणा अवैस लोन साहब आए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताओ आप कैसे हो, खैरियत से हो? अभी ओके, अहमद मलिक आपको मैसेज पढ़ा मैंने. नौशीन है. इस्लाम किया. वालेकुम सलाम. औरत को महल नहीं चाहिए, बादशाहत नहीं चाहिए, वो बस ये चाहती है कि जिस इज्जत और मोहब्बत से उसे चाहा गया है वो आखिरी सांस तक कायम रहे. आमीन. क्योंकि औरत के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मोहब्बत में मुस्तकिल मिजाजी है. और ये वो ख्यालात हैं जो मिलेनियल्स के साथ ख़त्म हो जाएंगे. अभी आगे काम में जा रहे हैं ये, अभी आगे थोड़ी सी चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं. मैं गलत बयानी सारों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ है, यकीन करें. है कि नहीं बाट साहब?
1: बिल्कुल सर,
0: है कि नहीं?
1: बिल्कुल.
0: कहना मोहब्बत नहीं, पैसा चाहिए.
1: ये तो रियलिटी है आज की.
0: पैसा, पैसा है तो मोहब्बत है. इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड मी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड मी. इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, देन यू आर नॉट लविंग.
1: यू आर सिंगल,
0: है ना? फारग यू रिमेन ऑलवेज सिंगल मैन, है ना?
1: Yes,
0: और फिर क्या आगे से बेर मिनिमम नहीं होता यार. मतलब बेर मिनिमम अगर तुम नहीं कर सकते यार, हाउ कैन यू बी इन माई लाइफ? आई कैन नॉट बी योर बंदी एट ऑल, है ना? पॉजिटिव चेंजेस तो होनी चाहिए. अगर जरूरत है, अगर कुछ खामियां है तो उनको खत्म कर देना चाहिए. नौशीन कहती हैं ओके. आप की प्लेलिस्ट आज डिफरेंट है. थैंक यू वेरी मच. महरमा सिंह, आपको वो महरमा दिला दे आ गया, मुझे याद है दीका का महरमा. इफ यू आर गर्ल और बॉय, तखल्लुस के तौर पे तो ये खैर यूज किया जाता है. आई डोंट नो, आप बाहर डिफरेंट नेम है. सिंह नहीं, चेंज होना चाहिए. आप चेंज हो गए, हो जाएंगे, फिर उनकी डिमांड और चेंज हो जाएंगी. अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए ना.
1: लेकिन इंसान को सब जो कुछ चेंज मिलता है वो कहता है यार इसमें ये भी खामी है, ये भी खत्म होना चाहिए. फिर इस तरह ये सर्कल चलता ही रहता है मेरे ख्याल.
0: अच्छा, इस पर जाने से पहले थोड़ा सा कंक्लूडिंग किस्म की बात करेंगे, है ना? फिर आपको मैं आपसे ओपिनियन लूंगा इस पे. मैसेजेस पढ़ लें इनके.
1: बिल्कुल सर.
0: यू कैन चेंज योर हैबिट्स बट नेचर नेवर चेंज. ओके, इट डजंट चेंज. हिरा फातिमा, आपको अगर कोई पसंद करे फिर आप भी उससे बात करें. फिर 10-13 साल बाद ख्याल पैदा हो जाए वो तो क्या जिंदगी कैसे गुजर जाएगी उनके साथ हैं. 10-13 साल बाद ख्याल कौन सा पैदा हो जाए, बुरा ख्याल या बदलने का ख्याल? ये मुझे वजाहत करें। वजीहा कहती हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, यू कैन डू आर जे वजीहा आसिम ने कमेंट किया, थैंक यू। और शो तो मैं आरजे भट्टी सर का सुन रही थी, टॉपिक आपका सुना सर, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच जी। और ओके आरजे डॉक्स वाइब हसीन लोग शर्ट की कलेक्शन लेवल है, एक मुझे गिफ्ट कर दें। मैं ला के ही ना दे दूँ, इतने ही ला दूँ। पैसे ना खर्चना, मेरे से ही मांगती रहना। अच्छा सर, बहुत देर बाद आज आपको सुन रहा हूँ, माशाल्लाह आपका अंदाज है भाई का। सर थैंक यू वेरी मच, क्या अंदाज है आपका, मुझे भी बता रहे हैं आपने। और कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। आरजे रहमान अनवर तशरीफ ला चुके हैं एंड उनके आने से कांप जाता है फ्लोर FM का, आए नहीं अंदर आ जाते हैं। अभी ज़रा देख लेते हैं लाहौर वाली पोस्ट पे अगर कोई कमेंट है नया जी, फिर वो गिला नहीं रहता जी। साइम तो बसुन भाईजान बहुत खूब, उस्मान बिन इमदाद हैं जद्दा से, सुन रहा हूँ आपके प्रोग्राम, सुन के एनर्जेटिक फील होता है भाईजान। मेरी खजूरें कब आएंगी यार, आप कब से सुनी जाते हैं, हर दफ़ा मैं कहता हूँ, एक दफ़ा आपने नहीं कहा कि जब मैं आऊँगा खजूरें ले कर आऊँगा। हैं अकबर खान साहब, थैंक यू वेरी मच यार, सच अ लवली पर्सन ही इज़। अभी महमूद भाईजान, ये आबिद महमूद तो नहीं था जो अभी महमूद हो गया, इसे थॉट की मेरा ख्याल, इसे पढ़ने के बाद एक थॉट आता है, अभी महमूद तो कल कुछ और तो नहीं नाम हो जाएगा आपका। अच्छा सो वी आर डन विद द कमेंट्स, और अब 11:56 हो गए, आरजे रहमान अनवर तशरीफ ला चुके हैं। मेरे अंदर ये सवाल उठा था और मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि इंसान को किसी के लिए बदलना चाहिए या किसी को आप अपने लिए बदलना चाहेंगे, और या फिर जो जहां जैसा है उस बुनियाद पे उसे कबूल किया जाए। रहमान तो यही कहेगा, जो जैसा है वैसे ही कबूल करें, मैं तो ऐसे ही रहने वाला है ना, नहीं बदल जाएंगे। वो कह रहे हैं मैं जैसा है कि बुनियाद पे बदल जाऊंगा, कि हर रोज तुझे नए चेहरे से अपने तारुफ कराऊंगा मैं, बस तूने ये यकीन रखना है बदलता हुआ हर चेहरा तेरे लिए है मेरा, है ना, सच्चा है। ये आशनाई होगी तेरी मुझसे एक नई तर्स की, हर रोज तुझे ये ख्याल आएगा क्या ये वही शख्स है जो कल मिला था मुझे, है नहीं आज तो कुछ और ही इरादे रख रहा है ये। और ये कल तो कुछ और ही, आज एक स्टेप आगे चला गया। अच्छा सर, आई एम अ गर्ल, मेहरबा कहती है, माय एक्चुअल नेम इज मेहरबा फ्रॉम चालकोट। ओके मेहरबा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब बात करते हैं हम, बदलना चाहिए, देखें एक्सेप्शन होती है,
1: बिल्कुल
0: एक्सेप्शन होती है अगर आप एफर्ट से बदलते हैं
1: ये चीज,
0: और वो तब होती है जब आप किसी से मुब्तलाए मोहब्बत हैं और वो आपको ठुकरा रहा है और आपको पता है स्टैंडर्ड ये है उसके काबिल बनने का, फिर लफ्ज आता है मुझे उसके काबिल बनना है,
1: बिल्कुल,
0: फिर यू पुट ऑन सम एफर्ट्स, फिजिकल है मेंटल है हर तरह से, अदरवाइज जहां पे बे इंतहा मोहब्बत हो जाए और आपको उसकी जात से तारुफ हासिल होता रहे मुसलसल, तो ना आपको या मुझे या किसी और को मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत किए बगैर हमारे अंदर एक और शख्स बैठा है, वो उसकी एक एक आदत को लिखता रहता है, और जब हम अकेले बैठते हैं ना तो हमारे तखयलात की दुनिया में, वो ख्यालातों की दुनिया में बेशुमार उसकी आदतें उसकी बातें निकल के सामने आने लगती हैं, उसको ये अच्छा लगता है उसको ये पसंद है और ये नहीं पसंद, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आप बदलना शुरू हो जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो एफर्ट से किसी को बदलना मुश्किल नहीं है, कि मुश्किल है
1: नहीं, एफर्ट सर करेंगे तो अगला बंदा खुद आपको समझेगा।
0: मैं कहता हूँ कोशिश करके बदलना मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं मेरे कंट्रोल में रहे ना, उसे हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी।
1: बिल्कुल,
0: मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, जिस तरह फरा ने बात की थी, फरा के मैसेज कहीं निकल गए, मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन क्या है कि मुझे पता है मैं ये बात करूंगा, इसकी तरफ से ये आएगी बात या ये आएगी, फिर मैं ये बात करूंगा, फिर ये, फिर इसको उलझाऊंगा, फिर उलझ के ये कहेगी या कहेगा, अच्छा यार फिर आप बताएं, फिर मैं कहूंगा ऐसे ऐसे, और छोड़ दूंगा आधी अधूरी बात ताकि रात सारे परेशानी में रहे।
1: ये चीज,
0: जब वो परेशान रहेगा या रहेगी ना, तो अगले दिन फिर वो क्या करेगा, उसकी जबान मेरे सामने रुकना शुरू होगी, ये सोच के कि इसको बुरा ना लगे, क्योंकि आप उसे मुब्तला कर देते हैं एक कॉम्प्लेक्स में कि तेरे में एक्चुअली बहुत सारी कमियां हैं, जबकि होती नहीं है, और फिर आप बाय फोर्स बदलने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसको जब बाय फोर्स किसी को बदलते हैं ना, थोड़ी टाइम के लिए तो वो रह जाता है, वैसे जब वो शहर आपका टूटता है ना, फिर पता चलता है एक्चुअली ये बंदा कंट्रोल कर रहा था। सो दैट इज कॉल्ड अ टॉक्सिक पर्सन, रेड फ्लैग।
1: यस सर,
0: जेन्युइन वाला, इंस्टा वाला नहीं, रील वाला नहीं,
1: नहीं।
0: जेन्युइन वाला। सो लुबे लुबाब ये है, आप और मैं वो एक्सेप्शन होती हैं जो बदलती हैं खुद को।
1: बिल्कुल,
0: आप बदल जाते हैं किसी के लिए, तजर्बात से बदलना और है, किसी की जात के लिए बदलना और है। और राह सलूक की अगर बात करें ना, तसव्वुफ की, उसमें तो मामलात और हैं, उसमें तो कोशिश और काविश ही चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले मोहब्बत की अबजद आनी चाहिए, उसके लिए मुझे मेरे जैसे ही किसी वजूद से तारुफ होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और मोहब्बत पानी की तरह से शफाफ होनी चाहिए, बहती हुई, रुकी हुई नहीं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ये कॉल ले लूँ आपकी इजाजत है पाए ना भी दो मैं ली सी। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: असद भाई कैसे हो?
0: अच्छा हूँ।
2: दाऊद शाह फ्रॉम पिशावर।
0: आइए दाऊद शाह जी, कैसे हैं? आज फिर कॉल कटेगी आपकी लगता है। सलाम दुआ होता है आपकी कॉल कट गई।
2: पिछले हफ्ते को मैंने आपको फोन किया था पुश्तो में, मैंने आपको कैसे हो, तो आपको तो पुश्तो नहीं आती थी, मुझे खत आई होती।
0: कैसे हैं शाह जी, आप ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब मैंने टाइम देखा 2 मिनट न्यूज में रह गए थे, फिर मैंने कहा बस कॉल बंद कर देता हूँ।
0: अच्छा,
2: फिर मैंने दोबारा ट्राई करता रहा, लेकिन आपने फिर फोन उठाया नहीं है।
0: बिल्कुल, अभी मैंने उठा लिया, आज आपका फोन अच्छा था।
2: नहीं सर, अभी तो वैसे मैं मिला रहा था, कब से मिला रहा, मैंने कहा किस्मत की बात है, या बात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी।
0: थैंक यू वेरी मच शाह जी, आप ठीक हैं?
2: सर आप ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस आपके लिए वैसे ही फोन किया था कि आप थोड़ी सी बात कर लें।
0: बड़ी मेहरबानी शाह जी, अच्छा लगता है आपसे बात करना।
2: और आप इंशाल्लाह दिन लाहौर चक्कर लगाऊंगा।
0: हाँ,
2: पैसा
0: हाँ,
2: तो मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन बस किस्मत की बात है ना, तो मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर मिलूंगा।
0: नहीं नहीं, वो रहमान कह रहे सलाह जीत ले आए, मैं कहूं उनके पास नहीं होती। आजकल ऑनलाइन दिख रही है। शाह जी आप जब भी आए जरूर जरूर जी।
2: मैंने कहा सर आपकी दुकान तो जो है ना, आपकी दुकान जो अपनी है वो तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं पठान हूँ, मुझे ये इतनी थोड़ी बहुत समझ नहीं आती कभी,
0: इतनी है बस, यही है जो आप बोलते हैं, यही जबान है, जबान मोहब्बत की होती है।
2: जी सर, वो लाहौर में जो जबान बोलते हैं ना सर, बंदा ऐसे लफ्ज बोलते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या मतलब होगा।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही है, जिस तरह हम पिशावर में आके परेशान होते हैं क्या बोल रहे हैं।
2: ना ना ना सर, मैंने तो पहले तो मुझे ये थोड़ी बहुत पोस्टों तो आती है, लेकिन मेरी अम्मी खुद उर्दू स्पीकर थी, लेकिन मैंने कभी अपनी अम्मी की जुबान नहीं सीखी, मुझे पसंद नहीं थी गाँव में, ये गांव में जट जाखिल लोग नहीं होते थे ना सर, जब मैं ये बोलता तब मुझे कहता है कि तू पागल है, तू पठान है, तो ये जुबान बोलते हैं, ये अभी की बात नहीं सर, पहले की बात कर रहा हूँ।
0: हाँ।
2: मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ये इधर पिशावर में, इधर कराची जो लाहौर जो, मैंने कहा जो फिर क्या कहेंगे कि तुम्हें पठान है, तुम्हें उर्दू तक नहीं आता। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह की फजल करम सीख लिया है सर।
0: जबरदस्त शादी,
2: थोड़ी बहुत सीख दे सर, इतना खास नहीं सीखा, थोड़ा बहुत सीख दे बस, इतना खास नहीं है।
0: जबरदस्त है शाह जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
2: ओके मेहरबानी, बड़ा मेरा सबको मेरा प्यार, अल्लाह हाफिज़।
0: اولے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے 10 سے 12. اور پشتو سانگ کی ریکویسٹ تھی انہوں نے پلے دا ٹریک, گو کہ میں پلے کرنا چاہتا تھا ہمارا پن کا, جو میں رحمان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا اس گانے کے بعد اگر وہ پلے کر دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, سنتا ہوا جاؤں گا, ٹڈوں دعا نکلے گی, گانا سن کے تانوں بھی مزہ آئے. ہاں اس کو رکھ دیا میں نے, گانا سن کے تانوں بھی مزہ آئے, گل سمجھ نہیں آئی تھی تو پھر آؤ مجھ کو ستاؤ مجھ کو رلاؤ. Anyways, take care and message چندا ماہی ڈاگ سر, آپ کا شو بہت لاجواب ہوتا ہے, جتنا پیارا بولتے ہیں اتنا ہی اچھا مسکراتے ہیں آپ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. نہ ہم خود کو بدل نہیں سکتے تو کسی کو کیا بدلیں گے, حفیظ کہتے ہیں, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, بائے بائے. سلمہ راشد صاحب آئی ہیں, میڈم تھینک یو ویری مچ, آپ نے سلام کیا, اور کہتی ہے رحمان بھائی کو بھی سلام, وعلیکم السلام, تھینک یو, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ. آبش زرتاش بڑا لیٹ آئے ہو تم,

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन। FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन। FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन। FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

मैंने कहा था, मैंने मैंने तुम्हें कहा था, इस पहाड़ी सिलसिले को इतना ना बढ़ने दो, इसे रोक लो। तुम हंस पड़ी और तुमने कहा, पहाड़ियां रेंगने वालों के लिए होती हैं, उड़ने वालों के लिए नहीं। तुमने कह तो दिया, लेकिन ये भूल गई, जख्मी और थके हुए परिंदे को रेत की एक ढेरी भी पहाड़ लगती है। तुम कहां हो मेरे जख्मी और थके हुए परिंदे, कहां हो, मुझे आवाज दो। मैंने कभी कभी इन पहाड़ों की तरफ से तुम्हें ओझल होने दिया और अच्छा किया, वरना मुझे तुम ही तुम नजर आते और पहाड़ियों की उस तरफ सब कुछ ओझल रहता, सब कुछ ओझल रहता और दुनिया महदूद हो जाती, कायनात सिमट जाती और दिल छोटा हो जाता तो तुम सराबी ना रहती। पहाड़ी की दूसरी तरफ की दुनिया तुम्हें मुबारक। पहाड़ी के इस तरफ मैं कितना जख्मी, कितना थका हुआ था। मैंने थकन ओढ़ी, जख्म जेब तन किए, अजाब निसाब बनाए और नए ख्वाब बसाने चल दिया। पुराने ख्वाब नासूर बन गए, गहरे और पुराने, रोशनियां मुरझा गईं, धूप मांद पड़ गई, धूप मांद पड़ गई, सूरज नाराज हो गया और चांद अजनबी, रातें ज्यादा लंबी हो गईं और शामें ज्यादा जर्द, जर्दियां आहिस्ता आहिस्ता आंखों से वजूद में उतर गईं, जर्दियां आंखों में और वीरानियां रूह में, उदासी हमसफर हुई और दुख हमराज हो गए, बारिश होती दिल और सुलग उठता, धूप निकलती सांसें और यख हो जाती, सावन दुश्मन हो गए और सहरा साथ आ लगे और लग के अंदर उतर गए और अंदर उतर के बस गए। एक उजाड़ बेतरतीबी कितनी संगदिल होती है, सब कुछ बेतरतीब कर देती है, रोना भी और हंसना भी। जहां हंसना होता है हंस नहीं सकते, जहां रोना होता है रो नहीं सकते, जहां बोलना होता है चुप रहते हैं। मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकूंगा, तुम कभी समझ नहीं सकोगी। मैं तुम्हें कभी लिख नहीं सकूंगा, तुम कभी पढ़ नहीं सकोगी। जो कुछ तुम्हें समझना है वो ही तुम समझती नहीं, जो कुछ मुझे छोड़ देना चाहिए वही मैं छोड़ नहीं सकता। एक उजाड़ बेतरतीबी और एक बेबसी, बेबसी में भी तरतीब हो तो किसी ना किसी किनारे लग जाती है। जो तुमने सुना नहीं वही वही वही वही तो मैंने कहा था, वही तो मैंने कहा था। मेरी तरतीबों में बस एक तुम ठीक नहीं, और मेरी कोई तरतीब ऐसी नहीं जिसमें जिसमें तुम ना हो।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मैं कह दूं जिससे मेरा मायार कम हो जाए। ऐसा नहीं कभी सोचना, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि जो अंदर चल रहा है ना उसको बयान करना है,
1: बिल्कुल
0: उसको बोलना है, तभी ये पता चलेगा कि क्या गलत है मेरे अंदर, क्या सही है, मैंने फैसला कैसे करना है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कैसे करनी है। अभी डॉक्स भी पिछले प्रोग्राम में एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि इम्प्रोवाइजेशन का जो अमल है ना वो हमेशा अपनी ज़ात के अंदर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं 100% अपनी ज़ात को या फिर इस दुनिया को जान चुका हूँ। किसी भी मामले में, किसी भी तरह से इम्प्रोवाइजेशन का मायार आपको कम से कम 20-30% रखना चाहिए। इम्प्रूव होने का मायार आपको 20-30% रखना चाहिए कि नहीं, 20-30% मेरे पास अभी भी है कि मुझे कुछ नहीं पता।
1: क्योंकि सीखने का अमल तो सर ख़त्म नहीं हो सकता, आपके कब्र में जाने तक और पैदा होने से शुरू होता है और वहाँ तक अब सीखता ही है इंसान।
0: हाँ, हमेशा सीखता रहता है। एक सवाल आया, मैंने कहा ना कि आपने मुझसे आगाज में पूछा था कि भाई रहमान भाई आज क्या डिस्कशन हम करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो मेरा कुछ इतना ख़ास कोई तय नहीं होता। जब बात शुरू होती है तो उसमें से कोई टॉपिक निकल कर सामने आ जाता, पहले से प्रिपेयर कभी किया करता था, लेकिन इन दिनों आजकल गम हाय रोज़गार में उलझा हुआ हूँ मैं, उस पर सितम है ये कि तुझे याद आ रहा हूँ मैं, तो गम हाय रोज़गार इतना टाइम नहीं देता कि आप थोड़ा सा इसके बारे में भी सोच सकें कि क्या आज बोलना क्या है, शायद अंदर कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस चीज़ को समझ लें कि आपकी जो ज़ात है वो मुकम्मल कायनात है, जब खुदा ने ये कहा कि वो शहरक से करीब है, तो जब तख्लीक कार ही आपके अंदर समा गया तो फिर बाहर मालूमात का क्या करना है, लेकिन ढूंढना है, तलाश करना है कि वो मालूमात, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करनी है। हमें तो ये भी याद नहीं कि हम पता नहीं कितना साल में अरवाह में रह चुके हैं, उसका इकरार कर चुके हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में किसी भी मजहब में मौजूद है वो इकरार कर चुका है कि मैं गवाही देता हूँ कि तू एक है, तू हमारा रब है। लेकिन अब याद किस किस को है, वो ही तो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है, हमारे रब्बी जो उसने अपनी तरफ से फूंक दी है, क्यों याद नहीं है। ये तलाश करने का नाम है, ये उस सेंस तक, उस सेल तक, उस जगह तक, उस पॉइंट तक पहुंचने का नाम है। सो आज मेरे जहन में एक सवाल आया, अभी आपसे बात करते करते, कैसे फर्क किया जाए सही और गलत में, मवाजना कैसे किया जाए कि ये सही है ये गलत है, आज का ये सवाल है। एक ट्रैक हम प्ले करते हैं और फिर हम इस डिस्कशन को लेकर आगे चलेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको सोचने का मौका मिलेगा, हमारे तमाम सुनने वालों को भी सोचने का मौका मिलेगा और वो भी हमें बताएंगे। और ये जो लाइट ब्लिंक होने लगती है ये मुझे अच्छा लगने लगता है कि लोग कॉल्स कर रहे हैं, आ चुके हैं। सो आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है, सही और गलत में फर्क कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि ये सही है ये गलत है। आपने अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल बिताए हैं, जितना भी अरसा बिताया है, उसमें आपने सही और गलत का फ़र्क करना सीखा कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये सही होता है ये गलत होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे, माशरे से, कानून से, अपने माँ बाप से, अपने असातज़ा से, अपने दोस्तों से, अपने आप से, किससे सीखा आपने। बहरहाल इसके ऊपर, इसकी साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, फिलॉसफी के ऊपर भी बात करेंगे, साइंस के ऊपर भी बात करेंगे, हर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और दरमियान में कितने ही अनगिनत मौजूआत बीच में छूते जाएंगे हम, लेकिन आज का मेन जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि सही और गलत में फ़र्क कैसे करना चाहिए। वैसे वो रूमी तो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया के उस पार एक जहां है, इस दुनिया से कुछ दूर या फिर इस जहान से कुछ दूर एक जहान है, सही और गलत के उस पार, सही और गलत के उस पार, इन मायारों से परे एक जहां है, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। काविश की बहुत खूबसूरत आवाज है, ट्रैक है,

इंतज़ार, मैंने कई बार कहा है आपसे इंतज़ार पे भी बात करूँगा, इंतज़ार क्या क्या कुछ अता करता है, तुम मेरे साथ होना, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, इस इल्म की बुनियाद तुम हो, कोई सुने या ना सुने तुम्हारा सुनना बहुत ज़रूरी है। आधा कटा हुआ बटा हुआ हिस्सा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मेजर तो तुम ही हो, सेंटर तो तुम ही हो, मरकज तो तुम ही हो। दायरे में चाहे सफर करूं लेकिन टूट कर तुमसे आ मिलूंगा।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: डॉक्टर राबिया मेरे साथ मौजूद हैं यूके से। कह रही हैं कि एक बार गुस्सा करके देखो रहमान, उस पर वो अपनी असलियत बताएगा। इंसान हो तो इस तरह से भी बताया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर प्रेशर बना के देखो, हो सकता है कि वो अपनी असल हालत के सही आ रही है।
1: हाँ, वो अक्सर इंसान गुस्से में ना कुछ अल्फाज ऐसे यूज कर जाता है या कोई बात ऐसी कर जाता है कि जो उसके अंदर होता है। बहुत ये चीज नोटिस की गई है। जैसे अभी लास्ट कॉलर ने बात की कि आप उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका लहजा, उनके अल्फाज का चुनाव मेनली, मतलब कि गुस्से में किसी इमोशन में इंसान ऐसी बात कर जाता है कि जो आप क्लिक कर लेते हैं, हाँ ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है या ये गलत है या ये सही है।
0: कुछ पैमाने हैं जिन पे परखा जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिया, सलामत रहें। आबाद नाजम की फरमाइश की आपने, लेकिन मुझे लगता है कि आज शामिल नहीं कर पाऊंगा। आज अलीना की नज़म शामिल करती है, तुम्हारी दोस्ती है तो चलो कोई बात नहीं, आज वही वाली नज़म सुन लो। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं जी?
2: मैं शदीन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से
0: जी। क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्या गलत है क्या ठीक।
0: हाँ जी, कैसे ये पहचाना जाए बताइएगा।
2: देखिए, नेकी का बदला नेकी है और बुराई का बदला बुराई है, और आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान सौ बरस का है, पल की खबर नहीं,
0: पल की खबर नहीं,
2: सब जमीन भूचाल की तरह हिला दी जाएगी, जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल बाहर फेंकेगी, सब लोग कहेंगे इसे क्या हुआ, उस दिन वो अपने हालात को बयान फरमा देगी, क्योंकि लोग उस दिन तरह तरह के होकर आएंगे, जिसने जरा भाई नेकी की होगी वो भी देख लेगा, और जिसने जरा भाई बुराई की होगी वो भी देख लेगा। ये आपके तमाम सवाल का मुकम्मल जवाब है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस पर मुकम्मल तहकीक भी कर सकते हैं।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
2: अल्लाह के हवाले,
0: अल्लाह के हवाले जी, अल्लाह के हवाले। ठीक है, अच्छा 1:47 एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम का। अल्फाज ट्रैक नया मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे, सोचा चलो यार, जैन जुहेब वैसे ही अच्छा लगता है, हमजा को भी सुन के देखते हैं हमजा कैसा गाता है।

0: अच्छा ठीक है, 1:52, 8 बाकी। दूसरी तरफ वसीम भाई जो है शीशे के उस पार इंतजार कर रहे हैं, ऊंचा शौक प्रोग्राम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, शायरी करेंगे। ठीक है, सही और गलत का फर्क, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। हर इंसान का जैसा जैसा एक्सपीरियंस है, जैसा जैसा उसने पाया है, उस तरह से उसने उस चीज़ को बयान किया। बात मुझे लगता है कि जिसकी भी इंफॉर्मेशन से प्रोसेस होके गुजरी हो, वो कहीं ना कहीं सच्चाई रखती है, उसकी अपनी एक वक़्त होती है, अपना एक वज़न होता है, तो उसको आप डिसएग्री नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक अलग तस्वीर, एक अलग रुख आप दिखा सकते हैं, एक अलग अंदाज़ आप दिखा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलर्स ने ये भी बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे यही बात ट्रिगर की कि आप जब वक्त गुजारते हैं किसी इंसान के साथ, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे अभी साजिदा ने भी बात की, आप बिस्मा ने भी बात की कि कोई इंसान बात करते हुए अगर आपकी आंखों में नहीं देख रहा। वैसे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि अगर उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की तो वो रूड हो गया।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो शायद मैं उसको पसंद नहीं आया।
1: लेकिन ये किसी अगर, किसी के लिए होता है। हाँ, मायार सेंसिटिव हो ना थोड़ा,
0: बहुत सेंसिटिव। हाँ हाँ हाँ हाँ, मायार अलग अलग डिफरेंट। जैसे किसी ने ये कहा कि अगर कोई आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यकीन से, वो तो पहली बात मैंने कर दी कि अगर आपकी बात यकीन से भरी हुई है, आपका यकीन है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, तो उसका एक वजन है, वो प्रॉपर तरीके से उसी तरह से दूसरे के ऊपर असरअंदाज होगी, उसकी तासीर उस तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात सही और गलत के फर्क को वाजे करते हुए आप किसी को उसकी आंखों से जज नहीं कर सकते।
1: नहीं,
0: आप किसी को ये नहीं कह सकते बार बार कि यार अगर ये मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा। और एक आम पर्सनल, आप किसी से मिले हैं, दोस्त अहबाब आपस में मिलते हैं, ये कोई जॉब की कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो अगर आमने सामने आपस में इंसान बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं किसी भी लिहाज से, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी आंखों में देखकर हर बात बताने की कोशिश करे, आंखों से भी समझाने की कोशिश करे।
1: सर, क्योंकि साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसको ट्रूथफुल से रिलेट नहीं कर सकते।
0: नहीं, नहीं रिलेट कर सकते, उसकी अपनी मतलब एक कंफर्टेबल लेवल है उसका, वो कंफर्ट किस में फील कर रहा है, किस तरह से बात करने में फील कर रहा है और कितनी बात करने में फील कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। आपको उसकी साइकोलॉजी को देखना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा नहीं मिले तो आपको उस पर कोई हक नहीं है अंदाजा लगाने का कि ये यही है।
1: बिल्कुल,
0: अगर तो वक्त,
1: हाँ, जो टाइम मेंशन किया ना, ये
0: सबसे बड़ा हथियार है,
1: वर्ड है कि हाँ, टाइम गुजारें,
0: टाइम गुजारें,
1: खुद ही पहचान जाएंगे कि वो सही है कि
0: आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, आखिरी में जाते हुए 5 मिनट रह गए, कोई भी चीज आप कहना चाहें।
1: सर, मेरी नजर में टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करूं तो ये टाइम उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज मेंशन की है।
0: हाँ।
1: और एक ये भी चीज है कि हाँ, फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन,
0: ये
1: नहीं है,
0: वो नहीं
1: जो है ना,
0: हमेशा
1: अब टाइम दें, अगले को समझें, बॉडी लैंग्वेज देखें,
0: पहली बार तो मुकम्मल खोल ही नहीं सकता कोई।
1: बिल्कुल, मतलब कि ये तो डिपेंड है ना कि अगर आप किस सिनेरियो में मिले हो, वो गलत, उसके लिए गलत सिनेरियो हो सकता है कि आपने उसको
0: टाइम
1: गलत
0: देखा।
1: हाँ। बिल्कुल, उसका बुरा टाइम चल रहा है और आपका अच्छा चल रहा होता है, वैसे जज नहीं।
0: कई लोग कई बार गलत टाइम पे मिलते हैं, लेकिन कई लोग सही टाइम पे गलत लोग मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा हो जाता है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे अहमद तुमसे।
1: सर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया।
0: सलामत रहो, हमेशा खुश रहो, और बहुत जल्द तुम्हारा प्रोग्राम इंशाल्लाह जैसे ही आएगा तो मुझे जरूर बताना
1: इंशाल्लाह।
0: ये रहमान भाई, ये वाला प्रोग्राम की टाइमिंग डिसाइड हुई है तो आपने सुनना, तो मैं जरूर सुनूंगा।
1: ओके सर, इंशाल्लाह,
0: और मैं उसमें हिस्सा भी लूंगा प्रोग्राम
1: इंशाल्लाह। सर, इंशाल्लाह,
0: मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं। सो दोस्तों, इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफले मकतब समझ कर, ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाल राह हो गई तो यहाँ पे आने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 12 बजे तक, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको पता है कि इस महीने में ज़ियान जुम प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो इस महीने वो लीव पे हैं। अगले महीने तक मैं उनका प्रोग्राम भी साथ में करूंगा। इस हफ्ते में, हर हफ्ते में आपसे 3 मुलाकातें हुआ करेंगी, एवरी ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे, मिडनाइट टिल 2 AM। हर मंगल, बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक आपका साथ निभाया करूंगा, बहुत सारी बातें किया करेंगे। सो आखिर में जाते हुए कि ये वाला एक ट्रैक काविश का, दोबारा से एक काविश एक सुनते हैं, और काविश के साथ समरा खान की खूबसूरत आवाज है। हो सकता है कभी फिर हमारी मुलाकात, फिर किसी टॉपिक पे बात करें,
1: इंशाल्लाह सर।
0: अब तुमने कहा है कि मेरे प्रोग्राम में आकर गाया करोगे,
1: इंशाल्लाह सर जरूर।
0: ठीक है, कोई पैगाम नजर से ना गुजरा हो, तुम्हारी बातें वैसे आज कम हुई है ना। अच्छा इसको समझ लो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है ना? दोबारा से सुन लेना, यहां से सुना देता हूँ। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।

0: आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: I love FM 101।
3: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: smile and dial 111-111-FM.
1: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. U101. Electric.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ना इंतजार की लज्जत ना आरजू की थकन, ना इंतजार की लज्जत ना आरजू की थकन, बुझी है दर्द की शमे के सो गया है बदन। ना इंतजार की लज्जत ना आरजू की थकन, बुझी है दर्द की शमे के सो गया है बदन। सुलग रही है न जाने किस आंच से आंखें, सुलग रही है न जाने किस आंच से आंखें, ना आंसू की तलब है ना रज्जुगों की जलन। सुलग रही है न जाने किस आंच से आंखें, ना आंसू की तलब है ना रज्जुगों की जलन। दिले फरेब ज़दा दावते नजर पे न जा, दिले फरेब ज़दा दावते नजर पे न जा, ये आज के गुदो गेसू हैं कल के दारो रसन। गरीब शहर किसी साये शजर में न बैठ, गरीब शहर किसी साये शजर में न बैठ, कि अपनी छांव में खुद जल रहे हैं सर्वो समन। बहार कुर्ब से पहले उजाड़ देती है, बहार कुर्ब से पहले उजाड़ देती है जुदाइयों की हवाएं मोहब्बतों के चमन। वो एक रात गुजर भी गई मगर अब तक, वो एक रात गुजर भी गई मगर अब तक, वसाले यार की लज्जत से टूटता है बदन। फिर आज शब तेरे कदमों की चाप के हमराह, फिर आज शब तेरे कदमों की चाप के हमराह, सुनाई दी है दिले नामुराद की धड़कन। ये जुल्म देख के तू जाने शायरी है मगर, ये जुल्म देख के तू जाने शायरी है मगर, मेरी गजल में तेरा नाम भी है जुर्मे सुखन। हवाए दहर से दिल का चिराग क्या बुझता, हवाए दहर से दिल का चिराग क्या बुझता, मगर फराज सलामत है यार का दामन। ना इंतजार की लज्जत ना आरजू की थकन, बुझी है दर्द की शमे कि सो गया है बदन। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज़ आपकी जानी पहचानी, आपके अपने मेज़बान वसीम अहमद की तमाम खूबसूरत समातों को प्रोग्राम गुंजे शौक में मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा, खलूस भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। हमेशा की तरह बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारी शायरी मेरे पास मौजूद होती है आपके लिए, और जो लोग शायरी से मोहब्बत करते हैं, शायरी को सुनना चाहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। शुरू से लेके आखिर तक आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स, आपकी कॉल्स, आपकी ऑफिर कॉल्स, आपकी लाइव कॉल्स, सभी कुछ आपके SMS, सभी कुछ हमारे साथ मौजूद रहते हैं प्रोग्राम के अख्ताम तक। तो आपको अपने दिल की गहराइयों से हम कहते हैं वेलकम टू 101 FM पाकिस्तान लाहौर स्टेशन। नेटवर्क पे ये प्रोग्राम जा रहा है, आप इसको सुन रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ जहाँ पे 101 FM पाकिस्तान के स्टेशन मौजूद हैं वहाँ वहाँ पर हमारी नशरियात जा रही है, और इसके साथ साथ आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं हमारे ऐप के ज़रिए। रेडियो पाकिस्तान के ऐप को आपने अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन पर बैठ के दुनिया में कहीं भी बैठ के हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.radio.gov.pk पे जाके भी लाइव स्ट्रीमिंग को इंजॉय कर सकते हैं।
प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इन जो रबते के तरीक़ाकार हैं उसको गौर से समझ लें और कोशिश करें कि आप प्रोग्राम में ज़रूर कोई शायरी, कोई पोइट्री, कोई चीज़, कोई एक शेर, कोई एक मिसरा लेके आएँ, मगर ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बेस करता है शायरी के ऊपर और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में शायरी जो है वो शुरू से लेके आखिर तक प्रोग्राम में शामिल रहे। रात का ये पहर जो होता है ये रात का आखिरी पहर कहलाता है और आप लोगों की मोहब्बत, बे इंतहा मोहब्बत मिलती है मुझे कि मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ, आप अपने घरों में बैठ के, अपनी जगहों पे बैठ के, जहाँ भी आप होते हैं हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। आपकी शिरकत प्रोग्राम को खूबसूरत बनाती है, बल्कि बहुत खूबसूरत बनाती है और हमें इस काबिल करती है कि हम अपने प्रोग्राम को भरपूर तरीके से पूरी जोश और पूरे जज्बे के साथ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। जिन लोगों ने अभी अभी 101 एफएम पाकिस्तान को ट्यून इन किया है उनको एक दफ़ा फिर अपने मेज़बान यानी मेरा वसीम अहमद का सलाम कबूल हो। रात का ये पहर, खूबसूरत पहर, जिसमें तन्हाई भी है, खामोशी भी है और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौका होता है अपने आप से बात करने का। अपने आप से बात करने का मौका हमें बहुत कम मैसर आता है, हम मसरूफ़ रहते हैं, सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं या फिर हम सो जाते हैं रात को, कभी कभी हमारी आँख नहीं लगती, कभी कभी हमें नींद नहीं आती, कभी कभी कोई बेकरारी होती है, कभी कभी हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि फिर भी हम मुख्तलिफ चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं और उन ख्यालों में खो जाते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं, अक्सर हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, अपने आप से बात करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते। और जब कभी ऐसा टाइम मिल जाए हमें और ऊपर से आप पोइट्री का, शायरी का प्रोग्राम भी सुन रहे हों, तो यकीन मानिए मैं अगर ऐसा है, मेरे साथ अगर होता है तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और तनहा अपने कमरे में लेट के, अपने बिस्तर पे लेट के जब इस तरह के प्रोग्राम को सुना जाता है, शायरी को सुना जाता है, उसमें हिस्सा भी डाला जाता है, तो लुत्फ और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं कही जाती, हम बहुत सारी बातें, बल्कि सारी बातें लफ्ज़ों से ही कहते हैं, बल्कि अगर लफ्ज़ ना हो तो हम कहते हैं कि हम कैसे कह पाएंगे। जो बहुत सारी बातें हैं ना, यकीन मानिए बहुत सारे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत होती है और महसूस करवाने की ज़रूरत होती है। अगर हम ये फ़न जानते हैं, अगर हम ये तरीका इख्तियार करते हैं कि दूसरा शख्स हमारी बात को महसूस कर सके, हमारी मोहब्बत को महसूस कर सके, हमारे किसी भी जज्बे को जो कि उसके साथ हमारा जज्बा जुड़ा हुआ है उसको महसूस कर सके, तो यकीन मानिए हम अपनी बात में, अपना जो हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से हम भी अगर किसी की, कोई हमें महसूस कराना चाहता है किसी बात के हवाले से, तो हम एक मिनट में समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ज़रूरी नहीं कि बातें लफ्ज़ों से ही कही जाएँ, हाँ महसूसात के आले जो होते हैं ना वो किसी इजहार के मोहताज नहीं होते हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देख लीजिए, आपको अभी एक हाला सा नज़र आएगा अपने इर्द गिर्द, आपको वो लोग अपने बहुत करीब महसूस होंगे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जो आपके दिल में बसते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर लफ्ज़ नहीं आपके पास मौजूद होते, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप और वो भी आपकी बात को, आपके जज्बात को महसूस कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, वो है शायरी। अगर हम शायरी का सहारा लेना चाहें तो उन्हीं लफ्ज़ों को हम एक लड़ी में पिरो देते हैं, ये बात मैं अक्सर करता हूँ, और वो लड़ी जो होती है वो एक हार की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर वो हार, वो गजरे आप किसी को भी पेश कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो हम कहना चाहते हैं हम नहीं कह पाते, डायरेक्टली नहीं कह पाते, मगर शायरी की ज़ुबान में हम कह पाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह आपके लिए कोई डिस्कशन करने के लिए कोई थोड़ा सा टॉपिक भी है, छोटा सा टॉपिक होता है, कोशिश हमारी ये होती है कि हम ज़्यादा शायरी आपको सुना पाएँ और आपसे सुन भी पाएँ,
तो आपकी जब लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा तो हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और उसके साथ साथ आपके जो फेसबुक पे पैगाम आते हैं या आपके SMS आते हैं शायरी के हवाले से, उसमें आपने अशआर लिखे होते हैं, वो भी बहुत खूब लगते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी पसंद के खूबसूरत अशआर हमें भेजते हैं। पहले ज़माने में लोग जब एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे, अब तो ख़त लिखे ही नहीं जाते हैं, ख़त लिखा करते थे तो ख़त के अंदर जो कागज़ होता था उसको बाकायदा बाज़ार से ख़रीदा जाता था, उसको लेटर पैड कहते थे, लेटर पैड लेते थे और ग्रीन ब्लू कलर का, ग्रीन नहीं ब्लू, डार्क ब्लू कलर का वो लेटर पैड होता था आमतौर पर, और उसके ऊपर ब्लू कलर से ही लिखा जाता था। कुछ मोहब्बत भरे जो होते थे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती थी, किसी के ऊपर दिल बना होता था, किसी के ऊपर गुलाब का फूल बना होता था, किसी खूबसूरत हाथ के अंदर गुलाब के फूल की पंखड़ी बनी होती थी, और कुछ बहुत ही डिसेंट किस्म पे भी कार्ड होते थे लेटर, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता था, आप अपना सिर्फ खत लिखते थे। अच्छा, मोहब्बत वाले लोग जो है ना वो उसको ख़त को बहुत ही प्यार के साथ तहरीर करते थे, उसमें अशार भी लिखते थे, अपने दिल की बातें भी लिखते थे, फिर उसको तय करते थे, उसको परफ्यूम लगाते थे, उसको लिफाफे में डालते थे और आखिर में लिफाफे के ऊपर भी शेर लिखते थे। क्या ज़माना था जब लोग एक दूसरे को ख़त भी लिखते थे और अपने जज्बात का इजहार भी करते थे, और वो ख़त पहुँच भी जाते थे, वो ख़त मिल भी जाते थे, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। FM 101 आपका अपना फैमिली स्टेशन, आपके लिए बहुत सारी पोइट्री मेरे पास मौजूद है, खूबसूरत गीत भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, खुद को इतनी भी अजियत नहीं दी जा सकती। कभी कभी कैसी बात है कि कभी कभी जो मोहब्बत हम करते हैं किसी के साथ वो हमारे लिए अजियत भी बन जाती है। जानते हैं कि यकीन टूट रहा है दिल पर, जानते हैं कि यकीन टूट रहा है दिल पर, फिर भी अब तर्क ये वहशत नहीं की जा सकती, तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, खुद को इतनी भी अजियत नहीं दी जा सकती, जिसका शहर है और उसमें किसी भी सूरत, हब्स का शहर है और इसमें किसी भी सूरत सांस लेने की सहूलत नहीं दी जा सकती, रोशनी के लिए दरवाजा खुला रखना है, रोशनी के लिए दरवाजा खुला रखना है, शब से अब कोई इजाजत नहीं ली जा सकती, हब्स का शहर है और इसमें किसी भी सूरत सांस लेने की सहूलत नहीं दी जा सकती, रोशनी के लिए दरवाजा खुला रखना है, शब से अब कोई इजाजत नहीं ली जा सकती, इश्क ने हिजर का आजार तो दे रखा है, इश्क ने हिजर का आजार तो दे रखा है, इससे बढ़कर तो रियायत नहीं दी जा सकती, तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती। मनोन FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आवाज़ आपकी समात तक पहुँचने आपके अपने मेज़बान RJ वसीम अहमद की। वक्त बताता चलूँ तो 2:22 और सुबह के 4 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। खूबसूरत सपने अगर आप देख रहे थे मेरे प्रोग्राम को सुनने से पहले, तो हम ये कहेंगे कि प्रोग्राम सुनने के दौरान आप और ज़्यादा सपने बुन सकते हैं, और ज़्यादा ख्वाहिशों को आवाज़ दे सकते हैं, और ज़्यादा ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ भी कहिए ताकि प्रेम अपने खूबसूरत अंदाज में और खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता चला जाए। जो बातें लफ्ज़ों में नहीं की जा सकती उनको आप किस तरह से कहते हैं, किस तरह एहसास दिलाते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, इस बारे में भी ज़रूर बात कीजिएगा।
और साहब कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि हम हमारे दिल के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें पैदा होती हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा कर लें, हम चाहते हैं कि ऐसे हो जाए। और मोहब्बत के ज़माने में जब मोहब्बत जवान होती है तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो कि बहुत शिद्दत के साथ हमें महसूस होती हैं और हम उनको उन ख्वाहिशों को पूरा भी करना चाहते हैं। मगर हमने आपने देखा कभी कि वो ख्वाहिशें जिनके ऊपर हमारी जान जा रही होती है, हम अपनी जान देने को तैयार होते हैं, हम मर रहे होते हैं कि काश ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। वक्त ऐसा जालिम है कि वो जब बीतता चला जाता है तो वही ख्वाहिशें बाद में हमें मजाक सा फील होती हैं, अपने आप के ऊपर हंसी आती है कि मैं इस बात के ऊपर इस तरह तड़प रहा था। मगर ख्वाहिशों को हम कुचल नहीं सकते, ख्वाहिशें किसी न किसी सूरत में हमारे दिल में मौजूद रहती हैं। बांध ले हाथ सीने पे, सजा ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी नहीं आता है कि तावीज बना ले तुमको, फिर तुम्हें रोज सवारे तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज सवारे तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा ले तुमको, फिर तुम्हें रोज सवारे तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चमेली सा लगा ले तुमको, कभी ख्वाबों की तरह आंख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाबों की तरह आंख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला लें तुमको, कभी ख्वाबों की तरह आंख के पर्दे में रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला लें तुमको, जिस तरह रात के सीने में है महताब का नूर, जिस तरह रात के सीने में है महताब का नूर, अपने तारीख मकानों में सजा लें तुमको, क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछालें तुमको, है तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अकीदत दिल में, अपने हाथों में दुआओं सा उठा ले तुमको, जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो, जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो, वरना मर जाएं अभी मर के मना ले तुमको। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत शेर। जान देने की इजाजत भी नहीं देते हो, वरना मर जाएं अभी मर के मना ले तुमको, इस कदर तुम पे हमें टूट के प्यार आता है, इस कदर तुम पे हमें टूट के प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डालें तुमको, अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी मोड़ पर तुम, अब तो बस एक ही ख्वाहिश है किसी मोड़ पर तुम, हमको बिखरे हुए मिल जाओ संभालें तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। FM 101 की आवाज नेटवर्क पे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुंजा शौक। आज के प्रोग्राम का एक खूबसूरत गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है। कभी तन्हाई में ऐसा होता है कि हम तन्हा होते हैं और किसी एक शख्स की याद हमेशा, जब भी हम तन्हा होते हैं हमारे सामने आन खड़ी होती है, हमारे सामने वो शख्स आन मौजूद होता है, हम अपने दिल की जानिब देखते हैं तो हमारे दिल के अंदर उस शख्स का चेहरा हमें दिखाई दे रहा होता है और हम उसको बहुत याद कर रहे होते हैं। और इसी तरह से कहते हैं ना कि जिसको आप याद करते हैं वो भी आपको ज़रूर महसूस कर रहा होता है, आपकी याद को ज़रूर महसूस कर रहा होता है। तो जब आप अकेले होते हैं तो क्या हम आपको याद आते हैं।

थी जिसकी जुस्तजू वो हकीकत नहीं मिली, थी जिसकी जुस्तजू वो हकीकत नहीं मिली, इन बस्तियों में हमको रफाकत नहीं मिली। थी जिसकी जुस्तजू वो हकीकत नहीं मिली, इन बस्तियों में हमको रफाकत नहीं मिली, अब तक है इस गुमा में कि हम भी हैं दहर में, अब तक है इस गुमा में कि हम भी हैं दहर में, इस वहम से निजात की सूरत नहीं मिले। रहना था उसके साथ बहुत देर तक, मगर रहना था उसके साथ बहुत देर तक, मगर इन रोजों शाम में मुझको ये फुर्सत नहीं मिली। कहना था जिसको उससे किसी वक्त में मुझे, उस बात के कलाम की मोहलत नहीं मिली।

ओके डियर लिस्टर्स, कुछ लोग जो होते हैं हमारे सामने से गुजरते हैं, हम उनसे मिलते हैं एकदम से, जिसे हम कहते हैं ना कि और पहली नज़र में मोहब्बत हो जाना, हमें कुछ ऐसा फील होता है। आपको भी कभी कभी कभी ना कभी तो ज़िंदगी में ऐसा महसूस हुआ होगा। तो उसमें ये बात आपसे कहने वाला हूँ कि कभी कभी जो ऐसी फीलिंग है हमें पता चलता है बाद में, थोड़ी सी बात बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि वो हमारा ख्याल था, वो हमें ऐसे ही लगा था कि जनाब कुछ ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। मगर बाद में फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो मोहब्बत के कुछ सिग्नल्स जो होते हैं, जो मोहब्बत का कुछ नज़र करम होती है, वो हमें मिलती हुई नज़र आती हुई अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है दोबारा से। एक खूबसूरत शेर ऐसी हमारे से कि वास्ता तुझको तेरा दूंगा खुदारा मत कर, वास्ता तुझको तेरा दूंगा खुदारा मत कर, मुब्तला मुझको मोहब्बत में दोबारा मत कर। क्या कभी आप दोबारा से मोहब्बत में मुब्तला हुए हैं? जिसको कहते हैं ना कि पहली दफ़ा उन्होंने आपको बुलाया, बुला के और चुप करा दिया, डांट पिला दी, सारी मोहब्बत धरी के धरी रह गई, आपके सारे अरमान जो हैं वो धरे के धरे रह गए, और बाद में पता चला कि फिर दोबारा से वो कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो मिल रहे हैं, कुछ निगाहें कर्म हो रही है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या बना? शेर दोबारा से पढ़ूंगा। वास्ता तुझको तेरा दूंगा खुदारा मत कर, मुब्तला मुझको मोहब्बत में दोबारा मत कर। मोहब्बत एक बार नहीं बल्कि बार बार हो जाती है, क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं? आपके कुछ पैगाम मुझ तक पहुँचे उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो, या उससे पहले एक खूबसूरत पोइट्री प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। नौशी गिलानी का कलाम है, जाने कैसे संभाल कर रखे, जाने कैसे संभाल कर रखे सब इरादे, संभाल कर रखे कुछ नए रंग हैं मोहब्बत के, कुछ पुराने संभाल कर रखे। मौसम इश्क तेरी बारिश में खत जो भीगे संभाल कर रखे। जिनकी खुशबू उदास करती थी वो भी गजरे संभाल कर रखे, तुझसे मिलने के और बिछड़ने के सारे खदशे संभाल कर रखे। जब हवा का मिजाज बरहम था हमने पत्ते संभाल कर रखे, आरजू के हसीन पिंजरे में कुछ परिंदे संभाल कर रखे, हमने दिल की किताब में तेरे सारे वादे संभाल कर रखे, हमने दिल की किताब में तेरे सारे वादे संभाल कर रखे, तेरे दुख के तमाम ही मौसम ए जमाने संभाल कर रखे, मेरे ख्वाबों को राख कर डाला और अपने संभाल कर रखे, जाने कैसे संभाल कर रखे सब इरादे, संभाल कर रखे कुछ नए रंग हैं मोहब्बत के, कुछ पुराने संभाल कर रखे।

0: जब भी तेरी याद ने छेड़ा आँख मेरी भर आई।
1: दुनिया की बेस
2: सुर और संगीत सा सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: अभी आपने अहमद रुश्दी की खूबसूरत आवाज़ सुनी और यकीन आपको गीत पसंद आया होगा, और अगर आपने ये पहली दफ़ा सुना तो तब भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मगर मुझे अफसोस है कि गाना पूरा मैं आपके लिए प्ले नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेरे पास गाना मौजूद था उसमें आखिर में वो गाना जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल गाना भी किसी दिन सुनाऊँ। देखते हैं कि लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी रिमशा जी, क्या हाल है आपके?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद
3: है देख ले मैंने आपको पहचान लिया ना आज।
4: हाँ जी,
3: क्योंकि क्योंकि आप अपना नाम क्योंकि आप अपना नाम मुझे बता चुकी थी थोड़ी देर पहले। रिमशा कैसी हैं? ठीक ठाक हैं
4: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम देखिए मैं जाग के आपका शो सुन रही हूँ पहले जैसे।
3: बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त वाकई जागना और शो सुनना बहुत ही दिल और जिगर वाली बात है।
4: कहते ना जब इंसान अपने घर होता है ना तो फिर माँ बाप मामा से भैया से छुप के जरा कॉल मिलानी पड़ती है, और फिर कहते रात को किन्नी कॉल करती है तू।
3: ठीक हो गया ठीक हो गया। और लाहौर में आजकल आप?
4: जी जी बिल्कुल
3: जी। क्या कहेंगी?
4: क्योंकि मैंने मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दी, मैं अपनी मामा की तरफ रहना चाहती हूँ। फिर मेरी मामा कहती है कि तुम थोड़े दिन यहाँ रहो, इतने दिनों के बाद आई हो।
3: सही बात है सही बात है। चले ये भी बड़ा जरूरी होता है वापस आना और कुछ दिन रहना। तो
4: मैं भी स्कूलों की छुट्टियों पे आई हूँ।
3: अच्छा अच्छा ठीक हो गया। चले चले बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक लम्हा दोबारा जीने का मौका मिले तो कौन सा लम्हा होगा?
4: वो लम्हा बचपन का जिसमें अपने बाबा के साथ थी, उस बचपन को मैं दोबारा गुजारना चाहूंगी। क्योंकि
3: वो तो जमाना है, मैं लम्हे की बात कर रहा हूँ।
4: अच्छा लम्हा तो वो मेरे बाबा।
3: अच्छा
4: जो लम्हा मेरे बाबा के साथ था, जो लम्हा मैंने अपने बाबा के साथ पहले गुजारा, वो लम्हा अगर मुझे दोबारा मिल जाए ना तो मैं जो बातें मेरे दिल में रह गई ना तो वो बातें मैं उनसे कहना चाहूंगी अगर मुझे मौका दोबारा मिल गया तो।
3: जबरदस्त जबरदस्त बहुत अच्छी बात।
4: और जाते जाते एक छोटा सा शेर सुना सकती हूँ?
3: जरूर, शायरी तो बहुत जरूरी है।
4: मैंने कहा चलिए मैं सुना देती हूँ, ये मेरे हस्बैंड के नाम अगर वो सुन रहे हो तो।
3: जी जी।
4: मैं तुझे रोज देखूं करीब से, मेरे शौक भी हैं अजीब से। मेरी आंखों में भी है आजजी, मेरी आंखों में भी है आजजी, मेरे ख्वाब भी हैं गरीब से।
3: ठीक हो गया ठीक।
4: मेरे हर मर्ज की दवा हो तुम।
3: मेरे
4: हर मर्ज की दवा हो तुम, मिले क्या सकून फिर तबीब से। ये छोटा सा शेर।
3: बहुत बहुत शुक्रिया रिमशा, जीती रहो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
4: और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा,
3: अल्लाह हाफिज। ओके जी रिमशा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। रिमशा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हर्फ़ ताज़ा नई खुशबू में लिखा जाता है, बाबिक और मोहब्बत का खुला चाहता है। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल है कि उसे हद से सिवा चाहता है। एक हजाब तह इकरार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पा चाहता है। यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, और कुछ रोज के वो शोख खुला चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ में अब कोई दिया चाहता है। तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज्म से अब कोई उठा जाता है। 04211001001 हमारे टेलीफोन नंबर। बहुत थोड़े से कमेंट्स आपके पहुंचे, इसमें कंजूसी मत किया कीजिए, मेरा दिल उदास हो जाता है कि जनाब इतने थोड़े कमेंट्स। प्रोग्राम को लाइक किया है रेहाना खान ने बक्कर से, रेहाना खान आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। ताहिरा मसूद हमारे प्रोग्राम में शामिल है, ताहिरा मसूद आपका बहुत शुक्रिया। मलक वसीम अवान हमारे प्रोग्राम में शामिल है, हमीद गुल साहब हमारे बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं और बहुत बड़े शायर हैं और बहुत प्यार करते हैं और बहुत कुछ बताते हैं, कहते हैं और सुनाते हैं। इनका पैगाम हम तक पहुंचा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा, कोई इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है, हाँ अगर तुम चाहो तो ऐसे हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमीद गुल साहब का अपना शेर है ये, मैं दोबारा से सुनाऊं, कोई इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है, हाँ अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। मलिक वसीम मवान मुंडा सियालकोटी, बहुत उम्दा प्रोग्राम। आबिद अली जापा इन्होंने लिखा है JAPPA, ये रहा आपका शेर उर्दू रस्मुल खत में। ओके जी, और ये कहाँ से आपने ये कॉपी किया, आपने ये लाइन भी हमें भेज दी है साथ। एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आबिद अली जापा, वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, कमाई जिंदगी भर की उसी के नाम तो कर दी, मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और कहना था, कहाँ उससे सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी, कहाँ उसने सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी, उसे मालूम था इतना मुझे कुछ और कहना है। मेरे दिल में जो डर आया कोई मुझसे भी डर आया, वही एक रब्ता टूटा मुझे कुछ और कहना था, रवा था प्यार नस में बहुत गुर्बत थी आपस में, उसे कुछ और सुनना था मुझे कुछ और कहना था, गलत फहमी ने हाथों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहाँ कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। बहुत शुक्रिया आबिद अली जापा जी कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। रेहाना खान बक्कर से बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक वसीम अवान मोहतरम जनाब मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोट की तरफ से आपको और आपकी टीम को, सुनने वालों को सलाम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं नेक तमन्ना है। रेहाना खान बक्कर से अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान बक्कर से, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया रेहाना खान। और इसी तरह से मलिक वसीम अवान के एक दो मैसेजेस, बल्कि 2-3-4-5 मैसेजेस और पहुँचे हैं और इन्होंने वेलकम कहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का है, शहर सियालकोट जिंदाबाद का है, शहर लाहौर जिंदाबाद का है, और कहते हैं कि बन के फ़कीर बैठे थे जिनकी खातिर वो आए और बोला मुर्शिद दुआ करना मेरा यार मिल जाए। ओहो हो हो हो, ओके जी। इन्होंने रियाज भट्टी रमज़ान गुज्जर को सलाम भेजा है, रेहाना खान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। ये आपके टोटल मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें और बहुत सारे कमेंट्स भेजेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो कमेंट्स से भी सजा सजा रहे। अब्दुल नूर हाशमी ने हमें SMS किया है रिवाज गार्डन लाहौर से, और कहते हैं कि वसीम, डियर वसीम जी आदाब जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हमारा आदाब कबूल हो। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। बहुत शुक्रिया आपका खूबसूरत शेर आपने इनायत किया हमें, तो हम आपको वेलकम कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम हुसैन भाई, कैसे हैं?
3: शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं?
5: जी
3: हक नवाज, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, ड्यूटी पे बैठे हैं?
5: मैंने क्या ड्यूटी करनी है सर, मैं इस टाइम लेट के तन्हाई में कमरे में आपको प्रोग्राम सुन रहा
3: हूँ। ओहो हो हो हो, वो अक्सर लेट जो फोन कॉल आती है ना उसमें लोग कहते हैं जी हम इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर आप मेरे जैसी ड्यूटी कर रहे हैं और आपसे मजे से बैठे हुए हैं, है ना?
5: हाँ, मेरी के बाजी आती है बैरिया इंक्लूव रावलपिंडी से ना
3: जी,
5: इस्लामाबाद से लगता है, तो वो भी डिसेबल है, ब्लाइंड है, सायरा आती उनका नाम है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं डिसेबल ब्लाइंड हूँ, लेकिन हर बार किसी को बताना अच्छा नहीं लगता।
3: सही बात है, सही बात है।
5: हाँ, ये बात है, मतलब अल्लाह और बंदे के दरमियान है और ये उसी का इम्तिहान है और वही कामयाब करेगा इसमें।
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
5: तो टॉपिक के हवाले से आज बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा, तो मैं उस लम्हे में जाना चाहता हूँ जो लम्हे मुझे बेलोस प्यार दिया करते थे। मुझे वो रिश्ते चाहिए जिन रिश्तों में मुझे कोई लालच, कोई मतलब है इस किस्म का कोई दुनियादारी
3: कोई मतलब नहीं था उनमें,
5: कोई मतलब नहीं था। वो लम्हा चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरी जिंदगी में वो लम्हा दोबारा से आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है ये लम्हा आना। वो बचपन के लम्हे थे जब हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हम मैच्योर हो चुके हैं, मारे खा खा के हमको सब कुछ पता चल चुका है,
3: मगर फिर भी दिल के अंदर वो बच्चा मौजूद है, वो वापस अपने उस जमाने में जाना चाहता है ना,
5: जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा।
3: सही, तो कुछ सुनाएंगे आपके पास कुछ शेर है हमारे लिए?
5: अच्छा साहब का शेर इसी हवाले से
3: जी,
5: उसका मकता ही पेश करूंगा, मुझे मकता याद है
3: जी।
5: शाह साहब लिखते हैं, आपने वो जो अभी शाह साहब की गजल भी पढ़ी थी मुझे बहुत पसंद है
3: जी, उनके अंदाजे करम
5: नहीं नहीं वो जो बांध लू हाथ के सीने पे
3: जी जी वसी शाह जी,
5: ये भी वसी शाह साहब ने लिखा है कलाम
3: जी जी।
5: तो वो कहते हैं कि मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज आती है, मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज आती है, किसी के हिजर में नींदे गवा कर कुछ नहीं मिलता, जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी,
3: वाह
5: जिगर हो जाएगा छलनी ये आंखें खून रोएंगी, वसी बेफैज लोगों से निभा कर कुछ नहीं मिलता।
3: वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया
5: आपका प्रोग्राम, बहुत उम्दा बहुत आला, और सभी आने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
5: दुआएं और सलाम,
3: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या जानिए वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, घर शाम का भूला है तो घर क्यों नहीं आता, हमको नहीं मालूम कि उजड़े हुए दिल से आवारा मिजाजी का असर क्यों नहीं जाता। सदियों से तुझे तकते हुए सोच रहा हूं, जी तेरे खुदो ख्याल से भर क्यों नहीं जाता। दोबारा से पढ़ूंगा मैं शेर, सदियों से तुझे तकते हुए सोच रहा हूं, जी तेरे खुदो ख्याल से भर क्यों नहीं जाता, आंखों से उदासी की घटा क्यों नहीं छटती, आंखों से उदासी की घटा क्यों नहीं छटती, सीने से मोहब्बत का भंवर क्यों नहीं जाता, आंखों से उदासी की घटा क्यों नहीं छटती, सीने से मोहब्बत का भंवर क्यों नहीं जाता, ठहरा है जो एक काफिला, ठहरा है जो एक काफिला गम मेरे दिल में, इस छोटी सी बस्ती से गुजर क्यों नहीं जाता, ठहरा है जो एक काफिला गम मेरे दिल में, इस छोटी सी बस्ती से गुजर क्यों नहीं जाता, सांसों से मेरे लर्जिश गम क्यों नहीं जाती, पैरों से मेरे जख्म सफर क्यों नहीं जाता, सांसों से मेरे लर्जिश गम क्यों नहीं जाती, पैरों से मेरे जख्म सफर क्यों नहीं जाता। क्या जानिए वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, घर शाम का भूला है तो घर क्यों नहीं आता। सैयद फरहत अब्बास शाह का खूबसूरत कलाम आपने सुना मुरमुन एफएम आपके साथ साथ, मैं आपका मेजबान आरजे वसीम अहमद, वक्त बताता चलो 3:08। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम
3: जी, कौन?
6: महबूब अली
3: जी। महबूब अली कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं।
6: मैं करूं कमाल है
3: जी, जबरदस्त
6: ठंडे ठंडे गाने लगा रहे हो।
3: अच्छा ठंडे ठंडे से मुराद आपकी स्लो, मतलब क्या मतलब ठंडे से?
6: वो नींद आ रही थी मुझे।
3: अच्छा
6: हाँ,
3: मतलब आपको मजा आ रहा था और आपको इतना लुत्फ आ रहा था कि आप नींद की वादी में जाने लगे थे।
6: तो मैंने दवाई खाई अभी।
3: अच्छा
6: इसका, हाँ, तो बहुत खराब है, फिर भी मैं फोन कर रहा हूँ।
3: अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे।
6: डॉक्टर साहब आए हैं ना, तो उनका पता लगा जी डॉक्टर है अपना अनिला।
3: अच्छा
6: हाँ, एक वो राम जी हो रहा था तो वो कह रहा था डॉक्टर नीला को मेरा सलाम।
3: वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं कि वो हम उनको डॉक्टर भी कह सकते हैं, हम उनको क्रिकेटर भी कह सकते हैं, हम उनको एक्टर भी कह सकते हैं, वो सदाकार भी हैं रेडियो की, मतलब वो सब कुछ है माशाल्लाह से।
6: नाइस नाइस मेरी बहन है वो
3: जी।
6: मैं उसके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ कि बहन जब आती है ना तो रौनक लग जाती है।
3: बिल्कुल ठीक है, कुछ सुनाएंगे, कुछ शेर सुनाएंगे।
6: वो शेर जी मैं सुनाऊं आपको, ये गजल है, टूट जाए ना भरम होठ हिलाऊं कैसे, हाल कुछ ऐसा ही है लोगों को बताऊं कैसे।
3: वाह।
6: फूल होता तेरे जूड़े से सजा रहता, जख्म लेकर तेरी गली से आऊं कैसे।
3: आहा आहा आहा वाह।
6: तेरा चेहरा मेरी आंख की अमानत है, तेरे चेहरे से निगाहों को हटाऊं
3: कैसे। तेरे चेहरे से निगाहों को हटाऊं कैसे। वाह।
6: बाकी तारिक साहब आए, तारिक साहब आएंगे तो मेरा सलाम लेके आइएगा, अनिला बहन को भी, नूर आशीष साहब को भी,
3: बहुत शुक्रिया।
6: गुलमी साहब को भी मेरा सलाम, के गुलमी साहब जो है ना बड़ी शायरी अच्छी लेकर आते हैं,
3: हमीद गुल साहब।
6: बाकी सब जमातों को मेरा
3: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी, महबूब अली हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। महबूब अली आपका बहुत शुक्रिया, आप खूबसूरत अशार से भी हमें नवाज किए गए हैं।

0: सिलसिले टूटी ना साकी होश उड़ जाने के बाद, सिलसिला टूटी ना साकी होश उड़ जाने के बाद, मुझको मिलता ही रहे पैमाना पैमाने के बाद, खो दिया दुनिया में जो कुछ था तुझे पाने के बाद, जान से जाना पड़ा हमको तेरे आने के बाद, तू ही था वो शमा जिसकी रोशनी थी हर तरफ रंग महफिल में, कहां अब तेरे, तू ही था वो शमा जिसकी रोशनी थी हर तरफ रंग महफिल में, कहां अब तेरे, उठ जाने के बाद जाऊं बैठो चैन से, मैं क्या कहूं क्या तुम सुनो, अब पशेमानी से क्या हासिल सितम ढाने के बाद, जाऊं बैठो चैन से, मैं क्या कहूं तुम क्या सुनो, जाऊं बैठो चैन से, मैं क्या कहूं तुम क्या सुनो, अब पशेमानी से क्या हासिल सितम ढाने के बाद, शमय महफिल रोए या हंसकर गुजारे सुबह तक, शमय महफिल रोए या हंसकर गुजारे सुबह तक, कौन अब जलने यहां आएगा परवाने के बाद, हुस्न रुख की एक झलक ने कर दिए औसान गुम, होश आया तो मगर उनके चले जाने के बाद, सच है कोई भी शरीक के दर्द व गम होता नहीं, हो गए अहबाब रुखसत मुझको समझाने के बाद, अब तो कहते हो कि जा मेरी नजर से दूर हो, अब तो कहते हो कि जा मेरी नजर से दूर हो, तुम मनाने आओगे मुझको मेरे जाने के बाद, तायरे दिले खाल तो देखा खमे गेसू भी देख, दाम भी तुझको नजर आ जाएगा दाने के बाद, वहशत दिल की बदौलत हम चले आए यहां, देखी अब कौन सी मंजिल है वीराने के बाद, कौन रोता है किसी की खस्ता हाली पर नसीर, जेरे लब हंसी है दुनिया मेरे लुट जाने के बाद। पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी का खूबसूरत कलाम आपने सुना। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अपना रेडियो बंद करें।
1: ये ले सर।
0: जी कौन?
1: असद अली मुहातिम सर, लाहौर से।
0: आसिफ अली?
1: असद अली सर, असद अली।
0: जी असद अली, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी।
0: जी
1: अच्छा सर, माशाल्लाह आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा रखा है। तो टॉपिक के वाले से तो मैं यही कहूंगा कि मैं जो बचपन का है ना लम लम्हा, वो ही पसंद करूंगा।
0: अच्छा, कौन सा लम्हा?
1: बचपन का।
0: अच्छा, पूरा बचपन ही पसंद करेंगे वापस जाना?
1: जी।
0: लम्हा तो एक सेकंड होता है ना, एक छोटा सा टाइम होता है, छोटा सा। उसमें कौन सा सबसे जबरदस्त बात है जो आपको याद आती है, जिसमें आप जाना चाहते हैं?
1: वो यही है कि मामा पापा के साथ।
0: हाँ।
1: तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए शेर भी है मेरे पास एक दो।
0: जी सुनाइए।
1: बिलखसूस मेरी नीला पी और बोधी जाट साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वसीम भाई, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: जी बोलिए।
1: यार ये ना अक्सर रेडियो पे कॉलर आते हैं, काफी कॉलर, तकरीबन 100 में से 90% कॉलर ऐसे हैं कि जो आगे कहते हैं तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम।
0: जी
1: मेरा कहना ये है कि सलाम ना कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम कीजिएगा।
0: चलो जी, आपकी बात पहुंच गई सब लोगों तक। और
1: अच्छा,
0: अब आए शेर की जाने।
1: हाँ जी, अब मैं आपको शेर सुनाऊंगा। शेर मेरा आपके लिए सबसे पहले
0: जी,
1: कि ये मत सोचना वसीम भाई हम भूल गए हैं आपको। ये मत सोचना वसीम भाई हम भूल गए हैं आपको, सुबह की पहली और रात की आखिरी सोच हो तुम।
0: हाय बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत शुक्रिया।
1: उसके अलावा एक शेर हो रहा है कि कितने जालिम हैं तुम्हारे शहर के लोग। कितने जालिम हैं तुम्हारे शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं जनाजा किसका।
0: ओए होए होए होए होए होए।
1: एक शेर छोटा सा और है
0: जी।
1: दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था, इतनी कोशिशें करके कुछ भी ना कर सके हम, घर चलता रहा और समुंदर भी करीब था।
0: ओए होए होए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
1: अच्छा वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई
0: जी जी,
1: मुझे ना एक शेर सुना दीजिए, मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि वो शेर सुनना चाह रहा हूँ, मुझे उसके कुछ मिसरे याद ना, इतना यानी पूरा नहीं याद, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, जो आप वो शायरी करते होते हैं कि तेल की शीशी का ढक्कन खुला हुआ था, कमरे का तकिया।
0: ओके जी, 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऊंचे शौक, और जब आप आए तो आप अपनी समझें कि आपकी जो फैमिली है वो आपके प्रोग्राम को सुन रही है, आपकी बातों को सुन रही है, और आपको उसी तरह की खूबसूरत बातें करनी चाहिए जो आप अपने घर वालों के सामने कर सकें, क्योंकि ये फैमिली स्टेशन है, इसके अंदर चाहे रात के 3 बजे हैं या 2 बजे हैं या 1 बजे हैं या दोपहर है या शाम है या सुबह है, तो आपने जिस तरह के हमारे इखलाकियात हैं उसको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, और उसी के मुताबिक हमें अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की नज़र में भी हमारी गुफ्तगू जो है वो उसमें इज्जत हो हमारी, और लोग हमारी कदर करें, हमें सुनना चाहें। कतील शफाई का कलाम पेशे खिदमत है। प्यार की राह में ऐसे भी मुकाम आते हैं, प्यार की राह में ऐसे भी मुकाम आते हैं, सिर्फ आंसू जहां इंसान के काम आते हैं, उनकी आंखों से रखे क्या कोई उम्मीद करम, उनकी आंखों से रखे क्या कोई उम्मीद करम, प्यास मिट जाए तो गर्दिश में वो जाम आते हैं, जिंदगी बन के वो चलते हैं मेरी सांस के साथ, जिंदगी बन के वो चलते हैं मेरी सांस के साथ, उनको ऐसे कई अंदाजे खराम आते हैं, हम न चाहें तो कभी शाम के साए न ढले, हम न चाहें तो कभी शाम के साए न ढले, हम तड़पते हैं तो सुबह के सलाम आते हैं, हम पे हो जाए ना कुछ और भी रातें भारी, हम पे हो जाए ना कुछ और भी रातें भारी, याद अक्सर वो हमें अब सरे शाम आते हैं, हम पे हो जाए ना कुछ और भी रातें भारी, याद अक्सर वो हमें अब सरे शाम आते हैं, छिन गए हमसे जो हालात की राहों में कतील, छिन गए हमसे जो हालात की राहों में कतील, उन हसीनों के हमें अब भी प्याम आते हैं, प्यार की राह में ऐसे भी मुकाम आते हैं, सिर्फ आंसू जहां इंसान के काम आते हैं। वैसे आंसू जो होते हैं वो दिल की बहुत सारी बातों को बयान भी कर देते हैं और दिल का बोझ भी हल्का कर देते हैं। 04-2-111-0101 हमारा टेलीफोन नंबर, पाकिस्तान से बाहर से अगर कॉल करना चाहते हैं तो 00092 मिलाइए, उसके बाद 42 मिलाइए, फिर 111-0101 को मिलाइए। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। कौन?
1: वाबदा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मोर से मोहम्मद हनीफ शाह।
0: मोहम्मद हमीद शाह?
1: मोहम्मद हनीफ शाह।
0: हनीफ शाह, हनीफ शाह कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह भैया
0: जी। क्या क्या क्या कहेंगे, क्या कहें, आप जाग रहे हैं इस वक्त, बड़े फ्रेश लग रहे हैं।
1: बस क्या करें, क्योंकि जब वो प्रोग्राम सुनते हैं ना तो लोगों को देखते हैं यार ये लोग भी जाग रहे हैं, हम कहाँ सोए हुए हैं।
0: सही बात है, फिर मिलके जागने का मजा ही कुछ और है।
1: हाँ, मैं अभी प्रोग्राम सुन रहा था आपसे पहले, जो कुछ लोगों की कॉलें सुनी, मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग जाग रहे होंगे, लेकिन उनकी ही कॉल सुनी, मैंने कहा हुआ फिर हम कहाँ सोए हुए।
0: बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ कहेंगे या कुछ शेर सुनाएंगे?
1: टॉपिक पे बात करेंगे, जब हम उसी लम्हे में जीने जाना चाहते हैं जब लोग घर कच्चे होते थे और लोग सच्चे होते थे।
0: मतलब उस जमाने में आप जाना चाहते हैं जिसमें सभी लोग सच बोलते थे, सच्चा प्यार करते थे।
1: मतलब के जिंदगी का वो लम्हा 2013-2014।
0: क्या था उसमें, क्या खास बात थी 2013-2014 में?
1: उस वक्त में चंद लोग तो ठीक है इंसान की जिंदगी में होते हैं, क्योंकि कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं। उस लम्हों में मेरे साथ जो ये जो मेरे मतलब के दोस्त थे या जो भी उसको बोले, जो शख्स थे वो मेरे साथ मतलब के 90% से 100% सच्चे थे।
0: अच्छा, मतलब वो जो आपकी गैदरिंग थी, वो जो आपके दोस्त थे, आपके अजीज रिश्तेदार बहन भाई थे, वो वाला जमाना जो था वो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसमें सब लोग आपको लगते हैं कि सच बोलते थे,
1: सच बोलते थे,
0: प्यार करते थे,
1: कुछ लम्हे तक सच्चे थे। और यकीन करें कि उसी लम्हे तक वो 20 रुपए का लोड भी हो जाता था और 20 रुपए हमें आज भी वो याद है।
0: हाँ, ये तो है।
1: आज किसी को अगर 500 रुपए भेज दो तभी उसको याद नहीं रहे, लेकिन हमें वो 20 रुपए हमारे आज तक भी चल रहे हैं।
0: सही बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने बचपन के आगे भी बात की है, वरना बचपन की बातें तो सभी लोगों को, मतलब सभी को अपने बचपन पसंद होता है। आपके आपने थोड़ी सी डिफरेंट बात की है, बहुत अच्छी बात की। और कुछ सुनाएंगे शेर?
1: शेर, मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जिसने समझा वो मेरा था नहीं।
0: हाँ, जिसने समझा वो मेरा था नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहिए, जीते रहिए।
1: शायद उसकी भी कोई मजबूरियां हो।
0: सही बात।
1: सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, क्या खूबसूरत बात की इन्होंने, कहा कि जी वो जो इनके ज़माना था 2011, 2012, 2014 का जो इनका ज़माना था, उस ज़माने में वगैरह के जितने भी मेरे पास आस पास लोग थे, जितने थे, सभी सच्चा प्यार करते थे, और ये भी उनसे सच्चा प्यार ही करते होंगे, तभी तो उसको याद कर रहे हैं, उस लम्हे को, उस ज़माने को। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: सर। बोधी जट सर, रावी दे कंडे दे सर।
0: क्या बात है बोधी जट, तुसी रावी दे कंडे दे बैठे जे, की विच टुबी शुबी भी लाई जे के वैसे ही बैठे जे?
2: नहीं सर, टुबी शाम वाले लाई, हम तो सर्दी लग रही सर।
0: ठीक हो गया जी। बोधी क्या क्या सुनाएंगे जनाब बोधी जट?
2: सर असी ये बचपन च जाना चाहवांगे सर, असी इंज ज्यादा सर 2008 दे विच सर जदों घर कच्चे हुंदे सर ना, उदों इंसानां दे ईमान पक्के हुंदे सन।
0: अच्छा, 2008 दे विच घर कित्थों कच्चे हुंदे सी? 2008 दे विच ते चंगे भले पक्के मकान हुंदे सी।
2: ओह सर, किरे किरे सन, लेकिन इह ज्यादा कच्चे ही सन सर।
0: अच्छा अच्छा, ते मतलब तुहाडा बचपन सी?
2: नहीं सर, बचपन नहीं सी, उदों खैर जवानी सी।
0: अच्छा,
2: हां जी सर, ते अज घर पक्के ने ते ईमान
0: मोहब्बत वैसे कट गई है अजकल दे ज़माने च ना, नफसा नफसी दा जिहड़ा ना ओ सिलसिला चल पिया है ना।
2: हां जी बिलकुल सर, ओदो सर हर इंसान जरा ना मुखलस हुंदा सी, अजकल इंसान सर मतलब ही है।
0: असी असी असी भी मतलब इस तरह ही हो गए हैं, असी भी एदा मतलब है, असी भी इस मुआशरे दा हिस्सा ही है ना, ते असी भी एदा मतलब है कि मुखलस नहीं रहे।
2: नहीं सर बिल्कुल, अल्लाह दे हुक्म नाल मुखलस है सर। और मैं तो दावे नाल सर कहना कि बिल्कुल कभी जिंदगी दे विच लालच रखी नहीं, ते जटरे दा पैसे नाल ते लालच नाल कभी प्यार ही नहीं कीता।
0: नहीं नहीं, मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, मैं अपने आप नु भी नाल मिलाया कि कोई ऐसी ऐसी ऐसी खराबी तो नहीं आ गई साडे सारिया च कि जेडे असी एक दूसरे तो दूर हो गए हां?
2: हांजी सर बिलकुल, एक दूसरे से दूर सर हो गया बिलकुल, इंजी गल है।
0: मतलब असि उतो बड़ा हसदे हां, उतो बड़ा हसदे हां, बड़ा खेडदे हां, बड़े एक दूसरे दी इज्जत करदे हां, मगर उस वेले ओदे जान दी दे रहे, ओदे उस वेले साडे बिलकुल मूड बदल जांदा है, साडियां गल्लां बदल जांदियां ने।
2: हांजी बिलकुल सर, इंजी गल है, सारे किधर रहंदा, सच कहो ते परा हो जाओ, झूठ कहो ते झोली च पाओ। हां हां हां
0: हां, बिलकुल ठीक है
2: सर। ते सर तुहाडी नजर एक शेर सर, माइया ये सर, फुला वे गुलाब दिया, तेनू सांभ सांभ रख दी फिरा मेरे सजना दे बाग दिया।
0: फिर सुनो।
2: फुला वे गुलाब दिया, सांभ सांभ रख दी फिरा मेरे सजना दे बाग दिया। सर खैर होवे तुहाडी, सर अफसर साहब आए सन सर, इहनां नू सलाम सर, साडा ते सर अनीला जी हरी वी आउणगे, ते अमीत भाई बर्फी वाले वी तुहानू सुन रहे ने, साजदार जी हरां नू वी सलाम। ते सर तुहाडा इतवार वाले दिन पीर वाले दिन शो सुनिया सर, बड़ा मजा आया, क्या बात है सर।
0: चलो बड़ी मेहरबानी,
2: नहीं मिली ते कोई ऐसी गल नहीं सर, ते तमाम सुनने वालिआं नू सर साडा السلام علیکم تے پاکستان زندہ باد سدا سلامت رہو
0: بڑی مہربانی آمین اللہ حافظ ہو کے جی بودی جٹ ساڈے نال پروگرام چ شامل ہوئے لو جناب ون ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی سٹیشن وقت بتاتا چلو 3:27 گنجا شوق آپ کے لیے ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورت باتیں آپ کے خوبصورت پیغامات اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے خوبصورت شاعری بھی موجود ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اگلی کال کی جانب بڑھیں کیوں نہ آپ کو خوبصورت سی پوئٹری سنا دی جائے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور گانا بھی میرے پاس ایک موجود ہے بہت ہی اچھا سا گانا ہے اسے بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے مگر آپ کی کال ساتھ ساتھ چلے گی مگر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کومنٹس جو ہے نا وہ بہت تھوڑے سے ہمیں بھیجے ہیں اور ابھی تک آپ کے مزید کومنٹس مجھ تک نہیں پہنچی ہے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے تو آپ اپنی کوشش جاری رکھیے تاکہ جو آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں نا آپ کے کومنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ستارے ہوتے ہیں تو وہ ستارے چمکتے رہیں جگمگاتے رہیں تاکہ آسمان سجا ہوا روشن روشن خوبصورت دکھائی دیتا رہے اور ہم خوبصورت طریقے سے آسمان کو دیکھتے رہیں اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتے رہیں فیصل عباس آئے ہیں ہمارے پروگرام میں السلام علیکم وسیم بھائی نائس شو فرام لاہور بہت شکریہ فیصل عباس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور پروگرام کو سننے کے لیے اور آپ نے ہمیں کومنٹ بھی کیا ہے ہمارے پروگرام پہ فیس بک پہ آ کے آپ کا بہت سارا شکریہ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ 101 لکھیے اسپیس دیجئے اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجئے 4471 پہ یعنی 4471 پہ اور جیسے ہی 4471 پہ آپ کے میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں اور یا پھر فیس بک پہ آپ کے کومنٹس ہم تک پہنچتے ہیں ہم انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں فوری طور پہ اگر تم کہو تو میں وہ ساری باتیں ہواؤں سے کہہ دوں اگر تم کہو تو میں وہ ساری باتیں ہواؤں سے کہہ دوں جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم نے کہی ہیں اشاروں اشاروں میں ہم نے سنی ہے کہ یہ آتے جاتے ہوئے نرم جھونکے ہر راستے پر میری راہ روکے کبھی میرے بالوں سے گجرا گرا کر کبھی میرے شانے کا پلو ہلا کر مجھے اس طرح چھیڑتے ہیں کہ جیسے وہ سب جانتے ہیں اگر تم کہو تو میں اپنی فسردہ دلی کے فسانے امڑتے ہوئے بادلوں کو سنا دوں فسانے جو خاموشیوں نے سنے ہیں جنہیں سن کے دیوار و در رو دیے ہیں کہ یہ رس کے رسیا یہ گھنگھور بادل چھپائے ہوئے اپنی امرت کی چھاگل گرج کر ڈرا کر میرے گھر پہ چھا کر مجھے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ سب جانتے ہوں اگر تم کہو تو میں اپنی کہانی سمندر سے کہہ دوں سمندر ہمارے جنوں کی علامت سمندر ہمارے سکوں کا نشان بھی سمندر کی طاقت بھی وسعت بھی ایمان بھی جبھی تو سمندر کے ویران گوشے چٹانوں کی پلکوں کے نمکین قطرے وہ خدرو ببولوں کے آزر دسائے چٹکتی زمینوں کے مایوس چہرے مجھے اس طرح چاہتے ہیں کہ جیسے وہ سب جانتے ہوں وہ سب جانتے ہوں ون ون ایف ایم آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن ٹیلی فون نمبر 1110101 السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نیلا جی ویلکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں
3: جی الحمدللہ
0: آج آپ کی کال صحیح ٹائم پہ آ گئی ہے ورنہ ادھر پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر آپ کی کال آ جاتی ہے
3: یہ بھی ہے کہ بڑے اچھے اچھے ہمارے اتنے اچھے اچھے بھائی آتے ہیں کالر آ جاتے ہیں ان کو سننے کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور ابھی محبوب علی بھائی آئے بہت شکریہ ان کا اللہ انہیں سے سلامتی والی زندگی دے اور ہمارے طارق بھائی آتے ہیں اور باقی عثمان مغل اور مغلت پسی کتنی پھول دے ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ
0: ਸਲਾਮ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਏ।
3: ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਤੀ ਨਾ ਉਨਕੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਜੁਗਨੂ ਹੈ ਯੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਵੀ ਹਮ ਯਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਨਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅਬਦੁਲ ਨੂਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਮੀਦ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਯੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਅਸਦ ਆਇਆ, ਅਸਦ ਨਾ ਵੋ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕਿ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਗਏ ਹੋ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਮੇ ਪਰਫਿਊਮ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖੁੱਲੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਖਰੀ ਥੀ, ਹੈ ਵੋ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਤੋ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੋਪਿਕ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ, ਐਸਾ ਦਿਲ ਕੋ ਛੂਨੇ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਆਪਣੇ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
3: ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਭੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋ ਸਾਰੇ ਲਮਹੋਂ ਮੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਪਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਅਬ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੋ ਲਮਹੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਵੋ ਸਭ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ
0: ਕਿ
3: ਹਮ ਲਮਹੋਂ ਮੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕ ਘੁੰਮਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਤੇ ਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਥ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਥਾ, ਤੋ ਅਬ ਹਮ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਲਮਹੇ ਮਿਸ ਕੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਮਿਸ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਅਪਨੋ ਕੋ ਨਾ, ਤੋ ਵੋ ਪਿਆਰੇ ਲਮਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੋ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਆਤਾ ਨਾ, ਵੋ ਜਬ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਤੀ ਥੀ ਨਾ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਤਾ, ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੇ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਕੀ ਪਲੇਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਕੇ ਖਾਣਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਕੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰਾ ਦਿਆ, ਉਸਕੇ ਬੱਚੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ, ਤੋ ਰੌਣਕ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਤੀ,
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ
3: ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਰਦੇ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੋ ਅੱਛੀ ਰੌਣਕੇ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਬਾਤੇਂ ਚੀਜ਼ੇਂ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੋਲਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ,
0: ਜ਼ਰੂਰ।
3: ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕੇ ਝੋਂਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਟਕਰਾਤੇ ਹੈ ਇਨ ਪੇੜੋਂ ਸੇ, ਕਿਤਨੇ ਪੱਤੇ ਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰਤੇ ਹੈ ਇਨ ਸ਼ਾਖੋਂ ਸੇ,
0: ਵਾਹ,
3: ਕਿਰਨੇ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਆਤੀ ਹੈ ਟੂਟੇ ਖਾਬ ਉਠਾਨੇ ਕੋ,
0: ਵਾਹ,
3: ਅੰਦਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਬ ਛੁਪਤੇ ਹੈ ਇਨ ਖਿੜਕੀ ਕੇ ਪਰਦੋਂ ਸੇ, ਅਲਮਾਰੀ ਕੇ ਖਾਨੇ ਮੇ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੀ ਚਾਬੀ ਲਟਕਾ ਦੀ ਹੈ ਆਤੀ ਜਾਤੀ ਸਾਂਸੋਂ ਸੇ, ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਬ ਆਤੇ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਬ ਆਤੇ ਹੈ, ਆਂਖੇ ਵੀਰਾਂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਾਤੇ ਚੱਤੀ ਰਸਤੋਂ ਸੇ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਸੇ ਟਕਰਾਨੇ ਮੇ ਏਕ ਹੁਨਰ ਥਾ ਕਸ਼ਤੀ ਕਾ, ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੋਂ ਸੇ,
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ,
3: ਔਰ ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਯਾਦ ਥੀ,
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ,
3: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿਲ ਸੇ ਦੁਆਏ, ਸਭ ਕੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੇ, ਆਪ ਇਤਨਾ ਮਾਨ ਬੜਾਤੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
3: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਰੱਖਤੇ ਹੋ ਦੋ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਦੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਮਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਨ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭ ਸੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਵੋ ਸਭ ਆਮੀਨ ਬੋਲੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਮੀਨ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਵਸੀਮ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਸਭਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਆਪ ਰੌਣਕ ਅਫਰੋਜ਼ ਹੋਤੇ ਰਹੇ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰੌਣਕ ਅਫਰੋਜ਼ ਹੋਤੀ ਰਹੇ,
3: ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਆਏ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
3: ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਬ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਬ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੀ ਅੱਛੀ ਸਲੋਟ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ, ਆਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ,
0: ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
3: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਓਕੇ ਜੀ। ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਠਿਨ, ਧੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੀ, रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। खैमे ना कोई मेरे मुसाफिर के जलाए, जख्मी था बहुत पांव, मुसाफत भी बहुत थी। सब दोस्त मेरे मुंतजर पर्दा शब थे, दिन में तो सफर करने में दिक्कत भी बहुत थी। बारिश की दुआओं में नमी आंख की मिल जाए, जज्बे की कभी इतनी रफाकत भी बहुत थी। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। इस तरह के रफाकत पे परेशान तो हूं, लेकिन अब तक तेरे साथ पे हैरत भी बहुत थी। इस तरह के रफाकत पे परेशान तो हूं, लेकिन अब तक के तेरे साथ पे हैरत भी बहुत थी। खुश आए तुझे शहर मुनाफ़िक की अमीरी, हम लोगों को सच कहने की आदत भी बहुत थी। प्रवीण शाकर का कलाम आपने सुना। वक्त बताते चलो 3:38। हेलो हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: वसीम भाई, तारिक बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है तारिक भाई, क्या बात है तारिक भाई। X2
4: हम ऐसे उठते हैं जैसे शहरी के लिए रोजा रखना होता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका।
4: मैं सो गया था।
0: अच्छा अच्छा,
4: उठा मैं दूसरों को सुना। बड़ा अच्छा लगा,
0: मैं आपको बड़ा याद करते हैं हमेशा।
4: नीला पी आई और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत शुक्रिया,
4: जाग रहे होते हैं आपके लिए। अच्छा, वो आपने मुझे क्या आगे डाल दिया नीला पी में, शेर शरीर क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम। बहुत कुछ कहना था तुमसे, मगर अब आजाद हो तुम।
0: मगर
4: अब आजाद हो तुम।
0: मगर अब आजाद हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
4: सिंधे कैसे कर लेते हैं आप आधी रात का प्रोग्राम?
0: आधी रात नहीं, रात पूरी नगा देंगे जेदे जी। सबको पता है कि ये अपने फैंस के पास गए हुए थे।
4: नहीं, शुरू में तो भाभी कहती होंगी, बहुत पहले 20-25 साल पहले, बाकी ना आया करो, सुबह सुबह जल्दी आया करो।
0: तारिक भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शामिल हुए। बहुत प्यार करते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं। और देख लीजिए वो भी शेर सुना के गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रात जो है वो भीग चुकी है और आगे आगे सर्दियाँ भी आ जाएंगी। अभी अनिला जी ने भी बात की थी सर्दियों की, तो सर्दियों की बात जो है वो तो खैर, सर्दियों की रातें जो होती हैं वो आपको पता है वो लंबी होती हैं। और इस वक्त हमारी जो रात है वो झूम झूम के आगे जा रही है। खूबसूरत नंबर आपके लिए है फिल्म जोश, हैंडसम एंड स्मार्ट वहीद मुराद।
5: राहों को ते
0: आवाज आपकी जानी पहचानी, अहमद रुश्दी की आवाज। अगर आपको भी इंतजार है तो ये गाना

0: मधुर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: रात चली है झूमके और झूमती हुई रात जो है वो शहर की जानिब बढ़ रही है। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: आप ठीक हैं, खैरियत हैं?
1: जी शुक्र अल्लाह का, आपकी कॉल का मुझे इंतजार था।
2: अल्लाह आपको खुश रखे,
1: आमीन।
2: मैं आज सुनना चाह रहा था कि कितनी लम्हे की डेफिनेशन वजाहत हो। शहीद जोशी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है, शायद इससे बड़ा शेर मैंने नहीं पढ़ा
1: जी।
2: कितनी बार मरा हूँ मैं एक लम्हे में,
1: वाह।
2: कितनी बार मरा हूँ मैं एक लम्हे में, सारा बीत चुका हूँ मैं एक लम्हे।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: सारा बीत चुका हूँ मैं एक लम्हे में, और एक लम्हे में कितनी सदियां होती हैं,
1: वाह।
2: एक लम्हे में कितनी सदियां होती हैं, कितना जी सकता हूँ मैं एक लम्हे में,
1: वाह। क्या बात है, क्या बात है।
2: वो आपने शुरू में खर्च का जिक्र किया, फिर आपने उसके साथ लम्हा अटैच कर दिया, टैग कर दिया आपने फिर आपने खर्च का है उससे चलते चलते। बहरहाल मैं आपको एक पुरानी नज़्म सुनाता हूँ अपनी, वो उससे पहले कताब को सुना। वैसे असल बात यही है जो आप कल बचपन और लड़कपन, मेरा वो लम्हा जिसमें मैं जुगनू को अपनी मिट्टी में कैद कर लेता था,
1: मुझे बड़ा याद आता है। क्या बात है, क्या बात है। और आपने बड़ी अच्छी बात मेरी याद ताज़ा करा दी है आपने, तो मैं अपनी मदर के साथ, अपनी वालदा के साथ शाम के वक्त गर्मियों में ऐसे बाहर वॉक करने के लिए निकलते थे, थोड़ी सी सैर करने के लिए, तो वो क्या बात है, क्या बात है। और आपने बड़ी अच्छी बात मेरी याद ताज़ा करा दी है आपने, तो मैं अपनी मदर के साथ, अपनी वालदा के साथ शाम के वक्त गर्मियों में

0: खोल देते, वो जमाना था खतों के आने का जाने का, वो जमाना था, क्या बात है।
1: वो लाला लाला रखा राम वर्दी का एक शेर मुझे याद आ गया, लाला रखा का एक शेर था कि आशिक का खत है पढ़ना जरा देखभाल के, ऐसे ही था, आशिक का खत है पढ़ना जरा देखभाल के, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के।
0: कलेजा निकाल के, बिल्कुल ठीक है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के,
1: कलेजा निकाल, तो वो कलेजा निकाल के रखना पड़ता था,
0: क्या बात।
1: अब तो मैं एक आपको नई नज़्म सुनाऊंगा, बड़े दिनों से लिख रहा हूँ, पूरी नहीं हो रही
0: जी
1: है?
0: जी
1: अब वो जो हमारे जो फेसबुक होता है ना, जब हम खोलते हैं
0: जी,
1: अब तो उस पर रोजाना एक नया चांद उतरता है, ठीक है ना, जमाना बदल गया है। लेकिन क्योंकि हम जैसे लोग, हम तो मुशाहदे वाले लोग हैं, हम तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर हम उसे लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तरतीब बन नहीं पा रही है मुझसे,
0: चले टूट जाती, हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी, फिर आप सुनाइएगा,
1: पूछ रहे हैं, दुआओं में याद रखें,
0: बहुत शुक्रिया
1: सबके लिए, दुआएं
0: आपके लिए, बहुत सारी दुआएं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमीद गुल साहब ने बहुत रौनक लगाई, बहुत खूबसूरत पोइट्री हम तक पहुंचाई, आप जीते रहिए, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। अनीला जी का मैसेज है, उन्होंने कहा जी नाइस शो, और जो शायरी है वो बहुत अच्छी है, सबको सलाम। उन्होंने कहा जी मेरा सलाम बोधी जट को भी दे दें, और सलीम टेलर को भी इन्होंने सलाम भेजा है, और इसी तरह से इन्होंने तमाम सुनने वालों को सलाम भेजा है, तो और इन्होंने कहा है कि जी सीमा जी को भी मेरा सलाम दे दीजिए, और इसी तरह से इन्होंने बाकी जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं सबके लिए इनका सलाम, बहुत शुक्रिया आपका नीला जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।